सुप्रभात। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो चुके हैं।

101.9 MHz FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम अनुप्रसारित करेंगे हिंदी समाचार अपने दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में

0: सामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा ये प्रसारण आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं भी। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

प्रेम वह अनमोल कुंजी है जो जीवन में शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है। प्रेमानंद जीवन की ओर बढ़ें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 196। संगीत सरिता 6:45 पर और पुनः शाम को 6:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का आप भाग 11 सुनेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के 7:30 पर। सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29वां प्रसारित किया जाएगा। नए गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार कार्यक्रम, जो कि केंद्रित रहेगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश सुबह 10 बजे। रंग तरंग कार्यक्रम 11 बजे।

12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। सुरीला सफर आप इसका आनंद ले पाएंगे दोपहर बाद 1 बजे। दिन में 2 बजे एक बार फिर से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम, एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस, इसका भाग 29वां प्रसारित होगा। सदाबहार नगमे आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। हेलो सहेली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी, शीर्षक गोल्ड मेडल, लेखक इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी है ये, संपादन सहयोग काजल भद्रगे का है, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 4 बजे आप ये पिटारा गीतों भरी कहानी सुन पाएंगे। छाया गीत का आनंद आप लेंगे शाम 5 बजे और 5:30 पर नए तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। छह बजकर 35 मिनट पर शाम को संध्या रंजन का समय रहता है। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे आप सुनते हैं। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका अनोखी बीमारियां, लेखन सुमन माधुरी का है, निर्देशन पुरुषोत्तम दारवेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा शर्मा की। 10:30 पर और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था हमारे आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा झरोखा के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का भाग 196।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत

0: गीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से हमारा परिचय करा रहे हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं स्टूडियोज में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें, अनूप जलोटा जी के गाए भजनों के अनगिनत एल्बम्स हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं उनके एल्बम्स के बारे में, उनके कौन से प्रिय एल्बम हैं और उसके बारे में क्या बताएंगे।
2: बहुत से एल्बम्स हैं, रिकॉर्डिंग हमने बहुत की है। पूरी रामचरितमानस रिकॉर्ड की है, भगवत गीता को गाया है और तमाम भजन जो आप सुना करते हैं, भजन संध्या, भजन गंगा, भजन आरती, भजन यात्रा, इस तरह के कुछ 100-125 एल्बम्स हैं। कई और भाषाओं में गाया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, उड़िया, 9-10 भाषाओं में गाया। हर भाषा में गा के आनंद आता है, क्योंकि भाषा कोई भी हो, भाव तो वही होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार बंगाली रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो रिकॉर्ड

0: रिकॉर्डिंग करने में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी दिन म्यूजिक कंपनी से कहा कि अब मैं कम से कम 8-10 एल्बम और बंगाली बनाना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने करीब 40 एल्बम बंगाली के बनाए, बहुत आनंद देते हैं वो भजन, आज भी मंच पे गाता हूँ जब बंगाली ऑडियंस होती है। तो भाषा बीच में आती नहीं, जब भक्ति बीच में आ जाए।
1: अनूप जी, एक बंगला रचना भी तो हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
0: जरूर सुनिए।

0: बहुत बढ़िया अनूप जी, अगर मेरी जानकारी जहाँ तक सही है, शाम चौरासी घराना पंजाब से ताल्लुक रखता है, तो फिर
1: गुरु नानक जी की एक रचना सुनाते हैं।

भगवान का नाम लिए बगैर अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और ये समझाने के लिए बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात समझ में आती है।

0: वाह, बहुत सुंदर रचना थी। और अनूप जी, भजन के चाहने वालों के लिए आप एक किताब की तरह हैं। भजन के संस्कार आप आने वाली पीढ़ी को किस तरह से देना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में भजन की परंपरा कायम रहे?
1: भजन की परंपरा तभी कायम रहेगी जब भजन सरलता से सुंदर ढंग से गाए जाएंगे। अब देखिए, सरलता का रंग

0: अनूप जी, किसी भी पूजा का समापन आरती से करते हैं, तो ये जो भक्ति भाव की धारा थी, इसका समापन भी आरती से हो तो कैसा रहे?
1: जरूर। ओम जय जगदीश।

गायन की इस श्रृंखला को विराम दिया जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी है और वक्त यहाँ आ पहुंचा है कि अब इस श्रृंखला का समापन हम करें। अपने श्रोताओं को बता दें, श्री अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन की ये थी 11वीं और अंतिम कड़ी। अब हमें अनुमति दीजिए। अनूप जलोटा जी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि विविध भारती के

0: शुक्रिया कर रहे हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतना सारा वक्त दिया, श्रोताओं को अपने गायन से मंत्रमुग्ध किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी आके बहुत मजा आया।
0: अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
2: धन्यवाद।
3: ऐसी लागी लगन, जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

ये है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म शादी से खुर्शीद और साथियों के स्वरों में। मुंशी दिल का लिखा गीत था, खेमचंद प्रकाश का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म डॉक्टर से पंकज मलिक का गाया ये गीत। इसे लिखा है आरजू लखनवी और ए एच शोर ने। पंकज मलिक का ही संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ, क्यों नहीं?

0: सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाते हैं उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत पर किया है नौशाद ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है।

0: तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। हमारा ये प्रसारण हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र अब से लेकर रात्रि 11:10 तक जिन कार्यक्रमों के साथ रहेंगे हम उपस्थित। आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियोज में आइए करा दें हम आपकी एक मुलाकात हमारे उन कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचारों के तुरंत बाद होंगे उपस्थित हम लेकर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ भजन। समाचार प्रभात अंग्रेजी में समाचारों का ये बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है प्रतिदिन 8 बजे। आज भी आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात। समाचार प्रभात के तुरंत बाद होते हैं उपस्थित हम लेकर सुगम संगीत का वो कार्यक्रम नाम जिसका रखा सुर संगम। इसमें आप सुनेंगे कुछ गजलें। प्रणाम अयोध्या आकाशवाणी अयोध्या का वो जाना पहचाना कार्यक्रम जिसकी प्रतीक्षा करते हैं प्रतिदिन प्रातः 8:30 पर आप सब। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के ऊपर कुछ चर्चा, साथ ही अवध क्षेत्र की महान विभूति आचार्य नरेंद्र देव पर वार्ता होगी उग्रसेन मिश्र की। इसी कार्यक्रम में समाचार पत्रों की सुर्खियां और फिल्मी गाने आप सुनेंगे। आपके संदेश आपके गीत व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा प्रातः 9 बजे और 9:30 पर हेलो अयोध्या सजीव फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम 7376804090 डायल कीजिएगा हमें। लोकरंग में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर में 12 बजे और 1 बजे कुछ तुमने कहा कार्यक्रम होगा जिसमें फेसबुक श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गाने सुनवाएंगे। गीतांजलि का कार्यक्रम होता है दोपहर 2 बजे जिसमें आप भजन गीत गजल सुनते हैं और अंगना कार्यक्रम में हमारी ग्रामीण महिलाएं आज सुनेंगी 2:30 पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चर्चा, साथ ही काव्य पाठ हम सुनवाएंगे कात्यायनी उपाध्याय का। इसी कार्यक्रम में घरेलू सुझाव और लोकगीत भी सुने जा सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम करेंगे चर्चा, साथ ही स्थान श्रृंखला में कोणार्क की बात करेंगे, युवाओं में बढ़ता तनाव और उसका समाधान इस विषय पर शगुन विश्वकर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शाम सुहानी 6:10 फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है। गूंजे स्वर गांव के 6:30 पर होता है जिसमें लोक संगीत सुनवाते हैं और कृषि जगत में 6:45 पर आज आप सुनेंगे मत्स्य पालन के लिए नए तालाब का निर्माण, डॉक्टर शशांक सिंह से बातचीत करेंगे इस विषय पर प्रभाकर शुक्ल। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें 11:10 तक लेकर उपस्थित रहेंगे। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि 8:15 पर गीत गुंजन में फिल्मी गाने सुनेंगे, महफिल गजल 9:15 पर होगा और हेलो अयोध्या में 9:30 से लेकर 10:30 तक 1 घंटे तक आप सजीव फोन इन कार्यक्रम का बन सकते हैं हिस्सा। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र ट्यून किया है आपने, सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम। कुछ ही पलों में हम अपने गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब

0: 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद सुनते हैं भजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी।

0: परिक्रमा मार्ग अयोध्या, फोन 9267988901।
1: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।

एक आभार, एक कृतज्ञता उस परमात्मा के नाम जिसने हमें प्राण दिए, सांसें दी, ये सुंदर संसार दिया और अवसर दिया सत्कर्म करने का।

0: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन

0: मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।

वो दयालु है, वो कृपालु है, नाम उसके अनेक हैं, लेकिन हर धर्म में वही एक करता है जो हम सबको पालन करता है, हमारा भरता है। उसके संदेश, उसकी सीख कुछ नहीं है, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि सिर्फ इसलिए है कि हम अपने सत्कर्मों से उसे और सुंदर बनाएं। यदि हम सत्कर्म करेंगे तो ये सृष्टि और सुंदर होगी। सिर्फ इतना ध्यान देने के लिए ही परमात्मा हर युग में हम सबके समक्ष आते हैं। हम परमात्मा बन सकते हैं उनके बस दिखाए रास्ते को अपना कर, क्योंकि हम सबके भीतर परमात्मा स्वयं विराजमान है।

मन नंद नंदन को ध्यान। जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने ये भजन सुना। भजन भक्ति के बिना अधूरा है और भक्ति हमें जोड़ती है परमात्मा से। भक्ति हमें बनाती है सरल, भक्ति हमें बनाती है मनुष्य, भक्ति हमें ले जाती है उस मार्ग पर जहां सत्कर्म हमारी करते हैं प्रतीक्षा, और भक्ति ही है जो हमको जीवन का ध्येय और लक्ष्य बताती है। भक्ति अगर आ जाए तो जीवन शुद्ध, सरल, सात्विक और वैसा हो जाता है जैसा हमारे परमात्मा ने हमें बना के भेजा है। भक्ति जीवन का, मोक्ष पाने का एकमात्र सूत्र है। एक भक्त बनना

दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता, बशर्ते आप उसे करने में शर्म न महसूस करें। हर छोटे से छोटे काम को बेहतर और बेहतर और भी रचनात्मक ढंग से किया जा सकता है, बस आप ठान लीजिए। और ये तब होगा जब आप हर काम को अहमियत देना सीख लेंगे, हर काम को अपना बनाना सीख लेंगे, और हर काम को करने में आप गर्व महसूस करेंगे, और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये काम छोटा है ये बड़ा, बल्कि आप सोचेंगे ये काम मैं कर रहा हूं इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। छोटी सी बात रखिए याद।

भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। अमृत कलश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, श्रोताओं को हम बता दें 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज आप सुनेंगे जैव विविधता के ऊपर एक चर्चा और हम आपको सुनवाएंगे कुछ बढ़िया चीजें। उन बढ़िया चीजों में क्या है? आपके संदेश, आपके गीत। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपके संदेश भेजिए, फरमाइश है, आपने अपनी पसंद के गाने सुनेंगे अपने नाम के साथ। और क्या है? 73-76-40-90 याद आ गया आपको ना? हेलो अयोध्या भी आज होगा प्रातः 9:30 से 10 बजे तक, सफर आधे घंटे तक।

0: आज होगा, प्रातः 9:30 बजे से 10 बजे तक। सफर आधे घंटे था, लेकिन इस आधे घंटे में बहुत कुछ होता है और उसमें आपकी गीत सुनाए जाते हैं, आपकी बातें होती हैं, आपसे चर्चाएं होती हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, खिलखिलाहटें होती हैं, कहकहे होते हैं। एक सार्थक शुरुआत, आरंभ, शुभारंभ एक नए दिन की होती है। करिएगा 7376 8090 पर हमें डायल, हम करेंगे आपके टेलीफोन कॉल का इंतजार। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या, लेकिन फिलहाल तो स्टूडियो की घड़ी में बजना चाहते हैं प्रातः के और ये वक्त है समाचार प्रभात का, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में आपके रेडियो सेट पर।
1: 8 बजने को
2: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
7: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतों

0: जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्री

0: कर्मियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले की कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द है 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास।

0: के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार प्रभात अनुप्रसारण हम कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 101.9 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र, 8:15 सुर संगम।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सुर संगम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। सुबह सुबह ही थोड़ी गर्मी का मौसम का आभास होने लगा। भैया होए क्यों ना, अब तो मई है और गर्मी अपने चटक पे है। करेंगे बातें इस पर भी कि गर्मी इतनी चटक क्यों है, मगर उसके पहले आप समझ लीजिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का, 3-4-5 लीटर जो भी पी पाए जरूर पिए और खाली पेट तो बिल्कुल ना रहें। नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी, जो कुछ भी मिले वो सब पीते रहिए। हाँ, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से कमी बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए कम से कम इस गर्मी में तो बहुत बेहतर नहीं है। और हाँ, लू से बचाव करने के लिए अपने सर को जरूर ढक के चले, कपड़े मोटे पहने, क्योंकि धूप से निकलने से कैसे बच सकते हैं मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि जीवन की आपाधापी में बहुत आवश्यक है, लेकिन सर पर टोपी गमछा जरूर लेके चलिए।

दीवाने और दीवानगी ये दो लफ्ज हैं, लेकिन इन दोनों लफ्जों से जिंदगी बन जाती है खूबसूरत। बनिए दीवाना उस चीज की जो आपको लुभाती है, लेकिन उस लुभाने के पीछे उस दीवानगी को एक सकारात्मक मोड़ देके एक उद्देश्यपूर्ण बना दीजिए। आपका दीवानापन आपकी दीवानगी दोनों सफल हो जाएगी, क्योंकि इश्क मोहब्बत प्यार आपसे यही उम्मीद करता है। किसी को इश्क करना भी इबादत सरीखा है, क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे लगा मैंने कह दिया। आपकी आप जानो सर, मुझे कुछ नहीं कहना, आप ही बताओ।

रूबरू वो हैं, इबादत कर रहा हूं। इस गजल के साथ ही पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां सुर संगम का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 101.9।

0: ओमेगा हर्ट्ज ट्यून करके न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी हमारे इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं। बहुत ही चाव के साथ आपकी फरमाइशें आती हैं, आपसे बातें होती हैं, ये सब कुछ होगा। आपकी फरमाइश, आपके गीत, आपके संदेश, आपके गीत, हेलो अयोध्या, इन सब में मुलाकात होती है। मगर फिलहाल तो प्रातः के 8:30 होने वाले हैं और ये वक्त होता है हमारे उस कार्यक्रम का जिसकी करते हैं आप प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से। शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन का अनूठा संगम, आकाशवाणी अयोध्या। सुनते हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या।
0: एक नया दिन, एक उजली सी सुबह, एक चमचमाता दिन, एक पूरे 24 घंटे हमारी कोई पात्रता ना होते हुए भी परमात्मा ने ये कृपा की है कि हमें दिया है कि हम अपने सार्थक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस देश के विकास में, खुद के व्यक्तित्व को निखारने में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। तो उस कृतज्ञता आभार के साथ आरंभ करते हैं वो कार्यक्रम, नाम है जिसका प्रणाम अयोध्या। सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम है हमारी तरफ से। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, पेड़ पहाड़ झरने तितली चिड़िया हवा खुशबू हरियाली सावन बारिश, क्या क्या नहीं दिया है कुदरत ने। और इस कुदरत की दी हुई चीजों को हम पूरी तरह से आनंदित होकर उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन आज चर्चा करेंगे एक छोटी सी उस कहानी के जो हमारे आसपास हर दिन घटती रहती है लेकिन हम अक्सर उसे कर देते हैं नजरअंदाज। आप सोच रहे हैं क्या, शुरू करता हूं, आरंभ हो जाएगा, आपको आभास भी हो जाएगा कहना क्या चाहता हूं। आज अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। सुनने में तो बड़ा वैज्ञानिक सा शब्द लगता है जैव विविधता, लेकिन हुजूर हम बता दें इसका मतलब सिर्फ जंगल में बाघ हाथी या कोई रंग बिरंगी तितलियां चिड़ियां ही नहीं है। इसका मतलब हमारी थाली का खाना, हमारे सांसों में जाती हुई ऑक्सीजन हवा, हमारे खेतों की मिट्टी, हमारी बारिश का चक्र, हमारे मौसम का जो अनियमित हो जाना है, यहां तक कि सुबह सुबह आपकी खिड़की पर आने वाली वो इकलौती चहचहाती गौरैया भी है जो जैव विविधता में शामिल है। अब सोच के देखिए, बचपन में हमारे गांव या मोहल्ले में कितनी चिड़ियां दिखती थी, आम के पेड़ों पर तितलियां मंडराती थी उनके बौरों पर, और बरसात शुरू होते ही मेढक की आवाज टर्र टर्र आने लगती थी। लेकिन अब तो शहरों के कंक्रीट के जंगल बना डाले हैं हमने, पेड़ों को काट डाला है और धीरे धीरे प्रकृति से आने वाली ये जो नैसर्गिक आवाजें थी वो खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, सुनाई ही नहीं पड़ती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। उद्देश्य उसका बहुत साफ है, हमको आपको सबको याद दिलाना कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो इंसान भी सुरक्षित नहीं बचेगा। याद है हम सबको कोविड का दौर, पूरी दुनिया ने महसूस किया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी कठिनाई दे सकती है, कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है। अच्छी और सच्ची बात तो यह है कि बदलाव की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, और बदलाव की शुरुआत करने के लिए बड़ी नहीं छोटी छोटी चीजों से भी हम बदलाव का आरंभ कर सकते हैं। घर की बालकनी में एक पौधा लगा लें, कहीं भी अगर अपने गेट के पास कोई बेल हम चढ़ा लें, और पानी को थोड़ा बचा लें प्रतिदिन, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कर लें, पक्षियों के लिए दाना पानी रख लें, और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, प्रकृति का आदर करना सिखाएं, चाहे वो फूलों को तोड़ना क्यों ना हो, पंखों को नोचना क्यों ना हो चिड़िया के, या फिर पत्तियों को बिगाड़ना क्यों ना हो। बच्चों को बताना होगा कि ये प्रकृति हमारी माँ के समान है, इसके रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैव विविधता सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है हुजूर, ये हम सब की साझी विरासत है। और बातें बहुत सी है, सिर्फ आखिर में एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि ये धरती मिली तो हमें गुरु विरासत में है, आने वाली पीढ़ियों से हमने इसे उधार लिया है, हमें इसे वैसे वापस भी करना है। तो अगली बार जब कभी कोई पेड़ काटे, कोई नदी गंदी करे, कोई पक्षी आपको कम दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये मामला हमारे भविष्य का है। बस जैव विविधता दिवस पर इतना याद रखिए कि अगर ये प्रकृति बचेगी तभी हम सब की जिंदगी की कहानी भी आगे बढ़ेगी। जिंदगी की कहानी आगे बढ़ाने में हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। कहा ना हमने कि ये जो प्रकृति, ये जो आज मिला है, ये हमें उधार मिला है, हमारे पूर्वजों ने हमको उधार दिया है, और इस शर्त के साथ कि इससे हम चुकता करेंगे आने वाली पीढ़ियों को जस का

0: तस। ऐसे ही महापुरुषों की दी हुई इस थाती को, विरासत को हम कितना संजो के रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, यह हमें नहीं स्मरण होता है। लेकिन अवध क्षेत्र की एक ऐसी ही महान विभूति है आचार्य नरेंद्र देव। श्री उग्रसेन मिश्र बता रहे हैं उनके बारे में, आइए सुनते हैं।
1: देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अभूतपूर्ण योगदान रहा। इन सब के प्रयास से देश आजाद हुआ। इन सेनानियों में आचार्य नरेंद्र देव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आचार्य जी ने 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें देश को आजाद कराने का जुनून था और उन्होंने 1932 से सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र देव 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गए। जेल की घोर यातनाएं सही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो का प्रस्ताव रखा। तब बंबई में इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। 1942 से 1945 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर के किले में बंद रहे। इस दौरान ही नरेंद्र देव के ज्ञान से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पांडुलिपि में संशोधन करवाया। आचार्य जी ने कांग्रेस को समाजवादी विचारों की ओर ले जाने के लिए 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1934 में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। जब कांग्रेस पार्टी ने यह निश्चय किया कि कांग्रेस के अंदर कोई अन्य दल नहीं रहेगा, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। भारत में समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाषा ज्ञान व राजनीतिक कार्यकर्ता और विचारक के साथ साथ एक साहित्यकार और महान शिक्षाविद भी थे। उन्हें संस्कृत, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पाली, बंगला, फ्रेंच और प्राकृत भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। काशी विद्यापीठ के बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल योगदान दिया। उनकी रचनाएं भी प्रसिद्ध रहीं। एक बार नरेंद्र देव जी ने संस्मरण शीर्षक रेडियो वार्ता में कहा था कि मेरे जीवन में सदैव दो प्रवृत्तियां रही हैं, एक पढ़ने लिखने की, दूसरे राजनीति की। आचार्य नरेंद्र देव की प्रकाशित रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण उनके भाषण रहे हैं। उन्होंने विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका, सामाजिक त्रैमासिक, जनवाणी मासिक, संघर्ष और समाज आदि साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। इन पत्रिकाओं में कई लेख और टिप्पणियां समय समय पर प्रकाशित हुए जो राष्ट्रीयता और समाजवाद, लक्ष्य तथा साधन सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, युद्ध और भारत, किसानों का सवाल आदि के रूप में भी संग्रहित है। नरेंद्र देव का निधन दमे के रोग से हुआ। अपने मित्र और उस समय मद्रास के राजपाल श्री प्रकाश के निमंत्रण पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वे चेन्नई गए थे, जहां दमे के कारण 19 फरवरी 1956 को एडोर में उनका निधन हो गया। मौत के समय आचार्य जी की आयु 67 वर्ष की थी। उनकी मौत देश के लिए अपूर्णीय क्षति रही। आचार्य जी 1899 में अपने पिता के साथ लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1904 में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। 1911 में स्नातक की शिक्षा पूर्ण की, 1913 में स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण की, 1915 में वकालत की पढ़ाई पूरी की, 1921 में काशी विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य किया। 1926 में काशी विद्यापीठ में आचार्य नियुक्त किए गए। 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग में शामिल हुए। 1947 से 1951 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1951 से 1953 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नामकरण आचार्य जी ने ही किया था।

0: आचार्य जी की स्मृतियों को सजोने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। नरेंद्र देव की कीर्ति देश में ही नहीं विदेशों में भी व्याप्त थी। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1889 को प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था और उनकी कर्मभूमि फैजाबाद में रही है, जो अब अयोध्या है। नरेंद्र देव अपने कार्यों के चलते पूरे देश में ख्याति पाए। वे देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित कर दिए। नरेंद्र देव हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, पाली समेत कई भाषाओं के ज्ञाता थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोट के निष्ठावान महान शिक्षाविद और आदर्श थे। वाराणसी में स्थित काशी विद्यापीठ में आचार्य बनने के बाद से आचार्य की उपाधि उनके नाम का एक अभिन्न अंग बन गया। नरेंद्र देव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और वे 1916 से 1948 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 1930, 32, 34, 40, 41 व 42 से 1945 तक नैनी, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, अलीपुर, कलकत्ता, अल्मोड़ा, गोरखपुर, लखनऊ, अहमदनगर किला आदि के जेलों में रहे। उन्हें समाजवाद का जनक माना जाता था। वे कांग्रेस के साथ साथ सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़कर निर्भीकता के साथ देश हित में संघर्ष किए। इनके बड़े व्यक्तित्व को देखते हुए देश में विभिन्न संस्थाएं भी इनके नाम से चलाई गई, जो देशवासियों को प्रेरणा दे रही हैं। तत्कालीन सरकारों ने आचार्य जी के नाम से जनपद में कृषि विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, नरेंद्रालय आदि का निर्माण भी कराया। उनके पिता बलदेव प्रसाद ने आचार्य का नाम अविनाशी लाल रखा, जो आगे चलकर नरेंद्र देव के नाम से विख्यात हुआ। बालक अविनाशी लाल का बचपन मुख्यतः फैजाबाद नगर में ही बीता। उनके पिता बलदेव प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और राजनीति में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे, जिसके कारण उनके घर में इन क्षेत्रों के लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस तरह नरेंद्र देव को स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा आदि देश के नामी गिरामी महान व्यक्तियों के संपर्क में रहने का अवसर मिला, जिनके सानिध्य में आचार्य जी धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के प्रति उनका मन व अनुराग उपजा और फिर बड़े होने पर देश की सामाजिक राजनीतिक दिशा में राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्हें लगा कि वकालत करते हुए राजनीति करना आसान हो जाएगा, इस दृष्टि से कानून की पढ़ाई की। आचार्य जी के राजनीतिक विचार धीरे धीरे गर्म दल के लोगों से मेल खाने लगे। अपने उग्र विचारधारा के कारण आचार्य जी कांग्रेस के अधिवेशन में गर्म दल के होने के कारण जाना छोड़ दिए। वर्ष 1916 में जब कांग्रेस में दोनों दलों में मेल हुआ, तब फिर कांग्रेस में आ गए, जिसके बाद नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दिया और काशी विद्यापीठ चले गए, जहां जाकर उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1926 में विद्यापीठ के कुलपति भी बन गए और यहीं पर आचार्य का संबोधन भी इनके नाम के साथ जुड़ गया। काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने नरेंद्र देव के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नरेंद्र देव अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। वर्ष 1916 से लेकर 1948 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे और जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सक्रिय रहे।
1: अवध क्षेत्र की महान विभूति आचार्य नरेंद्र देव। श्री उग्रसेन मिश्र से अभी आपने ये वार्ता सुनी।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी, इस छोटी सी जिंदगी में सफल होना हर व्यक्ति चाहता है, और सफल होने का एक सूत्र आपको बताता हूँ जो मैंने सोचा है, जो मुझे लगा है, जो मैंने अपने जीवन में ढाला है। हर लम्हा आने वाले अवसर के लिए अपने को तैयार रखिए, और जैसे ही वो लम्हा आए आप उस अवसर का लाभ उठा लीजिए, सफलता आपके पास होगी। छोटा सा सूत्र छोटी सी जिंदगी में बड़ी सफलता के लिए। सोच के देखिए।

0: प्रणाम अयोध्या, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से ट्यून करके 101.9 मेगाहर्ट्ज।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
3: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
0: सुरक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है और असुरक्षा हमारे जीवन का दूसरा नाम, और हम है कि जीवन की सुरक्षा के नाम पर हम इतने आवरण चढ़ा लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन ही ढक जाता है। अब देखिए ना, नई कार खरीदी तो प्लास्टिक तो नहीं उतारेंगे, खराब हो जाएगी। सोफे पर कवर उतारना तो है ही नहीं हमें। पैसा हम सारा बुरे वक्त के लिए बचाते रहते हैं, जब बुरा वक्त आएगा तब खरीदेंगे। मित्र बनाते हैं कि बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन सारा जीवन बीत जाता है कमबख्त, वो बुरा वक्त आता ही नहीं है, क्योंकि बुरा वक्त कुछ होता ही नहीं है। दोस्त, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, हम सोच सोच के उसको बुरा बना देते हैं। सो इंजॉय द लाइफ एज इट इज, जिंदगी जैसी है वैसे इंजॉय कीजिए। जिंदगी जीने का इससे खूबसूरत तरीका मुझे नहीं आता। आपसे साझा कर लिया, मस्ती में झूमिए, गाइए, खुशियों का क्या है, वो तो हर पल आपके इर्द गिर्द रहती है। हम दुखों में घिर के उन खुशियों को क्यों इग्नोर कर देते हैं। सर प्रणाम अयोध्या है, खूबसूरत सी जिंदगी एक खूबसूरत शुरुआत के लिए, क्योंकि साड़ी घड़ी आई रे।

भाई पीछे तो हो जा सुनिए, इनके रेल गड्डी आई मगर अपनी रेल गड्डी में एक डब्बा बाकी है। यानी कि एक गाना तो और आपको सुना ही सकते हैं।

0: आपसे एक छोटा सा अंतराल लेने जा रहे हैं, इसलिए पहले आपसे कर ली हमने चर्चा।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस...
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
4: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
3: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
4: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
0: जीवन विविधताओं का नाम है, मगर इस बहुरंगी जिंदगी को हम सब अक्सर बना देते हैं नीरस। अरे विविधताओं से तालमेल ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और यही तरक्की का रास्ता भी। उनसे मित्रता कीजिए जो आपकी उम्र के नहीं है, उनसे कीजिए जो आपकी भाषा नहीं जानते, उनसे कीजिए जो आपके परिवेश के नहीं है। यकीन मानिए, आप दुनिया को ही नहीं जिंदगी को समझने लगेंगे।

परमात्मा के निशा हर पल हर लम्हा हर घड़ी आपके इर्द गिर्द है, उन्हें पहचानिए और कृतज्ञता ज्ञापित करते रहिए। जीवन में हंसने का प्रसन्न रहने का एकमात्र सुन। और अब यहीं तक हमारा प्रणाम अयोध्या का सफर।

0: यहीं तक हमारा प्रणाम अयोध्या का सफर।
1: प्रणाम अयोध्या।
0: प्रणाम अयोध्या का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। प्रातः के 9 बजे हैं, ये वक्त है हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का। व्हाट्सएप पर जो संदेश आए हैं उनमें से पढ़ना शुरू करता हूं बगैर किसी भूमिका के, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। वक्त के साथ कदम ताल मिलाते रहने को ही जिंदगी कहते हैं। फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर के हमारे जाकिर मुलानी, सुनैना, सुवान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और बादशाह मुलानी के नाम लिखा हुआ ये फरमाइश आई है हमारे पास। अगली फरमाइश जो है वो पद्मटाकी नेपा नगर मध्य प्रदेश के हमारे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी और मंगला बेन शाह। ये है गुलाम साबिर अली साहब, ताज मोहम्मद अंसारी और मेराज जहां के साथ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के हमारे रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान और इनके परिवार के सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ के हमारे हीरा मणि, पारस मणि और पुष्पेन मणि वर्मा के साथ नोकेलाल वर्मा। ये है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। आप सभी की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा।

0: आपके संदेश आपके गीत, ये था कार्यक्रम का पहला नगमा।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: हेलो
4: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
1: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का अगला संदेश जिन श्रोताओं का आया है वो मैं बताता हूँ। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा के रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। ये फरमाइश आई है, कहाँ से आई है? मारहरा दरवाजा एटा से। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसिद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी का, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इरशद परवीन का भी नाम इन्होंने लिखा है। दुर्गा कॉलोनी हांसी के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो रास्ते का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत आप सबके दिल के बेहद करीब।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके संदेश, आपके गीत। अगली फरमाइशें हमारे किन श्रोताओं ने भेजी हैं, उनके नाम मैं पढ़ता हूं। उमरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। अब्बासी

परिवार के सभी सदस्य अभी भी बचे हुए थे। कृष्णा पार्क दिल्ली के सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय का है हमारे पास। तो ये फरमाइश आई है, ये आई है फरमाइश, कहां से आई है? आर्य नगर कोहका भिलाई के उत्तम सिंह जंघेल, अच्छा जंघेल हैं, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखारी कला के अमित जंघेल, शकुन जंघेल और जंघेल परिवार, पटियारी रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकील कुरैशी, एजाज कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। चलिए अब ये जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश के हमारे अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, आप सभी की फरमाइश पर भेज रहे हैं हम आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, फिल्म का नाम खेल खेल में।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आपके संदेश, आपके गीत। नलेश्वर नगर, नरविल, महाराष्ट्र के PS नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर और मलकापुर के नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर, रावर करनाल के ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का हमारे पास फरमाइश आई है। फरमाइश आई है ये विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी और इनके तमाम मित्रों का, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, शीतल रेडियो श्रोता संघ बना गांव बहरामपुर टैपा जिला खरगोन मध्य प्रदेश में, डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं। ये है सदर बाजार मारवाड़ बिलवाड़ा राजस्थान के रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। और ये फरमाइश है मोहाली पंजाब के बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की। आप सब की फरमाइश पर हम भेज रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में गुलजार का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम खट्टा मीठा। और ये फिल्मी गीत क्या कहें, जिंदगी का फलसफा है, हमारी आपकी जिंदगी का सच, यही तो ख्वाहिश हम सब के भीतर है ना।

0: बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उस प्रोग्राम में, नाम है जिसका हेलो अयोध्या। हेलो हेलो कहने के ख्वाहिशमंदों के लिए आ गए हम लेकर उनका फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम, जहां फोन पर अपनी फरमाइशें कर तीखी चटपटी बातें कर सकते हैं हमसे, अपने नाम और पते के साथ अपनी पसंद का नगमा सुन सकते हैं। लगातार कॉलें आ रही हैं, किसी एक कॉलर को हम लेंगे क्योंकि ये सजीव फोन प्रोग्राम है ना, पहले से हम कॉल को लेते हैं ना किसी को होल्ड करते हैं। जो भी आ गया उसको लाइन पर लेके कहेंगे हेलो हेलो। जी बताइए, नाम बताइए।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है?
1: प्रीति राव बात कर रही हूँ, शर्मा चौड़ी अयोध्या से।
0: अयोध्या से, नाम एक बार दोबारा बताना।
1: सर प्रीति राव।
0: प्रीति, प्रीति आप क्या करते हो पढ़ाई के अलावा?
1: सर सिलाई करते हैं और अपनी घर का कार्य करते हैं।
0: सिलाई का काम करते हो आप, क्या क्या सिल लेते हो? लेडीज कपड़े बनाते हो, तो आपने कोई दुकान करके रखी है या घर पे सिलाई करके लोगों को देते हो?
1: नहीं सर, बस घर पे सिलते हैं, दुकान वगैरह
0: घर पे सिलते हो, तो सिलाई मशीन तो अपनी होगी? अच्छा, तो तुम तो बहुत होशियार हो प्रीति फिर, क्योंकि हम में से सारे लोग, ज्यादातर लोग कपड़े पहनना तो जानते हैं लेकिन कपड़े सिलना बहुत कम लोगों को आता है, और उन कम लोगों में से एक तुम हो, है ना। अरे अरे भाई, हम तो क्या हाल चाल पूछने लगे, फोन कैसे किया था?
1: क्या था?
0: फोन कैसे किया था?
1: बस अभी लगा, तुरंत लगा, तुरंत लग गया।
0: अरे तुरंत लग गया तो बातचीत होगी, बस बात खत्म कि कुछ और? हेलो, अरे आवाज सुन रही हो, कुछ गाना वाना सुनोगी कि बस काटे फोन, खत्म हुई बात?
1: हाँ सर सुनेंगे, सुना दीजिए। सॉन्ग
0: कौन सा सुना दे बताओ, हमें तो गाना नहीं है।
1: सर वीर जारा मूवी का सॉन्ग सुना
0: दीजिए। कौन सा?
1: वीर जारा मूवी।
0: वीर जारा का, वीर जारा का कौन सा गाना सुनोगे आप?
1: ऐसा देश है मेरा।
0: कौन सा?
1: ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा, ये गाना तो बहुत बढ़िया वाला देशभक्ति का गाना चुन लिया तुमने, सुबह सुबह लोगों का दिन बना दिया। गाना तुम्हें पसंद है कि फिल्म देखी थी इसलिए पसंद है?
1: मैं
0: तो चलो, हम तुम्हारी फरमाइश का गीत हम भेज रहे हैं, हमें दोबारा कॉल फिर करना, ठीक है ना? चलो प्रीति, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। 73-76-80-40-90 लगाइए हमें, हम कर रहे हैं आपकी टेलीफोन कॉल का इंतजार।

0: 7380-80-90 डायल करके बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप भी लगाइए नंबर।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: हेलो अयोध्या, आकाशवाणी अयोध्या का वो लोकप्रिय कार्यक्रम जिसमें आना तो सभी चाहते हैं, उनसे बातें हो जाए, उनसे हम कह देते हैं हेलो। ओहो, इनकी कॉल ही ड्रॉप हो गई। खैर, एक नए कॉलर आ गए। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते सर।
0: सर नाम बताइए।
2: सर मेरा नाम है रविकांत दुबे, ग्रामांतपुर पोस्ट मोती नगर जिला जगदलपुर
0: है। रविकांत भाई, आपसे बातें मेरी हो चुकी हैं, अभी जल्दी आपकी कॉल लगी थी।
2: जी जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: बीबी नंबर वन।
0: बीबी नंबर वन का कौन सा गाना आप सुनेंगे?
2: बीबी नंबर वन का गाना जो सबसे अच्छा गाना हो बीबी नंबर वन में, वही सुना दीजिए।
0: अच्छा रुकिए, सबसे अच्छा वाला हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना?
2: जी
0: चलिए, हम सबसे अच्छा गाना ढूंढ के आपके लिए लगा देते हैं। और
2: हाल चाल ठीक है सर?
0: अरे बिल्कुल ठीक है, हमारे हाल चाल को क्या हुआ सर?
2: अरे सब हाल चाल ठीक रहे, ठीक है। इतनी गर्मी हो रही है, कुछ कह लेंगे।
0: कहाँ गर्मी हो रही है, आपके यहाँ गर्मी हो रही है?
2: बहुत गर्मी हो रही है।
0: अरे तो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं आप घर में?
2: क्या करें, यार में कुछ मिल ही नहीं रहा, कहीं सर कूल वूल मिले तो यहीं बैठे हैं। तो
0: क्या मिले,
2: बगीचा भी नहीं है, यहाँ कोई बाग भी नहीं है। यहाँ तो दिहाते हैं लेकिन बाग भी सब कट चुके हैं।
0: हाँ तो बाग कट चुके हैं, तो इसमें कोई बाहर से थोड़े काटने आया, हम ही आपने तो मिल के काटे हैं।
2: काटे तो हम ही लोग हैं, लेकिन यही तो है, सब बगीचे काट दिए। अब जो है वातावरण सब खराब हो जा रहा है, बरसात भी नहीं हो रही टाइम से।
0: हाँ ठीक बात है, ये सब तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो इसके लिए कुछ कर।
2: इसके लिए हमको करना चाहिए भाई, हम ही लोगों को पेड़ लगाएंगे तभी तो जो है बरसात होगी।
0: हाँ महाराज, ये भी हम जानते हैं कि हम ही लोगों को लगाना चाहिए, लेकिन ये बताइए आपने लगाया को पेड़ वेड़ की बस खाली थ्योरी ही है?
2: नहीं लगाए तो है,
0: तो बताओ कहे नहीं
2: लगाए, 2-3 पेड़ लगाए हैं, लेकिन कभी कभी हम जैसे पेड़ लगाते हैं ना, यहाँ राक्षस लोग है ना हिंदुस्तान में जो
0: आप ऐसा करिए ना, समझिए जो चीज आप लगा देते हैं, दरअसल हम लोग कोई पेड़ लगा के अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेते हैं, हमको उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, और दूसरों को कोसने से बेहतर है कि हम थोड़ा सार्थक करें, हमको देख के लोग प्रेरित होंगे तो वो भी करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है ना?
2: ये कह सर, लेकिन बात सही है, हमने जो है हमने आपको फैलाया दुखाया मोहब्बत के, नहीं हमारे साथ लपड़ मारे है ना।
0: देखिए जिंदगी में
2: अरे
0: जी
2: हेलो,
0: गाना सुनाई दे रहा है? गाना सुनाई पड़ रहा है?
2: अभी नहीं सुनाई दिया।
0: अरे आपने कान में कुछ और लगाया है क्या?
2: नहीं कान में तो वही फोन लगा है बस, गाना भी नहीं आया हमारे पास।
0: गनवा रास्ता भुलाएगा तो तुझे रिसियान हो तो। भाई इनको गाना सुनाई पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन आपको तो गाना सुनाई पड़ रहा होगा। आप भी लगाइए 7380-80-90, हम करें आपकी टेलीफोन कॉल का इंतजार।

0: भाई इनकी तो बीबी नंबर वन हो गई, मगर हमें लेना है अंतराल। एक अंतराल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कोई नए कॉलर आ जाएंगे। आप भी लगाइए 7376-8040-90, इस बार आपकी कॉल लगेगी।
1: पापा
2: लाइए
1: 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: 7376-8040-90, देखे हमारे कौन से कॉलर हैं। हेलो,
5: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
5: प्रताप सिंह बात कर रहे हैं, खिचड़ी अम्बर से मनकापुर गोंदा जी।
0: स्वाति सिंह, स्वाति।
5: हाँ सर।
0: अब एक बहुत ईमानदारी से एक बात बता दो, ये क्या व्यवस्था है तुम्हारी जो तुम्हारी कॉल लग ही जाती है? क्या तुमने
5: अभी तक व्यवस्था नहीं है सर, लगाते हैं तो फोन लग जाता है सर। वो काफी लोग फोन लगाते हैं तो लगता है।
0: नहीं, काफी लोग लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा फोन कैसे लग जाता है ये मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। हाँ, ये तो अब मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि कुछ तो है ऐसा, है ना?
5: हाँ,
0: अच्छा हाँ, ये बताओ कि फोन कैसे करा?
5: क्या सर?
0: फोन कैसे किया, फोन क्यों किया?
5: बात करने के लिए फोन किए हैं और गाना सुनने के लिए किए हैं, क्योंकि हम उन लोगों का प्रोग्राम होता है तो फोन करते हैं हम लोग।
0: अच्छा, तो ये बताओ कि गाना तो मतलब तुम्हारे बारे में बात तो बहुत हो चुकी, क्योंकि तुम्हारी कॉल बहुत लगती है।
5: हाँ सर, लगती तो है।
0: ठीक,
5: मान्य है बात।
0: हाँ स्वाति, मुझे सीधे लोग बहुत पसंद है। कितनी ईमानदारी से तुमने कह दिया हाँ सर लगती तो है, क्योंकि हम लगाते हैं। लकी तुम कही चुकी हो, अब हम तुमसे कौन सी बातें कर लें। अच्छा स्वाति, तुम्हें एक बात बताओ, हमारे यहाँ से रेडियो से अक्सर ये प्रार्थना की जाती है, बहुत सारे लोग लगाते हैं तो जिनकी कॉल लग जाए वो कोशिश करें कि दूसरों को मौका मिले थोड़े दिन के बाद लगावे। तो हमको ये जो प्रश्न, मेरा गौर से सुनो, हमारी जो ये प्रार्थना होती है जो हम कहते हैं आपसे, ये सुन के आपको कैसा लगता है? सही लगता है, गलत लगता है?
5: सुन के तो सर सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन तो सर लगाते ही है, मन नहीं मानता है।
0: हाँ, दिल है कि मानता नहीं
5: है कि सर लगाना ही पड़ता है फोन,
0: लगाना ही पड़ता है, बहुत कंपलसरी है जिंदगी, इसके बगैर अधूरी है।
5: ये सर जब प्रोग्राम आने लगता है तो सर हाथ नहीं रुकता है, फोन लगाना पड़ता है, लगा हो सकता है लगे।
0: स्वाति अब करते क्या,
5: लग जाता है, हम हो जाते हैं, लगी है, बात हो जाती है।
0: हाँ नहीं, बहुत अच्छा, देखो बात हो गई। अब ये बताओ गाना कौन सा सुनोगी?
5: गाना सुनना है हमको धरती के है पुकार की।
0: अरे धरती का है पुकारे, यहाँ धरती आसमान पाताल सब पुकारे, जो हिसाब से तुम्हारा फोन कॉल लग रही है। बताओ कौन गाना सुन वो?
5: हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से गई हो कहाँ।
0: अरे बाप रे बाप, हम कहा बताइए। हेलो।
5: हाँ सर।
0: हाँ आवाज आई?
5: हाँ सर।
0: हाँ तो कौन सा गाना तुमने बताया, धरती कहे पुकार के का?
5: हाँ सर, यही सुनना है, जो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से गई हो कहाँ।
0: और अगर हम कहें ये गाना हमारे पास नहीं है तो क्या करोगी?
5: तो सर कोई दूसरा से

0: हमारी भी दीदी में सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन खास करके ये हमसे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? पक्का?
0: हाँ सर पक्का।
1: अच्छा गाना सुने होगी पहले कभी ना?
0: हाँ सर सुने बहुत बार सर, FM से वैसे गाना सुनते हैं, मोबाइल से ज्यादा नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक बढ़ के एक गाने रेडियो पे आते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: वेरी गुड।
0: पुराने गाने भी सुनते हैं।
1: ठीक है, तो सुनाई पड़ रहा गाना नहीं सुनाई पड़ रहा है?
0: सर अभी तो नहीं सुनाई पड़ रहा है, अभी फोन कट होगा फिर रेडियो ऑन करेंगे फिर सुनाई पड़ेगा।
1: तो फोन कटो, आधा लोग सुन चुके तुम्हारा गाना, पोल खुल गई तुम्हारी।
0: नमस्ते बाय।
1: नमस्ते बाय। 73-76-80-40-90 लगाइए साहब, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइव फोनिंग प्रोग्राम है, ना पहले से किसी से हम कॉल ले सकते हैं, ना ही होल्ड कर सकते हैं, ना ही किसी की कॉल हम काटते हैं। अब तो हो गया होगा आपको भरोसा, आप भी लगाइए, आपकी कॉल लगेगी, जिसकी भी लगेगी उसकी कॉल सीधी उठ जाएगी।

0: भाई कोई कहीं जाए या ना जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो वापस आना ही है एक नए कॉलर की प्रतीक्षा करते हुए। घंटियां बज रही लगातार, देखते हमारे कौन से कॉलर हैं। हेलो।
1: हेलो सर
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते सर जी।
0: अरे नाम बताओ, बड़ा हाँफ रही हूँ, कहीं दौड़ दौड़ के आ रही हूँ क्या?
1: नहीं, छत पे आए हैं ना, तबीयत खराब थी तो छत पे दौड़ के आए।
0: मतलब जब तबीयत खराब होती है तो दौड़ के छत पे चली जाती हो, तो तबीयत ठीक हो जाती है?
1: तो वहाँ नीचे बाजा बज रही थी ना, तो कैसे आवाज सुनते।
0: नहीं, किस लिए तुम दौड़ के गई? तबीयत खराब थी इसलिए गई कि किसी और चीज के लिए? हम समझ नहीं पाए।
1: जी सर जी।
0: अरे दौड़ के छत पे क्यों गई? तबीयत खराब थी तो तुम्हें छत पे भागने की क्या जरूरत थी?
1: सर नीचे बात नहीं है, तुमने दौड़ खत्म हो जाती है।
0: अच्छा, फोन के चक्कर में तुम ऊपर भाग गई। तो ये बताओ, हमें तो लगा तुम्हारी तबीयत जब भी खराब होती है दौड़ के छत पे भाग जाती हो, वहाँ कोई इलाज हो जाता है।
1: खुशी के बाद है, खुशी के बाद जब फोन लग जाती है तो क्या करेंगे।
0: अरे खुशी की बात तो है, लेकिन ऐसा कौन होता कि फोन लग गया तो आदमी दौड़ के छत पे चढ़ गया। अच्छा सुनो, खुशी बहुत है, भाग के छत पे चढ़ गई हो। भैया मुंडेर उंडेर से जरा दूर बीच छत पे रहो, कहूँ गिर गयो तो आफत हुई।
1: नहीं गिरे नहीं, पकड़ के सीढ़ी पकड़ के आए।
0: अरे दादा इतनी कमजोरी है कि पकड़ के आए हो, तो बीमार हो फिर दौड़ के भागे हो, बड़ा पाप लागे हमारे ऊपर। अच्छा ये बताओ, गाना कौन सुनबो? गनवे सुने के लिए फोन की? अच्छा नमक, गनवे सुने के तो फोन किए, हम ऐसे पूछ लिया।
1: गाना सुनने खाते तो बात करने खाते।
0: हाँ तो अच्छा पहले गाना बताओ, नमक हलाल हम सुन लिया। नमक हलाल के कौन गाना सुनबो? अच्छा पग घुंघरू बांध के मीरा नाची थी जी। अब बताओ का भवा है तुम्हें, तबीयत कौन चीज के खराब हो गई? बहुत
1: बंबई गए थे तो गिर पड़ी थी ना वहाँ पे, तो नस दब चुकी है कमर का।
0: अरे बाप रे, तो ज्यादा गहरी चोट है भाई, अपना ख्याल रखो। अब फोन ओन लग जाए तो हमारी प्रार्थना है दौड़ कितना तेज ना चलो, तो गिर पड़ी हो रहा कहूँ, कमर में चोट लगी है, भागो दौड़ो, डॉक्टर मना नहीं किए हैं।
1: फिर शुगर भी हो गई।
0: अरे बाप रे बाप। और दो तीन बताओ का है हुआ है?
1: क्या बीपी हाई लो?
0: बीपी हाई लो तो घरे करो तो दुकान खोल ले इलाज के।
1: दुकान का सब्जी बहुत दवा
0: कराए
1: लेकिन अच्छा ठीक नहीं हो रही।
0: देखो मंजू, मंजू नाम बताया ना
1: जी।
0: मंजू खुश रहने की कोशिश करो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो, जितना है उतने में खुश रहो, और बस नियमित सादगी भरा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा ना। ये बीमारियां
1: हम तो दिन भर गाना सुनते रहते हैं, इसीलिए हमको टेंशन नहीं रहता है, गाना सुनते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं।
0: बस मंजू तो ऐसे ही करते हो, ऐसे ही खुश रहो ना, तो तुम्हारी खुशी देख के सारी बीमारियां टेंशन लेके

0: भाग जाएंगी, तुम टेंशन मत लेना।
1: नहीं, इतना टेंशन दे रहा, मेरे पति दारू पीते हैं इसीलिए आप टेंशन हो जाती
0: है। नहीं नहीं, वो चीज गलत है, उन्हें समझाओ, कोई बात नहीं, वो तो परिवार की बात है, वो समझ जाएंगे जल्दी, कुछ होती होगी। बहरहाल गाना
1: कहते हैं कि जो दारू पीते हैं वो नहीं पिए।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो बुरी चीज है, बिल्कुल ठीक है, बुरी चीज है ये। देखो गाना तुम्हारा शुरू हो गया, गाना सुन रही हो
1: जी? लड़का लड़की के नाम ले सकते हैं?
0: अरे जल्दी से ले लो फट से।
1: पूजा है लड़की और लड़का विनायक।
0: तो पूजा और विनायक के साथ उनकी मम्मी मंजू सुने अपनी पसंद का गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप भी लगाइए 73-76-80-40-90, हम कर रहे हैं टेलीफोन कॉल का इंतजार आपके, अभी बहुत सफर बाकी है।

0: हेलो अयोध्या में लगातार हमारे कॉलर्स आ रहे हैं, इन कॉलर से बातें की जाए। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रहा है?
1: जोया बोल रहे हैं।
0: जोया
1: जी,
0: जोया कैसे हो आप?
1: ठीक है।
0: ठीक, अच्छा देखो हमें पता नहीं आप कितने बड़े हो।
1: अरे सर मैं,
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जोया आप कितने बड़े हो मैंने पूछा।
1: अरे सर बताया तो आप कैसे बता सकते हैं।
0: अरे कितने बड़े हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत छोटे हो, मैंने इसलिए पूछा। आप पढ़ते?
1: अच्छा।
0: पढ़ते हो? आप पढ़ते हो
1: जी?
0: किस क्लास में हो?
1: सेवेंथ में।
0: सेवेंथ में हो, बस यही तो मैं जानना चाहता था। जोया स्कूल जाना अच्छा लगता है या घर में बैठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है?
1: क्या हुआ?
0: स्कूल जाना अच्छा लगता है या घर में बैठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है?
1: स्कूल जाना अच्छा लगता है।
0: क्यों, स्कूल में क्या ऐसा अच्छा है?
1: सर

0: अरे स्कूल में फ्रेंड्स रहती हैं और मजे आते हैं, पढ़ते भी हैं।
1: तो स्कूल में
0: अच्छा लगता है।
1: स्कूल में जोया जाती है मस्ती करने, फ्रेंड से मिलने।
0: मस्ती करने भी जाते हैं, पढ़ाई भी करने जाते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ाई और मस्ती के समय मस्ती।
1: अच्छा तुम्हारे मस्ती का कोई पीरियड होता है क्या?
0: क्या
1: मस्ती का भी कोई एक क्लास होती है?
0: नहीं मतलब एक लास्ट बेल होती है ना, तो हम लोग उसमें मस्ती कर लेते हैं।
1: अच्छा लास्ट बेल
0: होता है।
1: लास्ट बेल जब होती है जो खाली वाला, तो उसे मस्ती कर लेते हो
0: क्या?
1: जब लास्ट बेल होती है तो आप मस्ती कर लेते हो?
0: जी जी।
1: और घर में अगर मस्ती करते हो तो डांट पड़ती है कि लोग कहते हैं जाने दो मस्ती कर रही है?
0: नहीं नहीं सब लोग कहते हैं कि खेलो पर शोर मत करो।
1: हाँ कर दो और लेकिन शोर मत करो, है ना?
0: हाँ।
1: तो, अरे गाना कौन सा सुनोगे? मैंने तो पूछा ही नहीं भाई। हेलो
2: जी,
1: गाना कौन सा सुनोगे?
2: हम जोया की मम्मी बोल रहे हैं।
1: जी जी जी।
2: तो वो गाना दाता मेरा सुना दिए, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, ये वाला गाना।
1: हाँ ठीक है, आप जोया की मम्मी बोल रहे हो, मैं गाना सुना दूंगा। अपना नाम बता दीजिए।
2: जमीला बानो।
1: ये जोया बहुत प्यारी बच्ची है
2: जी,
1: है ना?
2: देती है।
1: हाँ मुझे मालूम है। तो ये शरारती भी है या फिर ऐसे प्यारी प्यारी बात करती रहती है?
2: उसमें सब कुछ है ये बात।
1: अच्छा एक आखिरी बात, ये जो गाना
2: शरारत भी करती है, स्कूल भी जाती है।
1: हाँ
2: टाइम
1: से
2: स्कूल जाती है।
1: बस बचपना ऐसे बना रहे ये सबसे बड़ी बात है। हमको एक चीज और बताइए कि ये जो गाना आपने चुना ये बड़ा भावनात्मक गाना है, और जोया रानी हमारी बड़ी बिटिया है घर की, तो ये गाना सुन के मन मन में भीग जाता है कुछ। तो आपको नहीं लगता कि जोया को देखते हो कि यार इसको शादी करनी होगी, भेजना होगा?
2: जी जी बहुत अच्छा लगता है, हमने ये पिक्चर देखी है ना।
1: हाँ हाँ
2: जी।
1: चलिए हमने गाना प्ले कर दिया आपके लिए, है ना? गाना सुनिए और अपना और जोया का बहुत ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए
2: हम सुनने के लिए।
1: अरे हमने परेशान हो, हमने चला दिया गाना, आप सुनिए। चलिए ओके। 73-76-80-40-90 डायल करके बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते थे। बहुत सारे लोगों की कॉल लगी, बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं लग पाई। जिनकी लगी उनका शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, और जिनकी नहीं लगी उनका भी शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। कोशिशें कामयाब होती हैं, यकीन मानिए। 73-76-80-40-90 लगाते रहिए। होगी आपकी मुलाकात इसी शो में किसी और दिन, मगर फिलहाल तो अनुमति चाहता हूँ इस प्रोग्राम से। ठीक 10 बजे होगा हमारा अगला कार्यक्रम। छोड़ के जा रहा हूँ इस नगमे के साथ। अनुमति दीजिए अपने दोस्तों। नमस्कार, आपका दिन

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रमों को आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
3: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
3: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
3: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
3: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
3: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
3: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
3: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
3: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
3: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओ, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
3: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
3: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
3: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
3: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
3: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
3: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
3: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओ। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
3: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो

0: आपके विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी बिमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं
0: जी।
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
0: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है
0: जी।
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: ಕ್ಷಮಾತ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ.
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है. वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं. भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है.
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है.
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है.
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब, किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए, आइए जानते हैं. इनका नाम है
3: सालुमरदा तिम्मक्का, समाज सेवा.

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का।

0: तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ, ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक

0: का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये रो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
3: हाँ,
2: ये देखो
3: देखो देखो कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
2: हाँ।
3: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
3: हाँ।
2: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: सालों
4: के बाद देखो
5: ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रहे हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल

0: तकनीक है। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटी लैंगडिंगडो, ध्वनि अंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।
2: वन में मेरा मन है, वन ही तो असली है।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 88

0: 0000-44-55-9। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी आपने सुनी आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि दोपहर 12:30 से दोपहर 3 बजे तक हम किन कार्यक्रमों को लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। दोपहर 12:30 पर होगा अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोता फेसबुक पर भेजी गई अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में दोपहर 1 बजे से। गैर फिल्मी गीत और गजल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत दोपहर 2 बजे से। और बहनों का कार्यक्रम अंगना प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। काव्य पाठ होगा कात्यायनी उपाध्याय का और आपके काव्य पाठ का विषय रहेगा जीव है जग का आधार, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष और दिलों में बसता है राष्ट्रगीत। इन सभी कार्यक्रमों को हमारी दोपहर की सभा में सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 MHz और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं, जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।
4: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादर जी, ये जो आप बंधेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
5: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
4: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
5: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं। विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादर जी, अपनी पसंद का गीत।
5: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
4: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी। तो
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेंपल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लस। हाँ जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीतमाला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, इधर रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुप जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है?
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने, BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार पायेश।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे, ग्राम सामनापर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही पिछले साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे।

0: ಬೆಳೆ ತಾತನ ಕಾಟಿಡುಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಚಿ ತಾತನ ಕಾಟಿಡುಲೆ ತಾತನ ಕಾಟಿಡುಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಚಿ ತಾತನ ಕಾಟಿಡುಲೆ ತಾತನ ಕಾಟಿಡುಲೆ
1: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर SB बालसुब्रमण्यम आणि गीत आहे देव कोहली, संगीतकाराचा नाम आहे राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे ना।
1: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: 2222। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466-2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ, साहिब का लिखा हुआ गाना, समीरा कॉपीकर का संगीत है।

0: अंजुमन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादा मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बेन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें। सुनते हैं ये गाना।

0: ये थी आखिरी पेशकश। अब दीजिए रंग तरंग कार्यक्रम से इजाजत।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान

विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री

0: देंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम के अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और इसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों के महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं, फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की एक कार्यक्रम। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब से लेकर दोपहर 3 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को। तो इस समय हम आपके लिए लाए हैं कुछ अवधी लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत।

0: हमारे अवधी लोकगीत जिनमें बसी है अवध की मिठास, अवध की खुशबू और हमारी परंपराएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती हैं। अवध की बात हो तो प्रभु श्री राम का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं प्रभु राम के बाल रूप का इस अवधी लोकगीत के साथ। स्वर है गणेश सिंह और साथियों का।
1: रघुबर झूले

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग, और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के बारे में जानकारी दे दें, जिसका प्रसारण दिन रहेगा 25 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। और इस हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में इस बार विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे हमारी चर्चा का विषय रहेगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी अयोध्या का नंबर 7376804090। दिनांक 25 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य।

0: अवधि लोक गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत आकाशवाणी अयोध्या से। अवध की मिठास, अवध की परंपराएं और अवध की भावनाएं हम लेकर पुनः हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: अरे

कार्यक्रम लोक रंग आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोपहर के एक बजे हैं और अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं की फेसबुक पर भेजी गई फरमा

जी तो हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश लेकर मैं हाजिर हूँ आराधना। तो नमस्कार, स्वीकार कीजिए मेरा। आज का कार्यक्रम चलेगा एक घंटा, यानी एक बजे से लेकर दो बजे तक। तो रहिए, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए अपने नाम के साथ मीठे मीठे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म मिली से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम मैं लेना चाहूंगी हुकुम करमारकर बेरोड़ी मध्य प्रदेश से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद यासीन अनजान गिरिडीह झारखंड से हैं, संतोष भाकरे नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, फैसल इमाम अररिया बिहार से हैं, बी कमल मजनू का टिल्ला से, राधेश्याम शर्मा सिरसा से हैं, बोधराज घोरवाल दिल्ली से हैं, अनिल वर्मा कुरावली से हैं, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, रविंद्र दास किशनगंज बिहार से हैं, शिव चौहान किशनगंज बिहार से ही हैं, और शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से हैं। आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं फिल्म मिली का गीत।

अनिल बी घुट के औरंगाबाद महाराष्ट्र से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, सुनील पाठक जगराव से हैं, नरेश मल्होत्रा पानीपत से हैं, मसरूर हसन सहारनपुर से हैं, अरविंद कुमार मधुबनी बिहार से, वेद प्रकाश हनुमानगढ़ राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी श्रीगंगानगर राजस्थान से, इशहाक मोहम्मद चांदेड़ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं, रवि कुमार राहुल अंबाला हरियाणा से, और नारायण लाल साहू है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आप सबके लिए है फिल्म झूम बराबर झूम का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत से हमें सीख मिलती है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, मिल कर रहें, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। चलिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल करेंगे फिल्म झूम बराबर झूम से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है पुखराज बटगुजर नोखा राजस्थान से, संजय मारकंडे खंडवा से हैं, राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, गजानन येले दरियापुर बापली से हैं।

0: जाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: कार्यक्रम है कुछ तुमने कहा, जिसमें हम शामिल करते हैं अपने श्रोताओं की पसंद जो उन्होंने हमें आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर भेजी है। हम अपने श्रोताओं की पसंद पर अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म पलकों की छांव में से, और इसके लिए हम अपने श्रोताओं के नाम लेना चाहेंगे। उमा सिंह पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, शेख जियाउर रहमान मुरादाबाद से हैं, राहुल मनवर यवतमाल से, बीएल धाकड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से, नरसिंह राजपूत बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, जगमोहन सिंह प्रजापत और संजय ढींगिया आप दोनों ही लोग हैं बागपत से, पांजा जी नहारकर नरवेल महाराष्ट्र से, आफताब अंसारी गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, राधा नामदेव सहारनपुर से हैं, कमल साहनी नागपुर महाराष्ट्र से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से हैं, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से हैं और मोहम्मद फारूख शेख गंज डुंडवारा से। तो दोस्तों, आज बढ़ती गर्मी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस गीत के माध्यम से। फिल्म है पलकों की छांव में।

मैं दोस्तों हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस गर्मी से हमें जल्दी निजात दिला दे। हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का गीत हम आप सबके लिए पेश करेंगे और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम हैं राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर राजस्थान से, लाल बाबू दीवाना दिल्ली से हैं, सुरेश जायसवाल गाजीपुर से, विक्रम सिंह कलाना राजस्थान से, शुभचंदर बजाज कालका से हैं, रिजवान खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, जीवन विश्वकर्मा चाईबासा झारखंड से हैं, रमेश कंबोज करनाल हरियाणा से हैं, ओम बगड़िया और सुभाष गोदारा आप दोनों लोग ही फजिलका पंजाब से हैं, मोहम्मद इंतजार सहारनपुर से हैं, रश्मि पांड्या राजकोट गुजरात से, राहुल भांबिष्टे कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, गोविंद वैष्णव राजगढ़ मध्य प्रदेश से और राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। आप सबके लिए हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
2: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
1: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
2: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
1: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या जहाँ है मनोरंजन के साथ साथ भरपूर जानकारियां भी। फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 1:29 हो चुके हैं। एक बजकर 29 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से। बेहद मीठा गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, तुलसी मस्कीन दिल्ली से, तुलसीदास चुग चंडीगढ़ से, उदयभान पाल बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से हैं, राजेश खोबर खिड़े महाराष्ट्र से हैं, शाहजी बोटके हिंगोली महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से, नवी हसन अब्बासी एटा से हैं, बाबू भाई उदयपुर से, बनवारी जयपाल श्रीगंगानगर से हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, ईश्वर मेहर मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं, रमेश कुमार मलोट से हैं और सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आप सबके लिए है फिल्म चोरी चोरी का गीत।

0: दोस्तों, ऐसे गीतों के साथ हम भी जुड़कर थोड़ी देर ही सही अपने आप को स्वतंत्र अल्हड़ महसूस करते हैं।
1: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं आपको देते चलें। श्रोताओं, आजकल गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे हमें अपने आप को भी बचाना है, तो आइए पहले जान लेते हैं कि इस हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं। गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना ना आना, पल्स तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिर दर्द या मछली आना, थकान, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, मूत्र ना होना या कम होना, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो जो प्रचार माध्यमों के माध्यमों से हमें जो चेतावनी दी जाती है उस पर ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के पसीना सोखने वाले हल्के वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर खुले में काम करते हैं तो चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें और छाते का प्रयोग करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ जरूर रखें, ORS घोल का प्रयोग करें, यानी अधिक से अधिक उसका प्रयोग करें, पिएं, और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे लस्सी है, चावल का पानी है, नींबू पानी, छाछ वगैरह, इसका ज़्यादा सेवन करें। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। जानवरों और बच्चों को कभी भी बंद और खड़ी गाड़ियों में अकेला ना छोड़ें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें, यानी घर में, ज्यादातर घर में रहें, बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े ना पहने, और जब बाहर का तापमान अधिक हो तो श्रम साध्य यानी मेहनत का काम ना करें। अधिक प्रोटीन और बासी या संक्रमित खाद्य पेय पदार्थों का प्रयोग ना करें। अल्कोहल, चाय और कॉफी पीने से बचें, यानी गर्म तरल पदार्थ का सेवन ना करें। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सुनवाएंगे एक और मीठा सा गीत। फिल्म खामोशी से हमने चुना है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं के नाम हैं राजेंद्र नारंग डबवाली से, सुरेश चौरसिया फर्रुखाबाद से, आर कुमार वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं, के आर साहू भाटापारा से, रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से, विनोद मूड़त उज्जैन

से हैं पटवा जी सरगांव छत्तीसगढ़ से, प्रमोद बगाड़े तालुका महाराष्ट्र से, मुकेश गोस्वामी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बालकरण वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फरमान दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, नसीब मोहम्मद छत्तीसगढ़ से, प्रवीण सोनी गांधीग्राम गुजरात से हैं, राजकुमार डूडी हिसार से और माखन वर्मा नांदघाट छत्तीसगढ़ से। खामोशी फिल्म का गीत।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: अधिकार फिल्म का गीत अब हम आपके लिए लाए हैं और हमारे श्रोताओं के नाम हैं राष्ट्रपाल गजभिये डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, ज्ञानभूषण शर्मा करनाल से, सुरेश जाधव जालना से, मोहम्मद कलीम अंसारी गंज टुंडवारा से, हरिभाव बिडवे होकर महाराष्ट्र से, बालकृष्ण फगवाड़ा पंजाब से, विनोद लखनपाल करनाल से हैं, कुंवर कृपाल सिंह परिहार मध्य प्रदेश से हैं, राजपाल मलोट पंजाब से हैं, शेख मूसा सनावत से, मोहम्मद रफीक पंवार खंडवा से हैं, सदाशिव थोराट पूर्णा महाराष्ट्र से, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं, दीपेश वर्मा सरगांव छत्तीसगढ़ से और इरशाद अहमद मड़िया हूं जौनपुर से। फिल्म अधिकार का गीत।

तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना, मोहब्बत दो खजाना है, कभी जो गम नहीं होता, है जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम

जी हाँ दोस्तों, ऐसे गीत हमको जीवन की कुछ सच्चाई बता जाते हैं, कुछ नई सीख दे जाते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए अब हम शामिल कर रहे हैं फिल्म वापस का गीत, और इस गीत के लिए हमारे श्रोता हैं ताज अंसारी लक्सर हरिद्वार से, शंभुदयाल जाखोद से, किशन सपकाल बीट शहर से, जगदीश राय मानसा पंजाब से, हरजिंदर छिंदा नथाना पंजाब से, खिल्लू परवेज लखनऊ से हैं, माधव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, अशोक सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से, नारायण हागे बुलठाणा से हैं, दातार सिंह सीकर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता संगम विहार दिल्ली से हैं, सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, और रूपेश संघई परभड़ी महाराष्ट्र से। फिल्म वापस का गीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री

दूसरे के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फिल्म का नाम है इजाजत और इस फिल्म के गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है लक्ष्मण लोखंडे यवतमाल महाराष्ट्र से, बनवारी लाल कुशवाहा फिरोजाबाद से, उत्तम कुमार भगत झारखंड से, अशोक वर्मा सनावद मध्य प्रदेश से, विनायक बेंडे आकोट से हैं, प्रवीण हागोने अमरावती महाराष्ट्र से, सीताराम कांगड़ा रोहतक से हैं, वली उल्लाह अंसारी डुमराव से, धीरज भाई रबारी गुजरात से हैं, बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, टीडी मल्होत्रा चंडीगढ़ से, जॉन डी क्रेस्टो सहारनपुर से, सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से हैं, नंद कुमार ठाकुर बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से और सुदर्शन शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से। आप सुन रहे हैं फिल्म इजाजत का गीत।

0: आज के कार्यक्रम कुछ तुमने कहा का ये अंतिम नगमा आप सुन रहे हैं फिल्म आशा से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोता हैं मुकेश शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, शमसुल कमर राही गंज डुंडवारा से, सुरेंद्र कुमार खुराना दिल्ली से, उदय भान पाल बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, राशिद हुसैन अंसारी कुरावली से, सुधीर नूतन करनाल से, एम हफीज पंजाब से, दुर्गा राम साहू कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, सतीश राव वानखेड़े पाटिल आपने अपना पता नहीं लिखा है, भागवत चौबे लखनादौन मध्य प्रदेश से, मुकेश कश्यप दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, बंडू पोपलघट महाराष्ट्र से हैं और संदीप कुमार जलंधर से। आप सब अपनी पसंद पर सुन रहे हैं फिल्म आशा का गीत। तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हमारे सभी श्रोताओं को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी पसंद भेजी और पसंद भेजने के माध्यम से आप कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही हमारे उन सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना प्यार दिया और इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से प्रसारित किया गया। दोपहर के 2 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: आज के कार्यक्रम गीतांजलि का आगाज अनूप जलोटा की आवाज में एक गजल के साथ, कलाम रानी मलिक का है।

0: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
0: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
0: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
2: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी, अयोध्या।

0: श्रोताओं, हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। आइए इसी संबंध में आपसे करते हैं छोटी सी चर्चा। सबसे पहले तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों पर हमें ध्यान देना है। हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आना आदि को पहचाने, इसे नजरअंदाज न करें। हाइड्रेट रहें, यानी शरीर में जल की कमी को ना होने दें। अधिक से अधिक पानी पिएं। जब प्यास ना लगी हो तो भी पानी अवश्य पिएं। शरीर को ढककर रखें। यथासंभव अधिक से अधिक अवधि के लिए घर, कार्यालय इत्यादि के अंदर रहें। कुछ अन्य सावधानियों को भी हमें अपनाना है। जैसे बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को जो अकेले रहते हैं, उनकी नियमित रूप से देखभाल भी की जानी चाहिए। घरों को ठंडा रखें। दिन के समय पर्दे, खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद रखें। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का

0: का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूजीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्ष

0: तावाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अवैध बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र

0: प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बहनें अपना कार्यक्रम सुने अंगना।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: अगला कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियन का लता सखी के प्यार भरा नमस्कार। और बताओ सखी, का हाल चाल है? हम समझता है कि सब ठीक है हुई। अब तो देखो लड़के बच्चन के गर्मी के छुट्टी हो गई है, तो काफी देखभाल उनके करे के पड़े। काहे से गर्मी का मौसम बहुत ही सतर्क रह चाहिए। और देखो बनी, इतना तेज घाम होत है कि हमारे लड़के बच्चन के देख बहुत ही जरूरी है। तनिक ही देर में लड़के बीमार पड़ जाते हैं, जैसे ढेर परेशानी उठावे के पड़त है। हमारे कहे के मतलब यह है कि थोड़ के जागरूक रहे के जरूरत यह है। देखो सखी, आज तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, हर साल 22 मई का मनावा जाता है। एक स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता और मनई के गतिविधि से पैदा खतरा के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ावे के बदे की गई है। देखा सकी, लोग जैविक विविधता का क्षय पृथ्वी पर जौन के अस्तित्व के बदे खतरा है। हम भोजन और औषधि और स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र के बदे जैविक विविधता पर निर्भर है। देखा सकी, आदमी मनई के गतिविधि के कारण पृथ्वी पर पौधा, जानवर, कवक और छोट जीव के प्रजाति संख्या में कमी आ रही है। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है, और साथ ही यह जैव विविधता के महत्व के प्रति जन जागरूकता बढ़ावत है और पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक पहल का प्रोत्साहित करत है। जैव विविधता दिवस के बदे तमाम मेर मेर के तथ्य है। जैव विविधता जल से संसाधन का सुरक्षा करत है और आर्द्र भूमि और नदी तटीय वन के माध्यम से जल का छान के शुद्ध करके एक प्राकृतिक ढाल के तरह काम करत है। यह वनस्पति के माध्यम से जल चक्र का नियंत्रित करत है। कृषि खाद्य सुरक्षा के बदे जैव विविधता आवश्यक है। भोजन में जैव विविधता विविध सांस्कृतिक रुचि और आहार संबंधी प्राथमिकता के अनुरूप कईयों पौष्टिक विकल्प प्रदान करत है। हमारे कहा के मतलब यह है बहनी ना, कि एकर दो

0: प्रदूषण के कारण आज पृथ्वी के लाखों लाख जीव पौधा प्रजाति जो उनकी लुप्त हो जाता है एक खतरा मंडराता है। हमें प्रकृति के नुकसान से बचाव के खातिर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। देख सकी अपने सभी हर तरह से बात मत कही तरह के मन मन साइन कराओ थी रेडियो के माध्यम से कराई थे और बहनी लोग हर तरह से रेडियो में हर तरीके से गीत संगीत बात बत कही सुन के अपन मन मनसायन करत थी। जैसे हम सभी जीव जग में सबसे बढ़िया माध्यम है रेडियो और आज हम कुछ ऐसा ही एक काव्य पाठ भी लेके आए हैं जेकर विषय है जीव है जग का आधार आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष दिलों में बसता है राष्ट्रीय गीत। एक बतावत है कावित्री है कात्यानी उपाध्याय तो नहीं से सुना जाए।
1: जैव विविधता दिवस पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं।

और पंक्तियां देखिए, गीत संगीत संस्कृति शिक्षा कृषि हो या मनोरंजन, गीत संगीत संस्कृति शिक्षा कृषि हो या मनोरंजन।

कासिक कहरा सीखें इसमें, सीखें स्वर और व्यंजन, कासिक कहरा सीखें इसमें।

मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। और गीत का आखिरी बंद है, ये मामूली गीत नहीं है इसमें आत्मा बसती, ये मामूली गीत नहीं है इसमें आत्मा बसती, राष्ट्र चेतना और गौरव की नित्य कहानी कहती, राष्ट्र चेतना और गौरव की नित्य कहानी कहती, राष्ट्रभक्त और त्याग जगाकर, राष्ट्रभक्ति और त्याग जगाकर लौटाया प्यारा सा वतन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।

0: மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம்.
1: देखो बहनी कितनी बढ़िया काव्य पाठ रहा कात्यायनी उपाध्याय बहनी अपने वाणी के माध्यम से पूरा के पूरा एकदम से समझाए के बताए दी सब बहन के जरूर समझ में आए हुए। और देखो बहनी अब बात बत कही तो वही आगे चल में करे छोड़ के संदेश के बाद।
2: क्या बात है बड़े दिनों बाद।
3: हाय यार अच्छा सुन दाढ़ी बनवाने का कितना होगा।
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
3: और

0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
0: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
6: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
9: देखो बहनी, हम तो ये कहे थे ना कि अपना काम काज बात बात कहे के बाद बारी आ जाते है बढ़िया से गीत संगीत के, सब सखियन के मन मनसायन करब बहुत जरूरी है। तो कैसे सखी लोग इंतजार कर रहे थी, तो बढ़िया से गीत अपने अंग नियम लेके आए हैं। सर है विमला कठोरिया और उनके सखियन के बोल है सुहाय मोरी बननी।

देखो मैंने विमला कठोरिया उनके सखियन के आवाज में गाने कितनी मनोहारी रही, हमका पूर्ण विश्वास है कि सखियन लोग एकदम प्रश्नचित हो गए हुई हैं। लेकिन मैंने देखो घरेलू जानकारी में सब बहन लोग अपने अंगनयाम जन बैठी हैं ना, अपने झोरिया से कलम और कागज निकाल लें भाई। देखो रोज के रोज उनका नई नई जानकारी दी जाते हैं ना, तो एक आज हम लेके आए हैं सौंदर्य के बारे में बहन लोग का कही करब उनके बीच में। तो गर्मी के मौसम में कितना देखो धूप होता है और हवा और पसीना होता है, ये सबके बच्चे के बदे अपने सबका सतर्क रहना चाहिए, जिसे हमार बहने बढ़िया से बढ़िया उनके बाल रहे और बाल अच्छे से बढ़िया से रखे बदे उनका चाहिए कि भाई अपने बालन में मेथी दाना और एलोवेरा के गूदा निकाल के दही में ओका बढ़िया से फेंट लें, ओका लगावें बढ़िया से मुलायम और चमकदार हो जाए, बाल हमेशा लंबा रहे और दुई मुहा ना होए। लेकिन मैंने जो कहा जाता है ना, कुछ पावे खातिर कुछ खोवे का पड़ा था, तो भाई देखो अपन मेहनत कहके तो एका तो करहिन का पड़े, तबे तो अपन बहन लोग फायदा उठाए पई हैं। और देखा सके लोग ए गर्मी के मौसम में अपने चेहरा और शरीर का भी बहुत ही ध्यान रखे के चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने बाल का भी ख्याल रखे के चाहिए। कहा जाते ना बहनी लोग कि देखो जो गहना है वो बाल अपने बहन के होत है, एक तेज धूप में जाए से बाल का पूरी तरह से सूती कपड़ा से ढक ले, जैसे घाम में और धूल ना लगे। हफ्ता में 2 से 3 बार हर्बल शैम्पू रीठा शिकाकाई इसे धोएं और बाल में नमी बनाए रखें। अपन बहनी लोग सिर का धूप से बचावे खातिर छाता लेके भी चल सकते हैं, बाल में पसीना से बचावे के चाहिए, भरपूर पानी पिए जैसे नमी बनी रहे, जब भी बाल का चोटी या जोड़ा बनावे तो ढीला बनावे जैसे जड़ कमजोर ना पड़े, सही तरीके से बाल का धोएं, रोजाना शैम्पू ना करें, रोज शैम्पू के ही से बाल के प्राकृतिक जो चमक होते हैं ना और जो तेल वो खत्म हो जाते हैं, जैसे बाल रूखा हो जाते हैं। ऐसे चमकदार बनावट के खातिर बने लोग तमाम तरह के जो बाजारू उपयोग करते हैं ना उसे बाल खराब हो जाते हैं अपने बहनों के, और ज़्यादा देर तक तेल ना लगाए रखें, या गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आवत है, रात भर तेल लगाएं और सवेरे जो है उसका बाल अच्छे से धो लें। दही और एलोवेरा का जो पेस्ट बनाए के बनावा जाता है उसका लगाए के बढ़िया से ठंडे पानी से धोए दें। दही शहद और एलोवेरा का पेस्ट हफ्ते में 2 बार जरूर से जरूर लगावें।

दुई मुहा बाल के लिए जब समस्या हो जाए बहन के, कबो कबो देखा जाता है तो बहन लोग का चाहिए कि 6 से 8 हफ्ता में थोड़ थोड़ के कटिंग जरूर करा लें। खान पान और हाइड्रेशन से बचें, खूब पानी पिएं, शरीर में नमी बनाए रखें, दिन भर में भरपूर पानी पियत रहें। कैसे देखो मैंने गर्मी कितना पड़ा था। हरी साग सब्जी और फल अपने आहार में जरूर शामिल करें, फल है सलाद है हरी सब्जी का शामिल करें। आंवले का सेवन बाल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेथी दाना में नींबू के रस मिलाए के घोल बनाए लें और बाल में लगाएं, बाल जो है इसे चमकदार और बढ़िया से हो जाते हैं। हम तो कही थे बनी कि ये गर्मी के मौसम में अपने सबके जो लड़का बच्चा हैं अपने सबों का बढ़िया से उनके ध्यान रखे के चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके तो विशेष ध्यान रखे के चाहिए, उनका धूप मना निकले दें, ऐसे जो है तमाम तरह तरह के दिक्कत हो जाते हैं। अपन बने लोग चाहिए इस तरीके से थोर के सूझबूझ से काम करिए, सतर्क रहिए, तो खुद जो उन बात स्वस्थ रहिए और उनके लड़का बच्चा भी स्वस्थ रहिए। और देखा सखी हम तो कही था इस तरीके से बने लोग अपन ध्यान रखिए ना, तो के बाद जब बने लोग खुश रहिए घर अंगनैया में तो बारी आवत है गीत संगीत के। तो बहन देखो हम गीत लेके आए हैं बढ़िया से, स्वर है प्रतिमा यादव के, बोल है सासू पनिया कैसे जाऊँ।

देखे बहनी गौने कितनी निराली रही, सभी सखियन के मनवा एकदम तरोताजा हो गया है, लेकिन मैंने घड़ी कुछ ऐसा ही इशारा करते थे कि अपने घरे चले के

0: बढ़िया हो गया है। अगले कार्यक्रम में नेक नेक बात बत कही और गीत संगीत के साथ फिर हुए मुलाकात। तब तक के लता सखी का दयान मत नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

बहनों ने अपना कार्यक्रम अंगना सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं, पुनः जुड़ते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे है तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी।

0: आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजिता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी जी जी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है जी, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं फिर फ्रेश वगैरह होते हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है
0: जी।
1: तीन बच्चे है तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना
0: जी,
1: उन लोग को नाश्ता कराना। ये सर
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है
0: जी,
1: सब बनाती हूँ। और इसकी सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी जी जी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: खाने दाल छीलूं।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: दीदी ने जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक नए वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी ने मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ट्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा।
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब तैयार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से तैयार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहे

0: जानू सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी।
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी।
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी।
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है
0: जी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। इसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है
1: जी।
0: तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती है केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी।
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक
0: जी।
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिसपे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है
0: ट्रे
1: हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं। अगर

0: में नहीं लगा है इट मीन्स की केक आपका रेडी है. अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए.
1: क्या बात है. और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना.
0: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए.
1: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है. और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी.
0: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए. हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे. गाने का बहुत शौक था. शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है. तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है. मेरी मासियां, मेरी अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सबकी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था.
1: क्या बात है.
0: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी.
1: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई है बचपन से.
0: बहुत बचपन से जी. हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बच गया ये आएगा.
1: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की. आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी.
0: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना सलाम इश्क मेरी जान.
1: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं.

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने। तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू
0: जी,
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सच्ची सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरे झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती है यानी आपके घर में।
1: और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: सबको जिसका, हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी
0: जी, जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है, हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसलिए मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सब के लिए, तो जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना।
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई, है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, अब हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम है उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाए?
1: आज आपने ही पसंद का गाना सुनवाइए।
0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं?
2: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
2: मैम मैं डॉली बोल रही हूँ भोपाल से।
0: डॉली जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, आप भोपाल से हैं तो वहाँ का कैसा मौसम है इस समय?
2: मैम इस तरह तो गर्मी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि गर्मी की वजह से सारा लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं बहुत ही।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाती हैं ये बताइए मुझे।
2: गर्मी से बचने के लिए देखो प्रतिदिन तो सब स्नान करते ही हैं।
0: जी जी,
2: ऊपर से जैसे ठंडा कुछ जैसे नींबू की शिकंजी है या रुआबजा है या दही की लस्सी है ये पीते हैं, सब ग्लूकोज है घोल के, बस इसी वजह से सबको तराहाई मिलती है।
0: क्या बात है। और आम का पना नहीं बनाती आप?
2: मैम आम का पना नहीं बनाते हैं हम, जैसे अगर जैसे आम की अगर आपको लस्सी बनाना है तो आप मिक्सी में मिक्स करके और बढ़िया बर्फ वगैरह डाल के जो आप जा डाल के बढ़िया पीजिए, अच्छा लगता है। मैम मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
2: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
0: जी,
2: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
0: जी,
2: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
0: जी, जी।
2: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
0: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम अशिया नाज है।
0: अशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: अशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अशिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश रहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर
0: जी।
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो सहेली और ये तो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो, जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का, वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है। तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, छाया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा
0: जी,
1: प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी। हेलो सहेली, ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव।

0: संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी
1: जी,
0: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेलिया ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: धन्यवाद। आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपिया उस पर।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002462, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है

0: उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सगा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्म रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अता नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं।

बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियाँ खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना, ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। ये कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों

और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहाँ की भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्युमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती है? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं। हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा

होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती। दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपनी कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल है। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा

ढोल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

खुशियों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे से, और ये है हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर देश और दुनिया के श्रोता आकाशवाणी अयोध्या एफएम के प्रोग्राम से सुन रहे हैं। सांध्यकालीन कार्यक्रमों में आपके साथ रहेगा 11:10 तक आपका रेडियो मीत अमरजीत, जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या।

शाम के 5 बजने जा रहे हैं युवा साथियों को संबोधित। आइए सबसे पहले सांध्यकालीन कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम सुने। मंजली सिंह आज की हैं प्रेजेंटर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जयंत पटेल, कार्यक्रम अधिशासी। बस कुछ ही पलों में ये प्रोग्राम।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
2: आदर अभिनंदन, आभार, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज है फेबुलस फ्राइडे और आपकी दोस्त मंजुली सिंह लेकर आ चुकी है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। पहले चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। उसके बाद स्थान सेगमेंट में हम चलेंगे कोणार्क की यात्रा पर। साथ ही होगी एक वार्ता जिसका विषय है युवाओं में बढ़ता तनाव और समाधान। वार्ताकार है शगुन विश्वकर्मा। उसके बाद ही होगा सेगमेंट शब्दावली। तो इसी तरह कुछ गाते गुनगुनाते बीतेगा आज का सफर। तो दोस्तों आज तारीख है 22 मई। वैसे तो हर दिन खास होता है, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, पर आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो दोस्तों बात है दिसंबर 1993 की, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत की। शुरू में इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2000 में यूएन ने इसे बदलकर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निश्चय किया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 22 मई को रियो डी जेनेरियो में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य साफ था, दुनिया भर के लोगों को बताना कि हमारे आसपास के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकौड़े हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। और दोस्तों इस दिन पूरे विश्व में स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी संस्थाओं में सेमिनार्स होते हैं, पौधे रोपण होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि लोग अपनी जैव विविधता के प्रति जागरूक बने। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको रोज खाने में सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्जी मिले तो कैसा लगेगा? क्या बोर नहीं हो जाएंगे? हमें तो वैरायटी चाहिए होती है, कभी पनीर, कभी रायता, तो कभी मीठा। ठीक वैसे ही हमारी जो नेचर है, जो कुदरत है, इसे भी वैरायटी चाहिए। विभिन्न पशु पक्षी, पेड़ पौधे चाहिए इकोसिस्टम को चलाने के लिए। तो समझिए कि अगर ये जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो हमारी थाली का खाना और सांस लेने के लिए जो हवा है, ये दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें इसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 2026 में जो जैव विविधता का दिवस है, इसकी थीम रखी गई है वैश्विक प्रभावों के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। वैसे दोस्तों सच भी है, वैश्विक स्तर पर अगर बदलाव चाहिए तो हमें इम्पैक्ट तभी दिखाई देगा जब हम स्थानीय स्तर पर काम करेंगे। दोस्तों देखिए, नेचर ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है, हवा, पानी, धूप, पर्यावरण, सब कुछ, पर अब थोड़ा सा फर्ज हमें भी निभाना है, इसका संरक्षण करना है। तो दोस्तों आज करिए खुद से एक वादा कि हम अपनी धरती को थोड़ा सा और हरा भरा बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

दोस्तों चलिए इस बेहतरीन से गीत के बाद अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको ले चलती हूँ एक बेहतरीन से सफर पर। दोस्तों कभी आपने सोचा है अगर पत्थर बोलने लगे तो वो क्या गाएंगे? अगर इतिहास खुद को एक रथ पर सवार कर दे तो वो कहाँ जाएगा? आज आपको किताबों से निकाल कर सीधे ले चल रही हूँ समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच, जहाँ रेत पर कदम रखते ही इतिहास आपके कान में फुसफुसाता है। जी हाँ, आज हमारा सफरनामा पहुँच रहा है अयोध्या से 1200 किलोमीटर दूर ओडिशा में स्थित पुरी जिले के कोणार्क शहर में। दोस्तों जब भी हम कोणार्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही भव्य पहिए और रथ वाला मंदिर, है ना? पर कोणार्क में और भी बहुत कुछ है घूमने को। दोस्तों कोणार्क यानी कोण और अर्क, कोण का अर्थ है कोना और अर्क का मतलब है सूर्य, यानी सूरज का अपना कोना। और आज इस कोने के कोने कोने में घूमेंगे हम और आप। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट देखना है ना, तो सुबह 5 बजते ही पहुंच जाइए

चंद्रभाग बीच नीले समंदर के पानी को छूती जब सूरज की पहली लाल किरण बाहर आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई लाइव पेंटिंग बना दी हो। ये बीच बहुत शांत और साफ सुथरा है। यहाँ की गीली रेत पर नंगे पैर चलना किसी मेडिटेशन से कम तो बिल्कुल नहीं है। सुबह की इस ताजी हवा के बाद चलिए सीधे चलते हैं इतिहास की ओर। समंदर की लहरों को बाय बाय कहकर हम आ गए हैं कोणार्क के दिल, वास्तुकला के अजूबे और यूनेस्को वर्ल्ड साइट, जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ पर समुद्र के लहरों और इतिहास की गूंज के बीच खड़ा कोणार्क मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान और आस्था का जीवंत संगम है। जब आप इसके मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि तत्कालीन समाज की पूरी झलक है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जब हम इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमें दिखता है एक विशाल भव्य 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला रथ। सोचिए, पूरे मंदिर को एक रथ का रूप दिया गया है। इस रथ में 24 पहिए हैं और 7 शक्तिशाली घोड़े इसे खींच रहे हैं। अब आपको लगेगा ये तो बिल्कुल डिजाइन है। अरे नहीं, ये डिजाइन नहीं, ये प्राचीन भारतीय विज्ञान है। चलिए ऐतिहासिक चक्र की ओर देखते हैं। ये चक्र सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये अपने समय की सबसे सटीक धूप घड़ी या सनडायल है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं। अगर आप आज भी इसके केंद्र में एक उंगली या पेन रखेंगे तो उसकी परछाई सीधी जिस तीली पर पड़ेगी ना, वो आपको सटीक समय बता देगी। है ना कमाल का। ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस मंदिर में जो आपका ध्यान बिल्कुल आकर्षित करेंगी। अब चलिए मुख्य द्वार के पीछे चलते हैं। यहाँ बना है माया देवी मंदिर, जो सूर्य देव की पत्नी देवी माया को समर्पित है। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ये मुख्य मंदिर से भी पुराना है। इसकी नक्काशी भले ही समय के साथ थोड़ी थोड़ी ढह गई है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर आज भी लाजवाब है। और मंदिर परिसर के बाहर निकलते ही आपको दिखेगा नवग्रह मंदिर। यहाँ एक विशाल काले बेसाल्ट पत्थर पर हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह की आकृतियां उकेरी गई हैं। स्थानीय लोग और देश विदेश से आए श्रद्धालु यहां आकर ग्रहों की शांति के लिए पूजा करते हैं। मान्यता है कि इसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, क्योंकि इसमें गजब की चुंबकीय शक्ति थी जो कभी मुख्य मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी। दोस्तों, मंदिर के पत्थरों को निहारने के बाद अगर आपके अंदर का खोजी इंसान और जानना चाहता है, तो मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूर पर है कोणार्क सूर्य मंदिर म्यूजियम। अक्सर लोग म्यूजियम जाना स्किप कर देते हैं, पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस म्यूजियम के चारों ओर गैलरीज हैं। जो गैलरीज हैं, इनमें वो सारी के सारी बेशकीमती मूर्तियां रखी हुई हैं और नक्काशीदार खंडित हिस्से संभाल कर रखे गए हैं जो सूर्य मंदिर में मिले थे। और ऐसे ये मूर्तियां हैं जिन्हें मुख्य मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए वहां से हटाया गया था। यहां आपको सूर्य देव की वो विशाल प्रतिमा मिलेगी जो अपने आप में अद्भुत है। चलिए अब थोड़ा और घूमते फिरते हैं। थोड़ी ही दूर पर यहां पे लोकल मार्केट है। ओडिशा की रीढ़ है यहाँ की उसकी कला। कोणार्क की मार्केट में आपको स्थानीय कारीगर पटचित्र पेंटिंग्स बेचते दिख जाएंगे। और आपको पता है, ये पेंटिंग्स ताड़ के पत्तों और कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ की मशहूर पिपली एप्लिक वर्क के हैंडबैग्स, लैम्प शेड और होम डेकोर के आइटम्स की तो भरमार है। बढ़िया मोमेंटो खरीद सकते हैं आप। और सबसे खास बात, ओडिशा की मशहूर संबलपुरी और इक्कत की साड़ियां और कुर्ते बहुत सही दाम में मिलते हैं, तो हमारी मानिए तो ले ही लीजिएगा। अरे देखिए, घूमने फिरने में तो हम भूल ही गए कि हमने खाना पीना तो कुछ खाया ही नहीं। और अब जब बात ओडिशा के खाने पीने की हो रही हो ना, तो दिल खुश हो जाता है। चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, दही बड़ा दम आलू। ये हमारे उत्तर भारत के दही भल्ले से काफी अलग है। इसमें दही बड़े के ऊपर दम आलू और ऊपर से चटपटी भुजिया और प्याज पड़ता है, और स्वाद ऐसा ब्लास्ट रहता है ना कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। और दोपहर के खाने में जब आप जाएं, तो किसी एक अच्छे से लोकल रेस्टोरेंट में चले जाइएगा, ओडिया रेस्टोरेंट में, और वहां पर जाकर पारंपरिक ओडिया थाली ऑर्डर कीजिएगा। इस थाली में आपको मिलेगा पखाल भात, यानी तड़का लगा हुआ चावल का पानी, जो गर्मी में क्या मस्त ठंडक देता है। साथ ही होगी दालमा, यानी सब्जियों के साथ पकी हुई दाल और साग भजा भी रहेगा। और हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ओडिया स्टाइल मांस झोलो और प्रॉन मलाई करी भी ऑप्शंस में है, इनको ट्राई कर सकते हैं आप। अरे इसके साथ साथ तो हम भूल ही गए कि मीठा रह गया है, और मीठे के बिना तो हमारी कहानी अधूरी है। तो खाने के बाद चलिए चलते हैं।

0: मीठे पे, और मीठे में यहाँ मिलेगा आपको छेना पोड़ा। इसे ओडिया का देसी चीज केक कह सकते हैं। पनीर और चीनी को केले के पत्तों में लपेटकर भट्टी में बेक किया जाता है, फिर इसका जो कैरेमल वाला स्मोकी फ्लेवर आता है ना, हाँ मजा आ गया। और अब शाम हो चुकी है, शाम ढलने का वक्त आ रहा है, तो अब बहुत सारे जाने को, तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, पर मैं आपको ले चलूंगी अस्तरंग बीच। एक शांत कम भीड़ भाड़ वाला फिशिंग विलेज और बीच है। शाम के वक्त जब यहाँ सूरज ढलता है तो आसमान नीले से पीला, नारंगी और गहरा लाल हो जाता है, और एक कंप्लीट बेहतरीन सा सनसेट हमारी यात्रा को और भी कंप्लीट कर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा कोणार्क का सफर, और ये बेहतरीन सा सफर हमने तय किया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा, शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
3: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, ये इतनी हेक्टिक हो गई है कि बात बात पर स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है। इसी विषय से संबंधित चलिए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है युवाओं में बढ़ता तनाव और समाधान। वार्ताकार है शगुन विश्वकर्मा।
7: चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। संत कबीरदास जी के इन शब्दों में चिंता यानी तनाव की गहराई और उसके दुष्प्रभावों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहां हर युवा अपने सपनों को साकार करने की दौड़ में लगा है, वहीं तनाव एक ऐसी अदृश्य बाधा बन गया है जो उसकी प्रगति को अंदर ही अंदर प्रभावित कर रहा है। आज का युवा बाहर से तो आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखाई देता है, परंतु उसके मन के भीतर कई तरह के ख्याल चलते रहते हैं। पढ़ाई का तनाव, करियर का चुनाव, परिवार की अपेक्षाएं, इसी प्रकार और भी बहुत कुछ। यह निरंतर दबाव युवाओं में धीरे धीरे मानसिक थकान, आत्मविश्वास में कमी और कभी कभी डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का रूप ले लेता है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक कहानी साझा करती हूँ। एक छात्र था जो पढ़ाई के दबाव में हमेशा तनाव से घिरा रहता था। वह कक्षा में कभी उत्तर नहीं देता था, ना ही शिक्षक से कोई प्रश्न पूछता था। एक दिन उसके शिक्षक ने इस बात पर ध्यान दिया और छात्र से पूछा, तुम प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते? तब छात्र ने कहा, सर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। तब शिक्षक ने उसके हाथों में कुछ किताबें पकड़ा दी और कहा कि इसे थोड़ी देर पकड़े रहो। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथों में दर्द होने लगा। तभी शिक्षक मुस्कुराए और बोले, जैसे इन किताबों को ज्यादा देर तक पकड़े रहने से तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगा, उसी प्रकार डर और तनाव को पकड़े रहने से मन कमजोर हो जाता।

है। उस दिन के बाद से छात्र ने डर छोड़कर कोशिश करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे पढ़ाई में भी सफलता मिलने लगी। इसी प्रकार हम भी अपने तनाव में इतना खो जाते हैं कि अपना आत्मविश्वास, मेहनत और काबिलियत भूल जाते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस समस्या का समाधान संभव है? निश्चित रूप से हाँ, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने समय का सही प्रबंध करें। आज के युवा के पास अवसर भी है और चुनौतियाँ भी, लेकिन जब समय का सदुपयोग ना किया जाए तो वही अवसर अक्सर दबाव में बदल जाते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, प्राथमिकताएं तय करें, योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करें तो अनचाहा तनाव कम हो सकता है। छोटी छोटी उपलब्धियां भी आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा यह है कि हमें अपनी जीवन शैली स्वस्थ बनानी चाहिए। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे और तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर व्यायाम, योग तथा ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ अस्वस्थ आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी प्रसन्न रह सके और हम तनाव से भी दूर रहें। इसी के साथ हमें डिजिटल संतुलन बनाना होगा। आज मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हमारे मानसिक शांति को प्रभावित करता है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकना, लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागना, यह सब हमारे आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए हमें डिजिटली अवेयर होने के साथ ही साथ उसके नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने मन को संतुलित रखना होगा। हमें सच्चे मित्रों का संग एवं सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं, साथ ही हमारी सफलता से खुश होते हैं। और सकारात्मक विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने कहा है, संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, संगत कीजे निज की, आठों पहर उपाधि। अर्थात अच्छे लोगों की संगत करने से हमारे मन के दुख और दोष दूर होते हैं, जबकि बुरी संगत हमें हर समय परेशानी और तनाव में डालती है। हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति स्पष्ट रहना होगा। जब तक जीवन में दिशा स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन में भ्रमित रहेंगे। जिस प्रकार केवट अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उसी ओर बढ़ता चला जाता है और उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर वही केवट अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए अपने लक्ष्य को देखे तो वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी हम तनाव से भी दूर रह पाएंगे। कभी कभी हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। दिन भर की भाग दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें अत्यधिक तनाव होने लगता है। इससे बचने के लिए हमें दिन में कोई भी एक समय स्वयं को देना चाहिए। इस समय अपने प्रियजनों से बातें करें, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें, वॉक पर बाहर जाएं, कुछ समय अपने साथ खुद के बारे में चिंतन करें अथवा बैठकर नज़ारों का आनंद लें, जिससे आपका मन शांत रह सके और तनाव दूर रहे। हमें अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए उन्हें सफलता में परिवर्तित करना होगा। आज के कई युवा असफलता से डरते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि बालक अपने बाल्यकाल में यह सोच ले कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी अथवा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो शायद वह बालक अपने जीवन में कभी चलना ही नहीं सीख पाता। इसी प्रकार हमें भी इस असफलता से सीखना चाहिए, ना कि उनसे

0: तनावग्रस्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हमारा मन, बुद्धि और शरीर भी हमारा साथ नहीं देंगे। इसी के कारण हमें तनाव होगा और हम तरह तरह की बातें सोचने लगेंगे। इसी से संबंधित चाणक्य ने भी कहा है, आत्मविश्वासः हि पुरुषस्य बलम्। मनुष्य का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। हर व्यक्ति की अपनी गति और क्षमता होती है, जिसके अनुसार वह कोई भी कार्य करता है। इसके साथ ही यदि कभी तनाव अत्यधिक बढ़ जाए तो अपने माता पिता अथवा अपने प्रियजनों से अपनी समस्या को साझा करें, जिसके फलस्वरूप वह भी आपकी कुछ सहायता कर सके। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। जीवन में तनाव कई बार आता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना हमारी अनदेखी है। यदि युवा अपने मन को सशक्त, संतुलित, सकारात्मक और काबू में कर ले, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन सफल होगा, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज का युवा जितना मानसिक रूप से मजबूत होगा, देश का भविष्य उतना ही उज्जवल और सुरक्षित होगा।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी ये वार्ता, जिसका विषय था युवाओं में बढ़ता तनाव और समाधान। वार्ताकार है थे शुभम विश्वकर्मा, सॉरी शगुन विश्वकर्मा। तो दोस्तों, चलिए रेडी हो जाइए, अब आ गया है आपका बेहतरीन सा सेगमेंट शब्दावली। और इस सेगमेंट में खास हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन से वर्ड्स, जो करेंगे आपकी नॉलेज को इम्प्रूव और बनाएंगे आपके वोकैबुलरी को और भी फैंसी। अब हमारा पहला शब्द जो आज का है वो है रेकॉन्टोर, RACONTEUR। ये एक प्रोनाउन शब्द है जिसका अर्थ है मजेदार किस्से, कहानी सुनाने वाला। मीनिंग इन इंग्लिश, अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर। इसका सिनोनिम है एनेक्डोटिस्ट। वाक्य में प्रयोग है, माई ग्रैंडफादर इज ए ब्रिलियंट रैंकोर हु कैन कीप एवरीवन एंटरटेन्ड फॉर आवर्स विद हिज एडवेंचरस टेल्स। यानी मेरे दादाजी एक शानदार कहानीकार है जो अपनी साहसिक कहानियों से घंटों तक सभी का मनोरंजन कर सकते हैं। दूसरा शब्द है प्रिस्टाइन, PRISTINE। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है निर्मल या स्वच्छ। इसका सिनोनिम है इमैक्युलेट, फ्रेश और क्लीन। एंटोनिम है डर्टी और स्पॉइल्ड। इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली क्लीन और न्यू। वाक्य में प्रयोग है, द हाउस इज इन प्रिस्टाइन कंडीशन। ये घर बिल्कुल साफ और नई स्थिति में है। अगला शब्द है परफंक्टोरली, PERFUNCTORILY। ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है डूइंग समथिंग मेयरली एज अ रूटीन विदाउट जेन्युइन केयर। यानी बिना रुचि के सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए कुछ करना। वाक्य में प्रयोग है, ही परफंक्टोरली चेक द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग देम। यानी उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले बस औपचारिकता के लिए उन्हें देखा। अगला शब्द है जेपर्डाइज, JEOPARDIZE। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ है जोखिम में डालना, यानी मीनिंग है एंडेंजर और रिस्क। वाक्य में प्रयोग है, ही जेपर्डाइज्ड हिज लाइफ बाय ड्राइविंग रेकलेसली। यानी उसने लापरवाही से गाड़ी चलाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगला हमारा आज का जो आखिरी शब्द है वो है पारितोषिक, जिसका अर्थ है पुरस्कार या रिवॉर्ड। वाक्य में प्रयोग है, राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म पुरस्कार वितरण समारोह में देश के विशिष्ट नागरिकों को पारंपरिक पारितोष प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की शब्दावली के सारे शब्द। उम्मीद है आपने अच्छे से इन्हें नोट कर लिया होगा। और गर्मी अपने एक्सट्रीम पे है, तो दोस्तों जरूर ध्यान रखिए कि हाइड्रेटेड रहिए और धूप में निकलने से बचिए। थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। इसी के साथ बता दें कल के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कल चर्चा होगी योग और हमारा स्वास्थ्य पर, साथ ही मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाए पर। हमारी धरोहर सेगमेंट में है राजस्थान के पहाड़ी किले, साथ ही होगा शुभ्रा शुक्ला का योग, पर्यावरण, मां और सफलता पर काव्य पाठ। आर्थिक जगत में है अवस्फीति और अपस्फीति। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजुल सिंह को इजाजत। नमस्कार
2: पापा। लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है।

0: ये था आज का युववाणी कार्यक्रम जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या FM से सुना। समय मिलाइए शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। अब शुरू करते हैं लोक संगीत कार्यक्रम इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

आकाशवाणी अयोध्या के लोक संगीत कार्यक्रम में अब जो लोकगीत आप सुनने जा रहे हैं उसे गाया है सतीश चंद्र गुप्ता और साथियों ने। इनसे आप ये कहरवा सुनेंगे।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें

0: ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। और अब दीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में शिखा भदौरिया से ये श्रम गीत लोकगीत के रूप में है।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं खेमटा, गायक स्वर रत्नेश द्विवेदी और उनके साथियों का। आइए सुने ये लोकगीत। लोकगीत हम आपको शाम 6:30 बजे भी सुनवाएंगे गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: इस विज्ञापन से पहले आपने कुछ लोकगीत सुने। आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी अयोध्या FM से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन कार्यक्रम। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 6

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब

0: राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

का रेडियो में तमरजीत जी हां प्रोग्राम पेश कर रहा है शाम सुहानी आपके लिए। आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत, मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। सुनिए गाना, क्योंकि बोलते जाएंगे तो फिर आप गाना नहीं सुन पाएंगे।

तो हीट वेव लगातार जारी है कई प्रदेशों में और रात में भी काफी गर्मी होती है, तब रहा होता है 12 बजे के बाद भी मौसम ठंडा नहीं होता है। तो भाई ये तो मौसम है, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। अगर मौसम गर्म नहीं होगा तो समुद्र से जलवाष्प होकर उड़ेगा नहीं ऊपर बादलों में, पहुंचेगा नहीं तो फिर बारिश नहीं होगी, फिर आप कहेंगे बारिश नहीं हो रही है। तो बस देखिए सारे सिस्टम दुनिया के ऐसे ही बने हुए हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच काफ़ी तेज़ धूप होती है, जब आपका कोई काम हो तभी आप धूप में निकलें और चेहरे और सर को ढक कर बाहर निकलें और हर आधे घंटे में हल्का ठंडा पानी पीते रहें, छाछ नारियल पानी या नींबू पानी ORS लेते रहें। 8 से 10 गिलास गर्मी के मौसम में पानी ज़रूर पीना चाहिए। और ये पानी वाला गाना भी आ गया ठंडक पहुँचाने के लिए आपको।

यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में ये गाना यारियां टू से आपने सुना। ये आशा ना करें कि दूसरे आपको प्यार करें और आपका ध्यान रखें, बल्कि आप उन्हें अपना प्यार दें और उनका ध्यान रखें। दुखों से भरी इस दुनिया में प्यार के दो मीठे बोल मरुस्थल में सागर की तरह होते हैं। जी हाँ, रेगिस्तान में सागर की तरह होते हैं। यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है, इंतजार करने की आदत है, तो आप अवश्य ही जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। लेकिन अभी पीछे मत रहिए, गाना सुनिए। जी हाँ, ये गाना विशाल मिश्रा और नक्श अजीज की आवाज में पहुंच रहा है आपके पास। भूत बंगला फिल्म से।

अच्छा सुनिए, प्रोग्राम का टाइम तो बड़ा ही अच्छा है। शाम का टाइम है 6:10, लेकिन बस यही है कि टाइम थोड़ा कम है और बातें करने को भी नहीं मिलती कभी कभी पूरी, और गाने भी आपको पूरे नहीं सुना पाते। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी पहुंच रहा है आपको अच्छा लग रहा है, बस इसी में हमें सुकून है। आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं पहुंचता रहूंगा आपके पास। इसी तरह से शाम सुहानी प्रोग्राम लेकर आपके पास। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है।

0: बॉलीवुड के फिल्मी गानों पर तरतीब दिया गया ये प्रोग्राम था शाम सुहानी आकाशवाणी अयोध्या FMC 101.9 पर आप सुन रहे थे और देश और दुनिया के श्रोता इसे सुन रहे थे प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर इंटरनेट के जरिए। बस संस्कृत में समाचार सुनिए दिल्ली से।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोरोलाइड्स

0: इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेशप्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादश दिनांके दश राज्याणां चतुर्विंशति राज्यसभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणाम् अकरोत्। सर्वोच्च न्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमाक्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपि तु भविष्याभिमुखी अपि अस्ति इति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेशप्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्ति इति श्रीमोदी अवदत्।
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् उपवेशनावधौ तौ वैश्विक विषयेषु अपि चर्चितवन्तौ।
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषः अवदत् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः यूरोपीय संघ भारत सम्बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्तं प्रगतिम् अकुर्वन्। प्रातःकाले विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् सः द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारत यूरोपीय सहयोगाय च सकारात्मक भावानां मार्गदर्शनस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायामस्ति। निर्वाचनायोगेन अद्य दश राज्येषु चतुर्विंशति राज्यसभा आसनानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा कृता। पूर्वः प्रधानमन्त्री HD देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। येषां कार्यकालः अग्रिमे मासे समाप्तः भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे द्वे आसने स्तः। मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे तथा मिजोरमे प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तं भविष्यति। आयोगस्यानुसारम् अग्रिममासस्य प्रथमे दिनांके अधिसूचनायाः निर्गमनं भविष्यति तथा जून मासस्य अष्टादश दिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना

0: संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: पहले ये दादरा सुनिए, गायिका है।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: और अब राम कृपाल पांडे से सुनिए ये लोकगीत जो आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे धरती पर तो धरती सूनी हो जाएगी और ये रेगिस्तान बनती जाएगी।

गूंजे स्वर्गाओं के कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं एक और अवधि लोकगीत। गायिका हैं चंचल सनाट्य।

इन्हीं लोकगीतों के साथ आज का गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम समाप्त होता है। तेज धूप और गर्मी के मौसम में खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। चक्कर या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत आराम करें। धूप में देर तक कार्य करने से भी बचें। इस मौसम में हीट वेव, तेज धूप और लू से बचाव ही सुरक्षा है। हल्के ढीले सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, हरियाली और छायादार स्थान पर रहें। गरिष्ठ भोजन, तेल मसालों से परहेज करें। चाय और कॉफी का भी प्रयोग कम से कम करें। शरीर में किसी भी असामान्य लक्षण होने पर डॉक्टर से या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। समय मिलाइए स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी अयोध्या की। शाम के ठीक 6:45 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती किसानी का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: पंचो जय हिंद। पंचो देखो, नशा का आदत छोड़ो और सुखी जीवन से नाता जोड़ो, ये कह गया भाई। लेकिन पंचो नशा ये कि यस बुराई है ना, कि जेके वजह से मनई अपन अनमोल जीवन जो उनके जीवन हुए थे कीमती, उस समय से पहले खत्म कर लिए थे। और ये अपन इन सबके हाथ में है, अगर अपने चाहे तो अपन भला, और अपन अगर ना ज्यादा मनई तो ऐसे समय खत्म हो जाता है। और यह नहीं, नशा कहे से मनई अपने शारीरिक वह मानसिक संतुलन के नियंत्रित नहीं कर पावत, जैसे वो के सामाजिक और आर्थिक जीवन पूरी मेरे से बाधित होए लगा था। और पंचो देखा जाए तो नशा के कुप्रभाव ना आज विश्व के हर देश में देखा जाता है। और भाई देखो, जे के वजह से देखो हम सब पे जो ये नशा है वो बहुत हावी हो जाता है। और ये के मकसद लोगन में एक सेवन पर रोक लगाओ और लोगन का एक कुप्रभाव के प्रति जागरूक करब है। भारतीय समाज अपन संस्कृत सभ्यता और संस्कार बदे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन मनई एक सामाजिक प्राणी है कि जो समय के मुताबिक परिवर्तन चाहत है। और ये परिवर्तन में नीक और बेकार दोनों परिवर्तन देखे का मिलत है। पंचो अगर परिवर्तन बढ़िया है तो उस समाज का विकास के बारे ले जे, और परिवर्तन बुरा है तो समाज का है विनाश के बारे ले जे। यानी दो पहलू हैं, चाहे वो जो देखा जाए विकास और दूसरा है विनाश। तो भाई देखो, हमें सबका विकास के बारे ज्यादा जाए का है और विनाश तो भाई अति होता है। आज देखा जाए तो युवा एक बहुत बड़ी समस्या यानी नशा से जूझ रहा है, लेकिन नशाखोरी में डूबा भाई मनई जो है ना, अन्य समस्या के सामना करे के अपेक्षा समस्या का भुलावे बदे मनई सोचते है कि अगर हमारे लिए कोनो परिस्थिति है, कोनो मेरे के दिक्कत है, तो नशा के वो का खत्म करे वाला सहारा लिए चला जा रहा है। तो ऐसा हम सबका कतई सोचे के ना है कि नशा के से इस समस्या सुलझ जाए, बल्कि वो का खुद जो है वो का सुलझावे का परे नशा ना कह के नीक चीज के सेवन कह के, जैसे अपन खुद साथे परिवार के विनाश के साथे साथे पूरे समाज के विनाश के कारण भी बना चला जा रहा है। यही मारे अपने सबका एक चेते का जरूरत है। अगर मने और कहा गया है कि जब चेते तब सवेरा, अगर मने नशा के आए तो यस जाल में फंस चला जाता है कि वह के सोचे समझे के क्षमता भी नष्ट हो जाता है। जैसे होत का कि अपने जीवन के कोनो भी निर्णय उन्हीं की तरह से नहीं ले पोते, निर्णय लिए का है तो नशाखोरी बंद करे का है। नशा करे बदे तमाम मादक पदार्थ हैं भाई, देखा क्यों शराब पिए थे, क्यों गांजा, चरस, स्मैक, मॉर्फिन, कोको पत्ती, ताड़ी, अफीम, बीड़ी, सिगरेट के सेवन करे लागत है। लेकिन ये सब अपने सबका कतई ना करे का है, एक सेवन से दूर भागे का है। और एक हर केहू का सजुग सतर्क करे का है कि केहू भी जे केहू ये संसार में दुनिया में अपने इर्द गिर्द अगर ये मेरे मन दिखाता है तो उसका समझाए बुझाए के निक राही पे लावा जाए सकता है। और भाई देखो, सोच जो है अपन सकारात्मक रखा गया है। और होत का कि आर्थिक हानि इसे होत है कितनी बड़ी कि सड़क दुर्घटना हो जाता है, यहाँ तक कि हत्या हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, घरेलू और सामाजिक झगड़ा हो जाता है, हमेशा हुआ करता है। स्वास्थ्य के हानि व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा जो है और जो लड़कन की शिक्षा है वह पर के असर पड़त है, संस्कार पर भी असर पड़त है। तो भाई देखो, जैसे अपन लड़के देखी हैं, अगर माता री बाप नशा करते हैं तो ठीक वैसे ने अपन लड़का भी वह राही पे जाए। तो यही हमारे अपने सबका अपन संस्कार जो है बनाए के रखे का है, अपने लड़कन का है संस्कारी बनावे का है। पंचो नशा से मुक्ति पावे बदी हमें सबका ठान ले कर बाटे कि नशाखोरी के विरुद्ध खड़ा हुई के संपूर्ण समाज का है नशा से मुक्ति दिलावे के प्रयास की जाए। तो इस स्वरा होना सही है कि यह विपदा से हम जाने थे कि जरूर से जरूर छुटकारा पावा जा सकता है। और भाई देखो, कहा भी गया है कि

0: जन का यक्का नारा और नशा मुक्त हुए परदेश हमारा। तो भाई देखो ये अपने सबका ठान के चले भाई मन में अपने कर्तव्य के पालन करत भय हर केहू का ये से जागरूक करे का है कि नशा बिल्कुल ना करें। तो भाई तो बात रही है नशा का, लेकिन भाई देखो नशा कईयो मेर के हुआ था, एक खेती पाती के हुआ था, एक रोजी रोजगार के हुआ थे। भाई खेती जे किसान खेती से जुड़ा है ओके नशा खेती में रहा था, और जे पंच रोजगार के ये है ओके वहाँ से आमदनी बढ़ाता है वो होके एक नशा हुआ था एक हुआ था। तो भाई देखो अपन खेती पाती है अपन जोन व्यवसाय है तो तमाम मेरे मेरे के व्यवसाय अपने सब अगर करब तो वहू से अपने सबका पुरहार फायदा मिला था। यही मारे देखा आज एक ठीक बत कहीं पंचायती में लेके आए हैं मत्स्य पालन हेतु नए तालाब का निर्माण, और यह विषय पर बतावत है डॉक्टर शशांक सिंह जो उनकी सहायक प्राध्यापक है मत्स्य पालन कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, और इनसे बतवाता है प्रभाकर शुक्ला भैया। तो चलो ये बात कहीं सुना जाए पंच कैसे करें और इसे कैसे लाभ लिए।
1: पंचो आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर शशांक सिंह भैया, आप सहायक प्राध्यापक मत्स्य पालन महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हैं। तो सबसे पहले तो सिंह साहब आपके आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और स्वागत करे के साथ ही हम ये बतावा चाहते हैं कि आज अपनी बातचीत के विषय है मत्स्य पालन हेतु नए तालाब का निर्माण। तो अपने बीच में बहुत से किसान पंच हैं जो उनकी खेती किसानी भी करते हैं और साथे साथे अतिरिक्त व्यवसाय के तौर पर मत्स्य पालन के भी काम करते हैं, या कुछ पंच सोचता है कि हम मछली पालन कर ली तो हमारा आमदनी बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो उन्हें मछली पालन के तालाब है अगर वो एक निर्माण केन चाहत हैं तो उनका सबसे पहले कौनी बात के ध्यान दिए का है और कौनी मेयर का उनका माटी के चयन करे के बाद यह पे कुछ बतावें।
2: जी नमस्कार भैया, सभी किसान बंधुओं का हम बताए चाहे कि कैसी मिट्टी का आप चयन करें। ऐसी मिट्टी का आपको चयन करना है जिससे कि तालाब निर्माण हेत उसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक हो। पानी धारण करने की क्षमता वाली मिट्टी का चयन करना है आपको।
1: पानी धारण क्षमता के लिए डॉक्टर भैया कौन माटी सबसे अच्छी मानी जात है?
2: जी ऊसर या बंजर भूमि का हमको चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भूमि में तालाब निर्माण से समस्याएं आती हैं, बंधों का निर्माण भी बहुत मुश्किल होता है
1: जी।
2: और पानी का रिसाव बहुत ज्यादा होता है जिससे कि मछलियां बराबर तालाब में नहीं रह पाती और हमारा उत्पादन का जो खर्चा है बहुत बढ़ जाता है।
1: तो एक तरह से जो बंधा बना था डॉक्टर भैया अगर ये बढ़िया माटी ना हुए तो ये कट के तालाब में भी चली जात हुए?
2: जी जी बंधों का निर्माण भी एक विशेष कौशल का विषय है, प्रतीक है, जहां पर हमें बंधों का निर्माण करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मतलब वो है माटी का पहली बात तो खूब अच्छे से दबाए हुए चाहिए
2: जी जी,
1: ताकि वो अच्छे से मिट्टी पकड़ बनाए रखे
2: जी,
1: कि बारिश के समय में ओके कटान हुई के मिट्टी तालाब में कम से कम जाए
2: जी।
1: आगे अब बात करें जैसे दोमट माटी आप बताओ थे बलुई दोमट माटी
2: जी जी
1: ये सबसे अच्छी है।
2: हाँ।
1: तो माटी के चयन यह तरह से उनका करेगा है। अब आगे आवत है कि कितनी एरिया में इनका एक निर्माण करब जरूरी है। कई बार ऐसा होते कि बहुत से किसान पंच के पास जमीन भी कम होते है या के पास ज्यादा जमीन है, तो एक मानक का है क्या औसत?
2: जी देखिए तालाब निर्माण के लिए हमको मुख्यतः जब किसान भाई शुरू करना चाहते हैं जो किसान भाई के पास पर्याप्त जमीन है उनको 1:2:4 के अनुपात में संवर्धन तालाब, संचयन तालाब और संग्रहण तालाब बनाने चाहिए। सो जो संवर्धन तालाब है वो छोटे प्रकार के तालाब होते हैं जिसमें किसान बंधु स्पान ला के रखते हैं।
1: अच्छा।
2: या जो संचयन तालाब है उसमें हम जीरा रखते हैं। बड़ी मछलियों के लिए हम संग्रहण तालाब का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो इससे क्या होता है कि जब हम 1:2:4 में बनाते हैं तो जो बच्चा लाके हमने छोटे तालाब में रखा है जो प्रति हेक्टेयर की दर से 30 लाख से 50 लाख बच्चे रख सकते हैं।
1: अच्छा।
2: तो उन बच्चों को धीरे धीरे करके हम बड़े तालाबों में ले जाते हैं, 15 दिन संवर्धन तालाब में रखते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने संचयन तालाब में।
1: अच्छा।
2: फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तब हम उनको वहाँ
1: मुख्य तालाब
2: में ले जाके डालते हैं। तो क्या होता है मछलियों का बढ़वार अधिक रहता है और हमारे पास हर वक्त बच्चा उपलब्ध रहता है। एक बार हम बच्चा लाके संवर्धन तालाब में रख लिए और उसको जब हम बड़े तालाब से मछलियां बेचे तो फिर संवर्धन तालाब से निकाल के उसमें डाल सकते हैं।
1: तो उनका बार बार जो है जीरा लावे के हेरे के चक्कर न लगावे पड़े
2: जी।
1: आपके बताओ के हिसाब से ये मेयर से अगर तैयारी करते हैं तो ये अच्छी तैयारी मानी जाती
2: है जी जी।
1: अब ये जो तालाब है भैया एक गहराई का रखे का है, कैसे का व्यवस्था नाप जोख?
2: जी तालाब की गहराई के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको भूमि का चयन जब कर रहे हैं तो कैसी भूमि का चयन करें ये भी बता दूं, और साथ ही साथ मैं आपको संवर्धन तालाब के बारे में और बाकी तालाबों के बारे में भी बताऊंगा।
1: बिल्कुल।
2: तो जब किसान बंधु भूमि का चयन कर रहे हैं तो वो जहां तालाब निर्माण के लिए उन्होंने चयन कर लिया है उस जगह पर

0: एक गुड़े एक, अगर हमको गहराई 1 मीटर रखनी है
1: जी
0: तो हमको 1 मीटर का गड्ढा खोदना है, अगर 2 मीटर रखनी है तो 2 मीटर का गड्ढा खोदना है
1: जी।
0: और वहां से मिट्टी निकाल के, जिस एरिया से है 3-4 जगह की मिट्टियां इकट्ठा करके उसका गोला बनाना है।
1: अच्छा।
0: और उस गोले को बना के ऊपर उछालना है जिससे वो फूटे नहीं।
1: अच्छा।
0: ऐसी मिट्टी तालाब बनाने के लिए उपयुक्त हो। और जब भूमि का चयन कर रहे हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखें कि गहरे क्षेत्र का चयन करें। अगर हम कहीं ऊपर की जमीन ले लेंगे तो गड्ढा बनाने में, तालाब निर्माण में अधिक खर्च का हमको उपयोग करना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: ये भी देखना है जब हम तालाब निर्माण करने जा रहे हैं तो पानी का जो जल स्तर है वो वहां पे ऊंचा हो। बहुत नीचे से पानी निकालने के लिए हमें अधिक लागत लगानी पड़ेगी। तो
1: मतलब वो है, आसपास के क्षेत्र के वाटर लेवल जो है
0: ऊपर हो,
1: वो बहुत नीचे नहीं
0: नहीं होना चाहिए जी,
1: क्योंकि जब बरसात खत्म हुए तो वैसे पानी हमें अब कृत्रिम रूप से दे के जरूरत पड़े बाहर से ही, तो अपने पास जो भी सिंचाई के साधन रहे वही से उसका भरपाई करे
0: जी, जी जी।
1: तो यह तरह से माटी के चयन होएगा डॉक्टर भैया
0: जी,
1: और जो कुछ है तरीका बताए नहीं हमारे किसान पंच का चाहिए कि यही हिसाब से ही अगर मैं व्यवस्था करते तो ज्यादा अच्छा है। आगे आपका बताऊ
0: जी। तो ये भी बताना चाहूंगा कि भूमि का चयन जब कर रहे हैं तो भूमि बहुत अधिक अम्लीय भी ना हो और क्षारीय भी ना हो। किसान बंधु आसानी से उसका परख कर सकते हैं। बाजार में पीएच पेपर बहुत ही सस्ते भाव में मिलता है, वो कहीं से भी ले लें और पानी, जहां की मिट्टी है उसको पानी में घोल के थोड़ी देर स्थिर छोड़ने के बाद पीएच पेपर उसमें डालेंगे तो वो पीएच मान बता देता है, उसका चार्ट होता है, उससे वो मिला सकते हैं। तो 6 से 8 के बीच में वो होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो जिससे बहुत अधिक अम्लीय नहीं होगा और क्षारीय भी नहीं होगा
1: जी, जी।
0: तो वो उपयुक्त माना जाएगा। प्रदूषण नहीं होना चाहिए वहां पे, पानी जो आ रहा है कहीं ऐसी फैक्ट्री ना हो जहां से गंदगी आ रही हो। जल स्तर ऊंचा तो हो लेकिन प्रदूषित भी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। हमको अपने बंधों का निर्माण उचित रखना है कि उधर का पानी इधर ना आने पाए, लेकिन जैसे फैक्ट्री के पास जब बहुत ज्यादा हम निर्माण कर लेते हैं तो फैक्ट्रियों का पानी, जो गंदा पानी निकलता है वो नीचे रिस के जाता है, वही हमारे भू जल स्तर से फिर हमारे तालाबों में आता है, तब भी वो दिक्कत आती है
1: जी जी।
0: तो इसलिए प्रदूषित वहाँ का वातावरण ना हो, जल ना हो,
1: मतलब जहाँ कहूँ औद्योगिक एरिया हुए
0: जी
1: वह तालाब निर्माण से
0: बचने चाहिए जी।
1: आगे हम कानूनी बात का ध्यान देगा है।
0: हाँ, मैं आपको बंधों का जब निर्माण कर रहे हैं तो बंधों का निर्माण करते समय देखिए ऐसा करना है कि उसकी बनावट ऐसी हो जो तालाब में जो पानी है उसको भी बर्दाश्त कर सके और जब वर्षा का जल हो तो भी वो बर्दाश्त कर सके, इतना हमको कठोर उसको कॉम्पैक्ट बनाना है।
1: मतलब कि चौड़ाई मोटाई सब
0: रखना है।
1: बहुत पतला बंधा बनाए दें तो कट जाएगा
0: जी। जल रिसाव भी उससे ना हो, पता चला हमारे तालाब में बंधे की वजह से जल रिसाव हो रहा है। जब हम उचित मिट्टी का चयन नहीं करते हैं तो जल रिसाव की समस्या आती है
1: जी, जी।
0: तो इसके लिए हम बांध निर्माण जब कर रहे हों तो रेतीली जो मिट्टी है उसको 15-25% के बीच में होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: जो बलुई मिट्टी का परसेंटेज है वो हम 60-80 तक ले सकते हैं, इसके साथ चिकनी मिट्टी हम 10-20% तक ले सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी जब हम ज्यादा ले लेते हैं तो चिकनी मिट्टी का क्या होता है कि वो फट जाती है, जब ज्यादा तेज धूप होती है तो फट
1: जाती
0: है, हाँ चिटक जाती है, तो उससे भी हमारे तालाब का जो बंधा होता है कमजोर हो जाता है
1: जी।
0: तो इसलिए ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें ना ही बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी हो और ना ही बहुत ज्यादा रेतीली मिट्टी हो। और बंधों में जो उसकी ढाल है उस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें जो बंधे का ढाल है वो अंदर की तरफ 3:1 ऊंचाई से होना चाहिए और बाहर की तरफ 2:1, मतलब बाहर जितना गिर रहा है ऊपर उसका आधा भाग होगा, ऊंचाई जो होगी उसकी आधी होगी, लेकिन जो अंदर की तरफ बंधा गिरेगा हमारा
1: जी
0: वो 3 गुना होगा।
1: अच्छा
0: जी, ऊंचाई की अपेक्षा वो 2 मीटर होगा
1: जी। तो यह तरह से बंधा निर्माण में भी सावधानी भैया रहे तो हमारा बंधा टिकाऊ रहे और हमारा मत्स्य पालन वाला तालाब है वो अच्छा सुरक्षित रहे
0: जी।
1: अब आगे बात की जाए तालाब निर्माण मान लिया खुदावे का है तो खोदत समय कौनी बात का ध्यान रखें, कौने स्तर तक उसका खुदाई करेगा। कई बार कहूं जो नीचे सतह है वो बलुई मिल जाता है या कंकरीली मिल जाता है तो कहां जाए कुकर रोके चाहिए
0: जी। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया भूमि का चयन जब कर रहे हैं तो हमें जितने गहराई का तालाब बनाना है उसको हमको 1:1
1: हाँ जो बताए थे
0: हाँ उस पे

0: आप जब देख लेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो हमको जो तालाब की गहराई है वो संवर्धन और संचयन तालाब और संग्रहण तालाब के हिसाब से रखनी होती है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा।
1: तीनों अलग अलग,
0: हाँ अलग अलग गहराई
1: पास बनाया जा सकता है कि
0: ये तीनों पास पास तालाब बनाए जा सकते हैं, और मछली के जीरा और फिर इस्पान और बड़ी मछलियों को पालने के लिए, अंगुलिकाओं को पालने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं।
1: आगे हमें कोनी बात का ध्यान देगा, जैसे तालाब खुदाई होगी, खुदाई के बाद हमें कोनो चीज डाले पड़त है कि वैसे तैयार हो जाते?
0: नहीं नहीं, तालाब निर्माण के बाद हमको, जब तालाब निर्माण कर रहे हैं तो एक महीने पहले उसमें जल रिसाव से बचने के लिए, जब तालाब नया होता है तो उसमें जल का रिसाव बहुत अधिक होता है, तो जैविक खाद का प्रयोग 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें करेक चाहिए, जैसे कि पानी रिसेक जोन समस्या है,
1: सतह में जो पानी वाला रुक जाए,
0: वो रुके, तो उसमें हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हम कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, इकरे अलावा कुछ है जैसे चूना उना कुछ है ऐसा चीज डालने की जरूरत हुआ था?
0: जी, मछली तालाब जब हम पालन शुरू कर रहे हैं तो उस समय हम 15 दिन पहले चूना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो मछलियों के प्राकृतिक भोज पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए और जो कि तालाब में गंदगी है उसको साफ करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो उसमें कीट मकोड़े हैं वो भी मर जाते हैं, और हमारे जब हम मछली के बच्चे डालते हैं तो वो नुकसान होने से बच जाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान में आती है, पानी जोन बाय कितना मतलब रखे चाहिए, 1 मीटर 1.5 मीटर कैसे का व्यवस्था?
0: जी, जब हम अपना इस्पान जो किसान बंधु लाते हैं वो 200 वर्ग मीटर के तालाब में 1 मीटर से 1.5 मीटर तक पानी रख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: 200 से 1000 वर्ग मीटर का तालाब बनावें और उसमें इस्पान का पालन करें और 1 से 1.5 मीटर की गहराई वहां पर रख सकते हैं,
1: मतलब इतना पानी का स्तर होना चाहिए।
0: हाँ, 1 से 1.5 मीटर वहाँ पानी होना चाहिए।
1: इकरे अलावा और कोनो तालाब निर्माण मत्स्य पालन के लिए कोनो चीज आप बतावे से रह गए हो अब तक, तो चलो चलाओ श्रोता पंच का बताए दी।
0: मैं तो ये कहूंगा कि अगर जब तालाब निर्माण कर रहे हैं तो अगर आप ज्यादा तालाब नहीं बना सकते हैं, जैसा कि मैंने 1:2:4 के अनुपात में बताया, तो आप कम से कम एक छोटा और एक बड़ा तालाब बनाएं। तालाब को पूर्व पश्चिम की दिशा में बनाएं, जिससे कि वहां हवा का प्रवाह हो और उत्पादन अधिक हो। तालाब निर्माण करते समय ये भी ध्यान रखें कि अगर ज्यादा चौड़ा तालाब बना देंगे तो जाल चलाना मुश्किल होगा, इसलिए वहां पर कम चौड़े तालाबों का प्रयोग करें, जिससे जाल पर्याप्त ढंग से चलाया जा सके और मछलियों पकड़ने में आसानी हो।
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर शशांक सिंह भैया, आप आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियो में आए और मत्स्य पालन हित नए तालाब के निर्माण के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो हमारे श्रोता पंच का ये बातचीत के माध्यम से दिए हैं। आशा करते हैं कि हमारे श्रोता पंच आपकी बताई गई बात का ध्यान में रखिए और मत्स्य पालन करके अच्छी आमदनी कही है। ये जानकारी का दिए के लिए डॉक्टर शशांक सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखो भाई के आप सुनिन की मत्स्य पालन हेतु नए तालाब का निर्माण ये विषय पे कितना निकी तरीके से बताएं डॉक्टर शशांक सिंह जो उनके सहायक प्राध्यापक रहे मत्स्य पालन कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। हम जाने थे कि जैसे जैसे डॉक्टर भैया बताएं ठीक वैसे वैसे अगर हमारे पंच अपने तालाब का नवा निर्माण करत हुई है तो वैसे देखभाल करें तो हम जाने थे कि पूरा हर लाभ कमाई है। तो भाई देखो ये तो रही बत कही, लेकिन पंच के बारे हम अपने तरफ से लेके आए अभिनंदन शुक्ला व साथी के शोर में एक किसानी गीत। चलो ये किसानी गीत सुनी के आनंद लीजिए।

तो रही आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से मौसम की जो जानकारी मिली रही और पंचन का लगे हाथ अयोध्या मंडी से बाजारी के भाव बताओ चली। चौरे के भाव रहा 3040 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा रहा 2585 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली रही 2400 रुपया, उरद काली रही 9280 रुपया, चना देसी रहा 6400 रुपया, मसूरी रही 7085 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, अरारी के दाले 10950 रुपया, आलू सफेद रहा 720 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्याज लाली रही 1200 रुपया, टमाटर 1800 रुपया, लहसुन के भाव रहा 6970 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई रहा 2085 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 1550 रुपया, बैगन 2200 रुपया, जेमा हरी मिर्च 3800 रुपया, कद्दू रहा 1380 रुपया, जेमा अदरक के भाव रहा 6100 रुपया, शिमला मिर्च 3100 रुपया, भिंडी के भाव रहा 1800 रुपया प्रति क्विंटल, जेमा लौकी 1600 रुपया, करेला 1500 रुपया, केला पक्का वाला रहा 2700 रुपया, जेमा नींबू के भाव रहा 7800 रुपया, पपीता 2680 रुपया, सेब रहा 11360 रुपया प्रति क्विंटल, अनार के भाव रहा 8100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, गुड़ बट्टी वाला रहा 5080 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी रही 4125 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो रही अयोध्या मंडी से बाजारी के भाव। लेकिन चलो चलो पंचन का कालिक कार्यक्रम बताओ चली। कालिक कार्यक्रम हुए कार्यक्रम रहे चर्चा हुए गर्मी की जुताई अवश्य करें, भेंटवार्ता सुनवाई जाए पशुओं में बांझपन कारण एवं निवारण, यह विषय पर बताई है डॉक्टर रविंद्र कुमार। तो भाई देखो पंचे एक जरूर सुनिए और गीत गौने तो रहे करे, लेकिन समय पर समय के बतिया किंजर ज्यादा बढ़िया रहा है, समय इजाजत ना देती है और आगे बात बात नहीं करेगा, फिर कहियो मिला जाए, तब तक निमला का दे अनुमति।

पंचो भाई के आप सुने ने अभिनंदन शुक्ला वासाती के सुरमई किसानी गीत, लेकिन पंचन अगोरत हुई है मौसम के जानकारी जो आज मिली है बताव चली। अधिकतम तापमान 43.0 जो की सामान्य से 4.0 डिग्री ज्यादा रहा, न्यूनतम 28.0 जो की सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा रहा, आर्द्रता के अधिकतम रही 78%, न्यूनतम 38%, हवा की गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही, एक दिशा रही दक्षिणामा पूर्वामा। पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहे, लू चले, हवा सामान्य गति से पछुआ पूर्वा चले तथा औसत तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह के संभावना बाटे।

विविध भारती के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:55 से। हमारे स्टूडियो से गीत गुंजन प्रोग्राम पेश किया जाएगा आज रात 8:15 से। रात 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम में गजलें सुनिएगा और 9:30 से लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम में अपनी बातों के साथ अपनी पसंद का गाना भी सुनेंगे 10:30 तक। और अब कल शनिवार 23 मई के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिन भर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम सुनिएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक इसमें रहेगा उल्हाना देने से बचें। डॉक्टर जीवन लाल गुप्ता की लिखी झलकी सुनिएगा दफ्तर। निर्देशक होंगे मधुर श्रीवास्तव और ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति होगी। समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी और फिल्मी गाना आपको सुनवाया जाएगा। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00 से। सुबह 9:30 से बातें आसपास की इस फिल्म संगीत प्रोग्राम में टॉपिक होगा हीट स्ट्रोक यानी तेज धूप और लू से बचें। सुबह 10:00 से विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम मुंबई से हम रिले करेंगे आकाशवाणी अयोध्या एफएम से। दिन 12:30 से लोकगीतों का फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे। क्षमा कीजिएगा, फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सोमवार के दिन सुनते हैं। कल आप अवधि लोकगीत ही सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम में। दिन 1:00 से लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनेंगे। 7376 नंबर मिलाकर आप आरजे से अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। 1:30 से फेसबुक श्रोताओं का कुछ तुमने कहा प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिसके लिए आपके कमेंट समय दिन 11:30 तक प्राप्त हो जाते हैं। कल दिन में 2:00 गैर फिल्मी गीत और गजलों का गीतांजलि प्रोग्राम सुनिए। 2:15 से दोपहर समाचार

दिल्ली से होंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में लाइव हेलो सहेली प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा, कैसे करती हैं जीवों की सेवा। प्रेजेंटर ऊषमा वर्मा और प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। 3:00 से लेकर 5:00 तक विविध भारती केंद्रीकृत सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। युवावाणी में शाम 5:00 कल चर्चा का टॉपिक योग और हमारा स्वास्थ्य, दूसरा टॉपिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हमारी धरोहर सेगमेंट में राजस्थान के पहाड़ी किलों की जानकारी दी जाएगी, आर्थिक जगत की बातें होंगी, शुभ्रा शुक्ला का काव्य पाठ सुनिएगा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जयंत पटेल। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से, गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम 6:30 से, किसानवाणी में कल 6:45 से चर्चा का टॉपिक रहेगा गर्मी में चौथाई अवश्य करें। इसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार से आलोक गुप्ता की बातचीत का विषय रहेगा पशुओं का बांझपन, कारण, लक्षण और उपचार। अलावा इसके बाजार भाव, मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:30 से। आकाशवाणी अयोध्या FM स्टूडियो से रात 8:15 से एक ही कलाकार कार्यक्रम कल फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर पर केंद्रित होगा। महफिले गजल प्रोग्राम 9:15 से, 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या आप 10:30 तक सुनेंगे। और विविध भारती के कार्यक्रम रात 10:30 से आप सुनेंगे जहां से होगा ढलती जाए रात प्रोग्राम, और उसमें आप सुनेंगे पुराने सदाबहार गाने। इसके साथ ही कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त होती है। आज शाम 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पॉडकास्ट श्रृंखला की रिकॉर्डिंग 7:55 तक। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या FM है। 7:18 हो चुके हैं। बस कुछ ही पलों के बाद ठीक 7:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आपको प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू।

0: पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर

0: सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी, कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: ये है हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM, जिसके कार्यक्रम आप FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर सुन रहे हैं। 7:31 और 40 सेकंड्स हुए हैं। पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के एपिसोड नंबर 30 में सुनिए वायलिन वादक पद्मश्री डॉक्टर N. Rajan से जयंत पात्रिकर की बातचीत।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
2: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये

0: भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो मैं आकर के भाग जाती रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: है, उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा।

0: मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्ण साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अमर जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर
0: है, उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की, तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क।

0: रखे, क्या जमानत आते।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है। जी। फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तो, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो ये हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे ये हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एक लव्य का? तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया।
1: वाह।
0: तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, कैसा एक्सपेरिमेंट?
0: हाँ, मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी

0: फटाफट कर लो। पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मान आकाशवाणी एपिसोड 30 में आप सुन रहे थे अभी वायलिन वादक पद्मश्री डॉक्टर एन राजन से की गई बातचीत। बातचीत कर रहे थे जयंत पाथरीकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्राप्त हुआ था। आकाशवाणी अयोध्या FM से आप 8:15 से गीत गुंजन प्रोग्राम सुनेंगे। 9:15 से महफिले गजल और 9:30 यानी 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम में आप कनेक्ट होंगे 73-76-40-90 नंबर मिलाकर। फिलहाल हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं विविध भारती मुंबई से, जहां से आप ठीक 8:00 सुनेंगे हवा महल प्रोग्राम में झलकी।

0: कंपाउंडर, अरे तू बैठा बैठा क्या कर रहा है?
1: कुछ नहीं, मक्खी मार रहा हूँ डॉक्टर साहब।
0: अरे मक्खी के साथ थोड़ी झक भी मारा कर, मुझे लगता है तू बिना नहाए ड्यूटी पर आता है, इसीलिए हमारे अस्पताल में कोई मरीज नहीं आता।
1: अजी मरीज कहाँ से आएंगे, आजकल कोई बीमारी होती नहीं।
2: कौन बोलता है डॉक्टर बजराज, देश में बीमारी नहीं होती है? देश में कई प्रकार की भीषण भीषण बीमारियां फैली हुई हैं, क्या आप डॉक्टरों को पता तक नहीं?
0: क्या बोलते हैं आप महाशय, भीषण बीमारी? कहाँ, किधर? कंपाउंडर साहब को कुर्सी पर बैठाओ, मेरा मतलब है कुर्सी लाओ साहब के लिए।
1: लीजिए बैठिए
2: साहब। नहीं, हमारा नाम मणि शंकर है, प्यार से लोग बाग हमें मणि बाबू भी कहते हैं। तो मैं बोलता था डॉक्टर बजरंग
0: जी,
2: देखो ना, अब हमारे घर में 8 आदमी हैं, सब के सब बीमार, 4 सीरियस बीमार और 4 लाइट सीरियस बीमार।
0: तो लाइए ना, सबको ठीक कर देंगे। हमारी दवा खाकर जो भी गया वो वापस नहीं आया, मेरा मतलब है फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा। जी
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबको एक साथ लाऊं या एक एक करके लाऊं?
0: एक एक करके लाइए सर।
2: ठीक है ठीक है, तो मैं फिर लेकर आता हूँ। अच्छा
0: जी। अरे कंपाउंडर, तू रोज मक्खी मारा कर, अरे ये शगुन तो बहुत ही अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं?
0: आइए आइए आइए आइए, वाह वाह।
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है लवंग लता, उम्र 23 बरस है।
0: माफ कीजिएगा देवी जी, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपको क्या होता है?
3: दूरो, मुझे पुरुषों की छाया से नफरत है।
0: बाप रे बाप, ये तो काटने को दौड़ती मुनि बाबू।
2: डॉक्टर बजरंग, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे जरा प्यार से बेटी कहकर पुकारिए, ठीक ठीक और बराबर जवाब देगी।
0: अच्छा बेटी, घबराओ नहीं, क्या होता है तुमको?
3: मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगी। आज तक जितने जुल्म पुरुषों ने स्त्रियों पर किए हैं, उन सब का गिन गिन कर बदला लूंगी। पुरुष खाना बनाएंगे, औरतें नौकरी पर जाएंगी, पुरुष चूड़ियां पहनेंगे, औरतें शमशीर उठाएंगी। भारत की नारी जिंदाबाद, पुरुषों का बायकॉट हो, पुरुषों का सर्वनाश हो।
2: इस प्रकार के वाचन रोज घर में करती रहती है।
0: मुनी बाबू, इनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, आजकल ये बीमारी फ्लू की तरह फैली हुई है। इस बीमारी को लवेरिया कहते हैं।
2: लवेरिया?
0: जी हाँ लवेरिया।
2: अच्छा तो डॉक्टर बाबू, इसका कोई इलाज?
0: इलाज जी हाँ है, मैं तो हर एक तरह के इलाज करता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक।
2: इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे पावरफुल जरा सस्ता इलाज कौन सा है?
0: तो सुनिए, सूरज की किरण 5 तोला, हवा का झोंका 4 माशा और गुलाब की खुशबू 3 रत्ती, इन तीनों को काले पत्थर के तेल में मिलाकर गोली बनाइए और जब मूसलाधार बारिश होती हो तो मैदान में रखकर सुखा लीजिए। सूखने के बाद 2 गोली सोने के बाद और 2 गोली सुबह उठने से पहले, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी।
2: ठीक तो हो जाएगी, पर ये सब वस्तुएं, गुलाब की खुशबू, सूरज की किरण, मिलेगी कहाँ से?
0: नहीं मिलेगी तो इसको एंटी लवेरिया का इंजेक्शन दो, ठीक हो जाएगी, समझे? जाइए कल दूसरे पेशेंट को लाइएगा। कंपाउंडर, अरे जरा रोज मक्खी मारा कर, समझा?
1: अरे कल से मैं और भी मक्खी मारा करूंगा।
2: डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू मैं आ गया।
0: आ गया?
2: ये हमारा सबसे बड़ा लड़का है, कौड़ी शंकर।
0: कौड़ी शंकर,
2: डॉक्टर साहब को नमस्ते करो, आप बताओ कि क्या होता है बेटे तुम्हें?
1: अरे डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: नमस्ते, नमस्ते।
1: कल अपना घोड़ा शॉर्ट हेड से मार खा गया
0: है,
1: बड़ा गड़बड़ हो गया। घोड़े की जन्म पत्री भी ज्योतिषी को दिखाई थी, मंगल नवे घर में स्ट्रांग होने से जीतने के चांस ब्राइट थे, पर राहु की दशा खराब होने से हार गया। डॉक्टर कल रात को मैंने एक सपना देखा, उसमें देखा कि कुएं के पास चारपाई बिछी है, तो कुएं का तो गोल होने की वजह से 0 हुआ और चारपाई का चौका हुआ। हाँ तो बताओ बताओ डॉक्टर, फोरकास्ट पूल खेल दूं क्या? मैं अभी भी रेस की किताब लेकर आया, आप जाइए नहीं डॉक्टर साहब, देखिए जाइए नहीं, मैं अभी आया।
0: मुनि बाबू
2: जी,
0: इसको गैम्बुलेंसर

0: गया है।
1: अच्छा,
0: ये रोग बिल्कुल कैंसर के जैसा होता है। इसका एक ही इलाज है कि इसके सर पर बर्फ से भरा हुआ मटका रखिए ताकि इसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।
1: अच्छी बात है, कल दूसरे को लाऊंगा।
0: हाँ, जाइए।

0: Yesterday, India was 4-0 for it. And today, Johnson bowling to Bedi. First ball of the over. Bedi hit the ball and ball is going towards the boundary line. And boundary line is coming towards the ball. And he is out. Bedi is out.
1: अरे मोनी बाबू, इसको तो क्रिकेटिया हो गया है। बीमारी बिल्कुल पायोरिया जैसी है। इसके मुंह में सुबह से शाम तक 24 घंटे क्रिकेट की बदबू आती है।
2: अच्छा, तो इसका इलाज डॉक्टर साहब?
1: इसका इलाज बड़ा सीधा है। टेस्ट मैच में खेली हुई गेंद लाओ, उसको जलाकर मंजन बनाओ और उस मंजन से इसके दांत साफ कराओ। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, कल दूसरे मरीज को लाइएगा।

0: ऐसा लगता है कि तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ही निकल जाएगी। इतने मरीज आ गए हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: 6 महीने की नहीं, 7 महीने की बाकी है।
0: ठीक है ठीक है, 7 महीने की सही। मोनी बाबू आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब
0: जी जी,
2: ये मेरा बड़ा लड़का करोड़ी शंकर है। परसों जो बड़ा लड़का कौड़ी शंकर आया था ना, ये उसका जुड़वा भाई है।
0: ओ हो हो हो, अच्छा अच्छा। तो कौड़ी शंकर जी, तुम्हें क्या होता है बेटे?
3: डॉक्टर मुझसे ये पूछिए कि मुझे क्या नहीं होता है।
0: अच्छा,
3: एक साथ 10-10 पिक्चरों में काम कर सकता हूँ।
0: 10-10
3: पर बैड लक मेरा नहीं, उन प्रोड्यूसरों का जो मुझे चांस नहीं देते। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज के इन तमाम एक्टरों से कम खूबसूरत हूँ मैं?
0: अरे नहीं भाई, वाह वाह, अरे आप तो बहुत खूबसूरत
3: की बात छोड़िए ना डॉक्टर साहब। एक्टिंग देखिए आप मेरी, एक्टिंग
0: एक्टिंग
3: कॉमेडी ट्रेजेडी रोमांस मर्डर मिस्ट्री हर प्रकार की एक्टिंग कर सकता हूँ। ठहरिए, पहले कहानी सुनिए। कैमरा लगा हुआ है और ट्रॉली फॉरवर्ड, कैमरा राजा भाई टावर, रात के 12 बजे, बैकग्राउंड म्यूजिक धनसक धनसक धनसक धनसक, साई साई सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक हसीना अपनी पायल की झंकार का मधुर संगीत बजाती हुई गुजरती है। हीरो की एंट्री, हीरो हीरोइन के पास आकर कहता है, ऐ हसीना तू अपनी पायल को क्यों बजा रही है, क्या तुझे पता नहीं कि टावर के नीचे साइलेंस जोन है? हीरोइन कहती है, मुझे तो याकूब जान कहते हैं। इस वक्त क्रैक क्रैक विलन की एंट्री, विलन पिस्तौल से फायर करता है, कैमरा गोली के साथ पैन वाइप डिसॉल्व, चिड़िया चहक रही हैं, बुलबुल महक रहे हैं। और
0: अच्छा, और आगे
3: पैसों का पहले फैसला कर लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा।
0: ओहो
3: अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक्टिंग देखिए।

0: बस बस बस बहुत हो गया बहुत।
1: मोनी बाबू इसे फिल्मोनिया हो गया है।
2: फिल्मोनिया? हाँ। ये फिल्मोनिया क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल निमोनिया की तरह होता है। इसका इलाज बड़ा सीधा है। हर तीसरे दिन नाई को बुलाकर इसके सर पे उस तरह फिरवाकर चमन गोटा कराइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
2: ठीक हो जाएगा ना? अच्छा तो मैं अब अपनी पत्नी को लाता हूँ। देश की वर्तमान हालत पर उसको बिचारी को दिन रात चिंता लगी रहती है। लेकिन वो इस वक्त तो आपके वेटिंग रूम में जरा मेकअप कर रही है, इसलिए पहले आप मुझे ही देख लीजिए।
1: आप तो अच्छे भले दिखते हैं मुनि बाबू।
2: डॉक्टर साहब हर शायर अच्छा भला दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब मैं पहला शायर हूँ जिसका पहला ही गीत इतना हिट हो गया कि रेडियो से हफ्ते भर में 6-6 दफा बजता है।
1: ऐसा कौन सा गीत है जी इतना हिट के जो 6-6 दफे बजता है? अच्छा मोने बाबू आप काम क्या करते हैं?
2: अजी डॉक्टर साहब काम काज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी इतना पैसा छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं कि कमाने तक की जरूरत नहीं।
1: ओहो, तो आपके घर की सारी बीमारियों का कारण आपके पिताजी का छोड़ा हुआ पैसा है?
2: है? क्या बोलते हो?
1: जी हाँ, ये लवेरिया, गैम्बलेंसर, क्रिकेटिया और फिल्मोनिया, इन सब बीमारियों की जड़ घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपके पिताजी के छोड़े हुए सारे पैसे आप किसी स्कूल में दान दे दीजिए तो आपके घर की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारे घर वालों को कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो सारे ठीक हो जाएंगे।

0: मैं समझता हूँ कि आपके घर में फुर्सतिया रोग जोरों पर है।
1: पर डॉक्टर साहब, ये पैसे जो स्कूल में दे दिए तो सारे बच्चों को बीमारी लग गई
0: तो किसी अस्पताल को दे दीजिए।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अस्पताल में ही देना है तो क्यों ना मैं आप ही के अस्पताल में दे दूं?
0: जी मेरे मुझे
1: डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मैंने अभी पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ देने की बात की, आप धड़ाम से बेहोश हो गए। और इन अनोखी बीमारियों का अनोखा इलाज करने वाले डॉक्टर भजन, कहीं आपको वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको कहते हैं बेहोशिया?

0: अनोखी बीमारियां, सुमन माधुरी लिखित ये नाटिका अभी आपने सुनी, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती से हवा महल प्रोग्राम।

जी हाँ, आपने ट्यून कर लिया 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी लोगों ने कान लगा लिए आकाशवाणी अयोध्या को ट्यून करके क्या बल्कि सर्च करके, क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए ये प्रोग्राम सुन रहे हैं देश और दुनिया में कहीं भी। और प्रोग्राम है बस कुछ ही पलों में आपके पास बॉलीवुड फिल्मी गानों का गीत गुंजन आपके रेडियो मीत अमरजीत के साथ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम, मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: तो भाई आप सब हंसते गाते मुस्कुराते सेहतमंद और दुआओं में आपने मुझे याद कर लिया और मैं पहुंच गया आपके पास हवाओं की तरंगों पर सवार होकर।

1960 में आज ही के दिन चिली के दक्षिणी तट पर आए बड़े भूकंपों में 5,700 लोगों की मौत हो गई थी। बड़े भूकंपों में से ये एक इकलौता ऐसा भूकंप था। इसे समुद्र में उठी उग्र लहरों ने, जिसे आजकल सुनामी भी कहते हैं, उससे सुदूर प्रशांत इलाकों जैसे जापान में भारी तबाही हुई थी। और पर्वतारोही बछेंद्री पाल 22 मई आज ही के दिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंची थी, और ये कारनामा अंजाम देने वाली वो देश की पहली महिला पर्वतारोही बन गई। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आज भी बछेंद्री पाल का नाम साहस, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, याद किया जाता है। बछेंद्री पाल ने, मेरे प्यारे सुनने वालों, ये बता दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। तो हो जाए इसी पे ये गाना।

भाई हमें भी बढ़ना है अपने प्रोग्राम में आगे गीत गुंजन में. और आज आपको पता है ना कि कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, फिल्मी फ्राइडे. जी हाँ, कभी आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या से फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम भी वीकली हुआ करता था. तो आज फिल्मी फ्राइडे की भी धुन आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की भी धुन सुनवा के आपको, जी हाँ, बताएंगे कौन कौन सी फिल्में आज रिलीज हुई हैं. तो पहले फिल्मी फ्राइडे की ओपनिंग ट्यून.

0: और अब आ गई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। तो भाई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में है कि आज इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जासूसी थ्रिलर, कोर्ट रूम ड्रामा, कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट का फुल एंजॉयमेंट है आपके पास। अगर आप एक्शन, हल्की फुल्की रोमांस या डार्क कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो इस बार की नई रिलीज चिलचिलाती हीट वेव गर्मी में आपके वीकेंड को घर बैठे जी हाँ मजेदार बना सकती है। कहीं घर से निकलना भी नहीं आपको। चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे और लक्ष्य ने लीड रोल प्ले किया है। ये एक इंटेंस लव स्टोरी है जो दिल को छू जाती है। इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है और चांद मेरा दिल आज रिलीज हो चुकी है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका की फिल्म सिस्टम इस वीकेंड आप देख सकते हैं। पम्मी बवेजा, हरमन बवेजा और स्मिता मूवी के निर्माता हैं ये सब। ये फिल्म आज ओटीटी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। ये एक कोर्ट रूम थ्रिलर ड्रामा है। अजय देवगन की हिंदी दृश्यम 3 के आने में भले ही अभी थोड़ा समय बाकी है लेकिन इस शुक्रवार मेकर्स ने ओरिजिनल फिल्म के दीवानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ, ऑडियंस सिनेमाघरों में जाकर मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की इस ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्म के इस तीसरे भाग में मुख्य किरदार जॉर्ज कुटी एक बार फिर पुलिस की पैनी नजरों और बेहद कड़ी छानबीन के दायरे में है। तो भाई दृश्यम 3 अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन हम अजय देवगन का गाना तो यहाँ चला सकते हैं ना। वो कौन सा गाना है? वो रहा आपके पास ये गाना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज। कुछ याद आ रहा है आपको किस फिल्म का ये गाना है? कुछ लोगों को तो याद आ गया, सही गैस आपने किया। जी हाँ, विजय पथ का गाना है ये, सागर संग किनारे हैं,
1: फूलों संग बहारे हैं।

चलिए जी, यहाँ पर ट्रैक चेंज होने वाला है और बातें भी चेंज होने वाली हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ आईपीएल की धूम मस्ती में लोग झूम रहे हैं। बस अब 31 मई आईपीएल फाइनल की डेट भी नजदीक आ रही है और ऑरेंज कैप अब तक कौन से प्लेयरों ने पहनी है बल्लेबाजी में, वो टॉप पर हैं। आइए आपको बताते हैं, गुजरात टाइटंस का दबदबा ऑरेंज कैप की लिस्ट में पूरी तरह दिखाई दे रहा है और विकेट लेने वालों की तालिका में भी काफी हद तक गुजरात के गेंदबाज छाए हुए हैं। चेन्नई को 89 रन से पराजित करने वाली गुजरात टीम के शुभमन गिल ने 37 गेंदों में 64 रन की पारी खेलकर 616 रन बनाए और टॉप पर वो आ गए। लेकिन पारी खत्म होते होते शुभमन गिल फिर दूसरे नंबर पर पहुंच गए और उनके जोड़ीदार उन्हीं की टीम के साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन बनाकर 638 रन के साथ टॉप पर पहुंचकर ऑरेंज कैप लगा ली। एक ही टीम के दोनों प्लेयर। इस तरह जीटी यानी गुजरात के दोनों बल्लेबाज चोटी के दो स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी हैं। अब इनकी उम्र बहुत ही कम है लेकिन चौके छक्कों के अलावा ये बात ही नहीं करते हैं जब खेलते हैं तो। इनके नाम 579 रन है, 579। उनके बाद 563 रन के साथ चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श का नाम आता है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 555 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं, 555। आज रात हैदराबाद और बेंगलुरु के मुकाबले के बाद ये तस्वीर फिर से बदल सकती है। जी हाँ, तस्वीर दूसरी हो सकती है। क्लासेन के पास अपने रनों की संख्या को बढ़ाने का मौका होगा। वहीं आरसीबी के विराट कोहली 542 रन से भी आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आपको ताज़ा अपडेट बताएं, अब से कुछ देर पहले की 8 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद ने 96 रन बना लिए थे 96 एक विकेट के नुकसान पर और उसमें अभिषेक शर्मा का बल्ला आज चल रहा है। 21 गेंदों में उन्होंने 56 रन बना डाले थे शुरू में, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ताज़ा अपडेट और क्या है, हम जाते जाते आपको प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ एक गाने का वक्त हो रहा है, वो गाना है ये क्रिकेट वाला, गेम वाला। जिस तरह से जिंदगी में हंसना जरूरी है ना, उस तरह से खेलना भी जरूरी है। खेलने से भी आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाती है और गाने सुनने से तो टेंशन आपकी खत्म हो ही रही है। तभी तो आप आकाशवाणी अयोध्या को ट्यून करते हैं 8:15 पर ये सजीला अलबेला प्रोग्राम गीत गुंजन सुनने के लिए।

और अब बात करते हैं पर्पल कैप। जी हाँ, पर्पल कैप उसे लगती है जो टॉप पर गेंदबाज होता है। आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार काफी आगे निकलते दिख रहे थे, लेकिन जीटी के कागिसो रबाडा ने चेन्नई के खिलाफ 3 विकेट लेकर कुल 24 विकेटों के साथ भुवनेश्वर की बराबरी कर ली। हालांकि भुवनेश्वर की इकोनॉमी 7.70 है जबकि रबाडा की 9.18 है, इसलिए पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर के पास ही बनी रहेगी। आज हैदराबाद के खिलाफ उनके पास विकेटों की संख्या को और बढ़ाने का मौका भी है। गुरुवार के मैच में मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट लिए, इसके साथ उनके 17 विकेट हो गए और अब 7वें नंबर पर वो हैं। दो और गेंदबाज 4 नंबर पर पहुंचे हैं। अंशुल काम्बोज ने साई सुदर्शन का विकेट लेकर 21 विकेट पूरे कर लिए और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं राशिद खान ने भी मैच में 3 विकेट लिए और 19 विकेट के साथ 4थे नंबर पर वो आ गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कार्तिक त्यागी 18-18 विकेट के साथ 4 नंबर पर सिराज के बीच मौजूद हैं। और हम यहाँ मौजूद हैं आपको गाने सुनवाने के लिए। उसके पहले मैंने वादा किया था कि आपको जो आईपीएल का आज का मैच हो रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे, हैदराबाद और चेन्नई के बीच में। तो अब जो है 12 ओवर की समाप्ति पर कुछ देर पहले 128 रन हैदराबाद ने बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर और अभिषेक एक गेंद और खेलकर आउट हो गए 56 पर ही। और ट्रेविस हेड इस समय खेल रहे हैं 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर, अच्छा ये भी आउट हो चुके हैं। जी हाँ, और ईशान किशन हैं जो खेल रहे हैं इस समय 37 रन बनाकर 25 गेंदों में और हेनरी क्लेसन खेल रहे हैं 5 रन पर। तो चलिए अब मेरे पास

यहाँ गर्मी के मौसम में जेठ के मौसम में सावन भी आया था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी तो तपती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। अगर बारिश की बूंदे पड़ जाएं तो ठंडक पहुंच जाए, इसलिए मैंने ये गाना निकाला। कम से कम गाने के ही जरिए कुछ ठंडक आपको मिल जाएगी। सुनिए गाना हरजोत कौर की आवाज में, द फैमिली स्टार फिल्म से।

तो भाई ये इस्तीफा की था कि शाम सुहानी प्रोग्राम में भी आपको बारिश वाला पानी वाला गाना सुनने को मिला और यहाँ भी इत्तेफाक से गीत गुंजन प्रोग्राम में भी अचानक प्लेलिस्ट में ये गाना आ गया। अब जाने से पहले आपसे क्या कहें, जाने से पहले आज एक शेर आपके लिए बोलते हैं। चांद के पास सितारे बहुत हैं, चांद के पास सितारे बहुत हैं, पर सितारों के पास चांद एक ही है। हमारे जैसे दोस्त आपके पास बहुत हैं, हमारे जैसे दोस्त आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपके जैसे दोस्त हमारे पास हमेशा रहेंगे।

तो बस मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका रेडियो मीत अमरजीत यही कहता है, आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपनों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, अड़ोस पड़ोस सभी का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर किसी की मदद करते रहें, और जब आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करने खुद पहुंच जाएगा आपके पास। अपना और अपनों का, सबका बहुत बहुत ध्यान रखिए। गीत गुंजन प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत।

0: बॉलीवुड फिल्मी गानों के साथ, इंफॉर्मेशन और जानकारियों के साथ, दिलचस्प बातों के साथ, बॉलीवुड की बातों के साथ, स्पोर्ट्स की बातों के साथ, हिस्ट्री ऑफ द डे की बातों के साथ, आज का गीत गुंजन प्रोग्राम आपने एजे अमरजीत के साथ आकाशवाणी अयोध्या FM से सुना। ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में, 9 अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनी के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत

0: कि तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर

0: क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा, एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में

0: एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी को, और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए, तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो।

तेरे करीब रहूं या कि दूर जाऊं मैं। अभी आपने चंदनदास की आवाज में ये गजल सुनी। अगली गजल इस ब्रेक के बाद।

0: सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: और अब पेशे खिदमत है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ निगाही ये गजल।

0: ये है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ इंजीनियर हैं इस प्रोग्राम में हेलो अयोध्या में साथ देने के लिए स्वप्निल मिश्रा, और आपका मीत अमरजीत माइक्रोफोन से मुखातिब है। उसकी आवाज हवाओं की तरंगों पर सवार होकर आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या FM से। बस आइए सुने प्रोग्राम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपकी अपने FM 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
1: जी हाँ, बस ये सुहाना सफर शुरू हो चुका। 7376804090 नंबर किसी ने मिला भी लिया तो आइए उनका वेलकम कर लिया जाए। जी कौन है मेरे साथ बताइए प्रोग्राम के आगाज में।
2: नमस्कार सर, दिलीप, मेरा दिलीप कुमार नाम है, डिस्ट्रिक्ट बस्ती नारायणपुर तिवारी हरियाणा।
1: और क्या हाल चाल है दिलीप जी, बढ़िया हैं?
2: जी बढ़िया, आप कैसे हैं सर?
1: बस बढ़िया है, आज आपने याद कर लिया तो आप आ गए प्रोग्राम में है ना?
2: जी सर, काफी दिन से आपसे बात नहीं होती, हमने कहा सर से आज बात हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं और जब आप याद नहीं करेंगे तो फिर हम आपको लाएंगे नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं, है कि नहीं?
2: जी सर, अब क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसमिटर में हो गया कि गर्मी जैसे थोड़ा बढ़ती है, हम जो देख रहे हैं पता नहीं इस समय रेडियो में दिन का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहा हूँ।
1: अच्छा, ऐसा
2: 5 बजे के बाद ही चल रहा है, पता नहीं क्यों।
1: अच्छा, दिन में आपको ट्रांजिस्टर पे प्रोग्राम या मोबाइल पे प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है मोबाइल के FM पर?
2: नहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं, मैं रेडियो भी सुनता हूँ, लेकिन रेडियो वाला कार्यक्रम जब से मई का महीना आ गया तब से वो रेडियो दिन में साफ पकड़ता नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं बाहर जब रेडियो रखता हूँ तो चलता हूँ।
1: तो दिलीप जी, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ये एंटीना आप खोलते हैं पूरा रेडियो का?
2: हाँ सर, पूरा चलता है, मेरा एंटीना पूरा फुल खुलता है, पता नहीं क्यों
1: तब भी नहीं
2: चल रहा था, लेकिन इसी बार क्यों पता नहीं ऐसा प्रॉब्लम है।
1: एक काम और कीजिएगा, सुनिए, मैं एक काम और कीजिएगा, उस एंटीने की तार को ऊंचे किसी बिल्डिंग पर या पेड़ पर बांध दीजिएगा, फिर रेडियो में कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका रेडियो शायद कैच कर ले है ना?
2: हाँ, ये हो सकता है सर।
1: हाँ,
2: तो इसी वजह से कार्यक्रम में दिन वाला कार्यक्रम में सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं इसी बात से खेद है मुझे।
1: ये देखिए गर्मी में थोड़ी

0: दिक्कत होती है, वेवलेंथ जो है ना वो थोड़ी वीक पड़ती है गर्मियों में। तो आज गाना कौन सा सुनवाएं आपको प्रोग्राम में, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का भी।
1: जी सर, कैलाश मूवी का जिंदगी से जंग जीत लेंगे, तो संघर्ष जी उनका।
0: जी बिल्कुल, जिंदगी से जंग वही जीतते हैं जो जिंदगी के साथ लड़ते हैं, हार नहीं मानते।
1: जी वही सर।
0: चलिए शुक्रिया जी आपका कॉल करने के लिए, बस्ती में आपका गाना पहुँच गया।
1: धन्यवाद सर।
0: तो आप भी कॉल लगा रहे हैं ना, पता नहीं कहां कहां से आप लोग कॉल लगाते हैं। अब तो देश और विदेश में भी ये आकाशवाणी अयोध्या का प्रोग्राम पहुंच रहा है प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के जरिए।

0: सौरभ, हेलो, अयोध्या में किसने बाजी लगा ली है, कौन कामयाब हो गया है जी, उनको भी ला रहे हैं रेडियो पर जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से?
1: धर्मेंद्र सर।
0: हाँ जी, धर्मेंद्र अहिरवार जी, मुझे याद आ रहा, आप सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं
1: जी। सर,
0: तो सागर में सब बढ़िया है? गर्मी पड़ रही है ना वहाँ भी? हाँ, गर्मी से बच के रहिए। और काम तो देखिए करना ही है, काम नहीं करेंगे तो फिर घर परिवार भी नहीं चलता है कि नहीं
1: जी। सर, काम तो थोड़ा करने पड़े, 10 बजे तक करते हैं सुबह से।
0: तो क्या खेती थी करते हैं कुछ, आप दुकान करते हैं, क्या करते हैं?
1: दुकान करते हैं, खेती भी है सर।
0: अच्छा, एक बार आपने बताया था सर, मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं शायद?
1: नहीं नहीं, खेती किसानी करते हैं और किराने की दुकान।
0: अच्छा, किराने की आपकी दुकान है, ठीक है, बढ़िया
1: जी। हाँ, 15 दिनों में कॉल करता हूँ मैं, 15 दिन 1 महीने में
0: जी। तो ये बताइए, कभी हम सागर आए तो वहाँ घूमने वाली कौन सी जगह है, दर्शनीय स्थल वहाँ पे क्या है?
1: सर, स्थान है, तीर्थ स्थान है ये अपने,
0: बताइए थोड़ा सा हमको।
1: ज्वाला माई है अपनी।
0: अच्छा,
1: सागर बाबा है, कटनवारी।
0: वाह जी वाह, ठीक है, बढ़िया। तो आज आपको गाना कौन सा सुनवा दिया जाए आकाशवाणी अयोध्या से?
1: फूल कांटे फिल्म का सुनने सर।
0: फूल और कांटे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं आपको। आपने बोल बताया, धीरे धीरे प्यार को
1: बढ़ाना है।
0: बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए, क्योंकि प्यार नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं। सुनिए गाना
1: जी सर।

0: और अब मेरा साथ देने के लिए इस सफर में जी कौन मेरे पास आ गया, आइए उनकी भी आवाज को आकाशवाणी अयोध्या से गुंजाते हैं, अपनी आवाज के साथ मिलाते हैं। जी बताइए अपना नाम।
1: सर रुपेश बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
0: रुपेश जी आप तो आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या के बहुत ही पुराने श्रोता हैं।
1: बिल्कुल सर जी, बहुत साल हो गए।
0: आज आपको एक बात मैं याद दिलाऊं
1: जी,
0: 2018 में भी आपकी मुझसे बात हुई थी कि नहीं, पहले ये बताइए।
1: हाँ बात हुई थी सर, 2018 में भी मेरी आपसे बात हुई थी।
0: 2018 में जो मैंने स्थापना दिवस पे 17 जून को प्रोग्राम बनाया था
1: जी जी
0: दीपिका के साथ,
1: हाँ,
0: तो उस प्रोग्राम में भी आपकी कॉल लगी थी मेरे पास। आज भी उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, जब मैंने सुना तो मुझको याद आ गया कि आप उस प्रोग्राम में भी आए थे।
1: हाँ जी मैं उस कार्यक्रम में आया था, मुझे बहुत साल हो गए। और आपके तुलना तो हम ना विविध भारती के यूनुस खान से करते
0: नहीं
1: हैं।
0: नहीं इतनी बड़ी तुलना मत कीजिए, इतने बड़े हम नहीं है, है ना।
1: नहीं नहीं आप हैं,
0: चलिए शुक्रिया। तो ये बताइए कि अब 90 साल पूरे हो रहे हैं, 8 जून को आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो जाएंगे। 1936 में जो है औपचारिक रूप से आकाशवाणी इंडिया में जो है ओपन हुआ था भारत में, तो 91 साल में पहुंच जाएगा। तो बताइए आकाशवाणी के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल में क्या बात आ रही है आपकी?
1: सर ये कह रहे थे आकाशवाणी जो है ना अभी भी इसकी पहुंच जहां तक है ना वहां तक, मतलब कोई भी मोबाइल टावर
0: जी, जी
1: कोई भी दूरदर्शन का केंद्र भी जहां नहीं है वहां भी आज आकाशवाणी पहुंचता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आकाशवाणी तो जब मतलब दूरदर्शन के केंद्र नहीं थे या दूरदर्शन से 2-4 घंटे के लिए चला करता था, तब भी आकाशवाणी सूचना का एक सशक्त माध्यम था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जो है दूर दराज तक हर जगह पर आकाशवाणी पहुंचा हुआ है, है ना
1: जी जी। इसकी लाइन ही वही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: हाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर जी याद भी आ रहा था, आप तो याद दिला दिया।
0: हाँ तो यही हम लोग अपने श्रोताओं से भी कहते हैं कि आप सबका ख्याल रखें, बार बार फोन करेंगे तो फिर दूसरों की बारी यहाँ पे आ नहीं पाएगी।
1: इसीलिए तो सर जी 9 मई को बात किए थे ना, उसके बाद
0: जी जी
1: आपकी ड्यूटी लगी थी, हमने कहा आप इस मंच पे कहाँ मिलेंगे मुझे।
0: चलिए मिलेंगे क्यों नहीं, मिलते रहेंगे, अगर इस मंच से नहीं मिले तो किसी और मंच से जुड़ जाएंगे, फिर आप वहां से हमसे बात करेंगे। तो ये बताइए
1: आज आकाशवाणी का एक मतलब पेपर में प्रिंट हो रहा था कि टावर पे कोई चढ़ गया था अभी।
0: नहीं उसके बारे में देखिए अभी हमको जानकारी नहीं है। हाँ कुछ देर के लिए प्रोग्राम कल टेक्निकल वजह से बंद हो गया था, तो आप गाना कौन सा सुनेंगे ये बताइए।
1: गाना शराबी मूवी का सुना दीजिए, जहाँ 4 यार मिल जाए।
0: चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए, गोड़ा में आपका गाना पहुँच रहा है।
1: ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहाँ 4 यार

चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार, जहां चार

के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

0: किस्मत जागी।
1: और अब किस्मत किसकी जाग गई है उसको भी ले आए प्रोग्राम में। जी नाम बताइए अपना, पहुंच गई आप आकाशवाणी अयोध्या के हेलो अयोध्या प्रोग्राम में।
2: सर मेरा नाम नीतू पांडे है, दिनकरपुर साल अयोध्या से बोल रही हूँ।
1: नीतू पांडे?
2: यस सर।
1: अच्छा ऑफ माइक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमको लगा आप ऋतु बोल रही हैं, तो एन है एन।
2: सर नाम बोले थे सही, आप सुन नहीं पाए थे।
1: अच्छा बताइए आप जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? NITU
2: NEETU
1: NEETU। तो बात एक ही है, चाहे एक आई लगाइए चाहे डबल आई लगाइए लगाइए ठीक है। नीतू क्या करती हैं आप बताइए सोहाल में?
2: सर अभी तो घर पे हैं।
1: नहीं घर पे तो इस वक्त रहेंगी, सभी लोग घर पे रह रहे हैं, आप करती क्या है वहाँ पर?
2: घर पे कंप्यूटर सीखने जाते हैं फ्रेंड
1: है। तो कंप्यूटर में क्या सीख रही हैं आप, फैशन डिजाइनिंग या कुछ और क्या काम सीख रही हैं?
2: अभी तो स्टार्टिंग है सर, अभी कुछ पता नहीं है ज्यादा कुछ, अभी कल परसों में ज्वाइन किया है।
1: अच्छा अभी शुरुआत है, हमें लग रहा है आपने अपने मोबाइल में स्पीकर ऑन कर रखा है क्या मोबाइल का? अगर कान में सुनेंगे तो बढ़िया आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और लोगों को भी बातचीत अच्छी लगेगी, इको नहीं होगा फिर है ना नीतू? तो गाना किस फिल्म का सुनवाएं आपको बताइए?
2: बॉर्डर फिल्म का।
1: बॉर्डर का हम एक गाना चला रहे हैं, और कुछ कहना है आकाशवाणी अयोध्या के लिए आपको? अरे वाह क्या बात है, तब तो फिर आप भगवान को प्रसाद चढ़ाइएगा, बांटिएगा सबको कि मेरी कॉल लगी आपको, सब लोग कल बता ही देंगे कि आपकी आवाज तो आकाशवाणी अयोध्या के हेलो अयोध्या प्रोग्राम में आ रही थी तो चलिए अनीतू और कौन कौन सुन रहा है इस वक्त आपके आसपास घर में ये प्रोग्राम? चलिए सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना बॉर्डर से। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: तो जैसे जैसे लोग इस आकाशवाणी अयोध्या के हेलो अयोध्या प्रोग्राम में आ रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं, मिला रहे हैं, धीरे धीरे ये सफर आगे बढ़ रहा है और 10 बजे को टच करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जी किसी और को भी हम ला रहे हैं। और किसकी कॉल लग गई जी, बताइए कहाँ से, अपना नाम बताइए। हाँ, रेडियो पर आपकी आवाज आ चुकी है, बताइए नाम।
2: आरती।
1: आरती, और एक नाम आपने और जोड़ा था उसके साथ।
2: अरे हाँ, आशा, आरती आशा बताए हैं सर।
1: अच्छा, ये वैसे ही नाम है जैसे रिंकी पिंकी का जगदीशपुर राय बरेली से आता है।
2: जी।
1: तो ये आशा आपका नाम है कि कुछ और वजह से आपने जोड़ रखा है?
2: नहीं, आशा बहु है।
1: ओहो, आशा बहु है, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, लोगों का भला कर रही है और सेवा कर रही है समाज की, है ना?
2: जी।
1: तो ये काम ऐसा होता है ना कि अचानक अगर रात में भी आपको बुलावा आ गया तब भी आपको जाना पड़ता है, क्यों?
2: जी जी।
1: चलिए, तो ये मन में कैसे आया कि आप इस काम को ही करेंगी, आपने कोई दूसरा काम नहीं पकड़ा? अच्छा लगा आपको?
2: अरे नहीं, जब रेडियो चालू रहा था तो सब सुना थी गाना ना।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ट्राई कर जाता।
1: नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो आशा बहु आप बनी
2: जी,
1: तो ये क्या सोच कर आप बनी, आपने कोई और दूसरा काम नहीं करती क्या
2: जी?
1: आशा बहु बनने की मंशा आप में कैसे आई ये बताइए हमको।
2: ऐसे सर, मन घट रहा तो,
1: है ना? ठीक है, मातृत्व का जो वो होता है ना, जो माँ सब कुछ देती है वही आप सबको जो है पूरा करती है, सेवा करती है सबकी। गाना बताइए, किस फिल्म का सुनवाए आपको आरती
2: जी? चांद के पार सर।
1: चांद के पार, तो
2: हाँ।
1: धरती पर अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको अब
2: जी?
1: धरती पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है आरती को? लग तो ऐसे ही रहा है। तो चांद के पार देखिए, आने वाले टाइम में लोग चांद पे भी पहुंच जाएंगे, वहां पे रिसर्च हो रही है।
2: अच्छा, हाँ। लेकिन चांद वहां नहीं जाना है, यहीं रहना है।
1: वहां महंगा बहुत है कि नहीं?
2: हाँ।
1: चलो, बस्ती में आपका गाना पहुंच गया, गाना सुनिए, काफी लोग और भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। शुक्रिया।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: जी हाँ, टाइम हो रहा है 9:55 और 16 सेकेंड्स और इस वक्त मेरे पास किसकी कॉल पहुंच गई यहाँ पर 7376 80 40 90 नंबर मिलाकर। जी बताइए, वहाँ से कौन है?
3: जी सर, शिवकुमार सिंह है। नमस्ते सर।
2: शिवकुमार जी, कहाँ पर सुन रहे हैं प्रोग्राम?
3: ये पहावर के पास सत्ता सुधीर गांव के पास पूरे गाँव रायपुर मेला के पास।
2: ओहो, रायपुर मेला। एक आध बार हम भी वहाँ गए, बड़ा जबरदस्त मेला वो लगता है, लकड़ी वाला।
3: जी जी जी जी,
2: हर एक चीज लकड़ी की मिलती है वहाँ पे।
3: जी जी, लगभग 2 महीने का मेला लगता है।
2: हाँ, खाने पीने की भी चीजें हैं, जलेबी है, लड्डू है, सब कुछ मिलता है।
3: बुरा लगता है खाने पीने की
2: चीजें। जी जी जी, गाँव की बात ही निराली होती है, वहाँ पहुँच जाइए तो मन वैसे ही खुश हो जाता है, है ना?
3: जी जी,
2: शहरों में तो गाड़ियों का इतना शोर शराबा रहता है कि पूछिए नहीं।
3: जी जी।
2: तो आज कैसे मन हो आया, आपने आकाशवाणी अयोध्या में नंबर मिला दिया, अच्छा लग रहा है?
3: बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, आज मिला है, दोबारा मिला है।
2: अच्छा,
3: हम तो संपत्ता से आकाशवाणी से जुड़े हैं।
2: अरे वाह, क्या बात है। देखिए, 90 साल भी अब 8 जून को पूरे हो रहे हैं।
3: जी जी।
2: और आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद का भी स्थापना दिवस जून के महीने में आने वाला है। 17 जून गुरुवार के दिन इस केंद्र से पहली बार प्रोग्राम शुरू हुआ था। औपचारिक रूप से दिन में 12:30 बजे शहनाई वादन हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, और 5 बजे शाम से प्रोग्राम होने शुरू हो गए थे 1 घंटे के। तो आज आपको गाना कौन सा सुनवाए?
3: पाकीज़ा का सुनवा दीजिए।
2: चलिए, पाकीज़ा का गाना लगा दिया गया, आपके पास पहुंच गया। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
3: धन्यवाद।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। और अब हम कहां पहुंच गए हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं कहां से इन्होंने कॉल लगाई है। जी बताइए अपना नाम।
1: जी सर नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ।
0: जी जी नमस्कार जी, आप तो ठंडे इलाके में हमको ले गए, वहाँ ये बताइए कि मौसम ठंडा है कि नहीं?
1: जी जी यहाँ पर रिंगी में ही बारिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम है
0: और यहाँ के लोग जो है बूंदों को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, बारिश को।
1: जी जी बिल्कुल, तो क्योंकि देखिए तो कोई मतलब कि सब इधर से बारिश अब एक महीने में उधर भी भेजे जाएंगे तो उधर भी पहुंच जाएगा।
0: वो तो है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि 18-22 जून तक जो है यहाँ भी बारिश जो है गोरखपुर की साइड से आ जाएगी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आज
1: ये जो बारिश है वो मतलब कि अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और इधर से शिमला भी मतलब आज बात हुआ था तो उधर बोल रहे थे शिमला में भी बारिश हो रहा है।
0: अच्छा ये अविनाश जी ये बताइए, आपने त्रिपुरा से कॉल की है, आपके आसपास आकाशवाणी का कौन सा केंद्र नजदीक है वहाँ पर?
1: हमारे यहाँ पर तो त्रिपुरा में 4 केंद्र है, तो सबसे नजदीक हमारा है आकाशवाणी कैलाश जो हमारे मतलब कि हमारे ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
0: हाँ, कैलाश
1: और उसके बाद अगरतला जो हमारा राजधानी है वहाँ का।
0: अगरतला में तो बड़ा केंद्र है और कैलाश जो है वो तीनों सभाओं में आपको प्रोग्राम देता है वहाँ पे कि केवल एक शिफ्ट में होता है?
1: नहीं नहीं वहाँ पर देखिए सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात को 10 बजे 30 मिनट तक चलता है
0: तो,
1: और इसमें देश भारती के कार्यक्रम भी डिले करते हैं।
0: हम अपने कार्यक्रम भी वो सुबह दोपहर शाम को करते हैं। ठीक है बढ़िया।
1: हाँ जी सुबह वहाँ का कार्यक्रम का बताए तो सुबह 6 बजे आता है और उसके बाद से 6:30 से देश भारती कार्यक्रम चलता है आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद अपना हमारा स्थानीय जो समाचार आता है वो चलता है, उसके बाद फिर 9 बजे से 11 बजे तक देश भारती, उसके बाद फिर हमारा स्थानीय कार्यक्रम चलता है।
0: अच्छा सुनिए, एक समझौता फिल्म आई थी उसमें एक गाना बहुत

0: बेहतरीन था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ।
1: जी जी बिल्कुल, अभिजीत जी की आवाज बहुत प्यारा सा गीत है।
0: तो वो तो किशोर कुमार की आवाज में गाना था, आज ये अभिजीत की आवाज में उसी से मिलता जुलता गाना आजमाइश फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद पर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी किसी किशोर जी की आवाज का जो गीत है वो अभिजीत में भी अपने उसी अंदाज में आवाज देने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन उनकी आवाज तो बल्कि किशोर कुमार तो हो नहीं सकता,
0: जी जी
1: सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कोशिश रहता है वो काफी हद तक उनको कामयाब हुआ।
0: जी जी, अभिजीत ने वैसे गाने कम गाए लेकिन बहुत ही बेहतरीन गाने गाए। आइए सुना जाइए गाना। शुक्रिया कॉल के लिए।
1: जी बिल्कुल जी।

0: इनका कुछ और खाने को मन कर रहा है, उसमें दाल रोटी पे ही जोर दिया गया था समझौता फिल्म में। गाना भी बहुत बेहतरीन है, कभी हम गीत गुंजन में आएंगे तो पूरा गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी और की कॉल लग गई है, उनको भी सुनवाना चाह रहे हैं। जी कहाँ से आप पहुँच गए प्रोग्राम में?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: वाह जी वाह, क्या बात है, शिमला की पहाड़ियों से आवाज जब यहाँ पर आ रही है तो ठंड महसूस हो रही है मुझको।
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये बताइए, वहाँ के बागों में सेब तैयार हो गए कि अभी होने वाले हैं?
1: जी अभी तो होने वाले हैं, अभी तो सैंपल हुए, सैंपल लगे, अभी फूल लगे।
0: अच्छा जी, फूल लगे हैं, टाइम लगेगा।
1: जी जी अब तो फूल लगे।
0: तो हमको बताइए सेब की कितनी वैरायटी है वहाँ पे, कुछ नाम है आपको याद? आपको तो याद ही होंगे।
1: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वैरायटी तो जैसे कि रेड है और एक लाल जो है पीले रंग का सेब है, मतलब जो रेड मतलब लाल सेब तो बिल्कुल मीठा होता है।
0: उसका नाम नहीं रखा, उसका कोई नाम नहीं रखा गया वहाँ पर कि किस जगह का ये सेब है?
1: हाँ तो गोल्डन, एक गोल्डन रखा है, गोल्डन सेब है।
0: हाँ।
1: और हाँ तो एक वो है रॉयल, रॉयल चैलेंजर सेब है।
0: अच्छा अच्छा। लेकिन सेब खाने में, सेब खाने में तभी मजा आता है जब वो दांत से काटा जाता है अमरूद की तरीके।
1: और, जी जी बिल्कुल।
0: और कुछ कुछ सेब जो है सोफे की तरीके होते हैं, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं।
1: हाँ, वो, हाँ, कुछ सेब ऐसे होते हैं।
0: वो नहीं अच्छे लगते ना?
1: हाँ तो वो जो मुंह में रख जाते हैं वो तो इधर नहीं, वो तो कश्मीर के साइड होते सेब।
0: जी वो उनके लिए है जिनके दांत कमजोर है या दांत नहीं है तो मुंह में रखे वो सेब खा लेंगे आराम से।
1: बिल्कुल बिल्कुल खा लेंगे।
0: तो आज राकेश जी आपको शिमला में कौन सा गाना पहुंचाया जाए यहाँ से?
1: सलामी मूवी का गाना सुना है, चेहरा क्या देखते हो।
0: वाह जी वाह, गाना तो आपने बहुत ही बढ़िया पसंद किया है, मेरी पसंद का। चलिए शुक्रिया कॉल के लिए आपका, शिमला में आपका गाना पहुंच रहा है।
1: चेहरा धन्यवाद,
0: शुक्रिया।

0: और अब मेरे पास कौन आ गया जी, आइए उनका भी वेलकम करें प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। जी आपका स्वागत है, पहुंच गए आप रेडियो पर, बताइए अपना नाम।
1: हमारा नाम
0: सोनिया
1: है।
0: सोनिया, खाना नहीं खाया क्या अभी आपने?
1: जी सर।
0: खाना खाया कि नहीं अभी?
1: खा चुके सर।
0: हाँ, अब आपकी आवाज अच्छी आ रही है, अभी तो आपकी लग रही थी कि आपको भूख लगी है।
1: नहीं सर, आ चुके हैं, छत पर आए हैं।
0: अच्छा, तो क्या करती है वहाँ पर अम्बेडकर नगर में आप?
1: घर पर रहते हैं सर।
0: हाँ, घर का तो काम ही बड़ा होता है, तो कोई कोई साथ देता है काम कराने में कि नहीं?
1: जी सर,
0: घर का काम जब आप करती हैं तो कोई साथ आपका देता है कि अकेली करती हैं?
1: नहीं, हमारी मम्मी है और हम हैं बस।
0: अच्छा, दोनों जने मिलके करते हैं, बढ़िया है। देखिए, मम्मी का भी हाथ बटाना चाहिए, उनको भी आराम मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत काम किया अपनी जिंदगी में, है कि नहीं?
1: नहीं, बहुत काम किया है
0: जी।
1: तो पापा थे, गुजर गए थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तब मम्मी ने किया है।
0: तो सोनिया, आप आकाशवाणी फैजाबाद भी सुनती थी इससे पहले?
1: सुनते हैं सर, बराबर नहीं सुन पाते हैं।
0: हाँ, वो तो काम भी तो करना ही करना है, घर का, जब फ्री रहती होंगी तभी आप आकाशवाणी अयोध्या के प्रोग्राम से सुनती होंगी।
1: सुनते हैं, शाम को ही ज्यादा सुनते हैं सर।
0: हाँ, बढ़िया है। तो इस समय छत पे हवा चल रही है कि शांत है बिल्कुल?
1: नहीं सर, हवा चल रही है।
0: चलिए, तब तो बढ़िया है, बढ़िया है, क्योंकि कल बिल्कुल हवा थमी हुई थी, बिल्कुल एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था कल।
1: नहीं सर, रात में हवा चला था।
0: अच्छा अच्छा, तो सोनिया को गाना कौन सा पहुंचाया जाए अंबेडकर नगर में? कंप्यूटर से क्या कहें हम?
1: कोई भी
0: गाना सुनवा दें आपको। अच्छा, आपने भी ऑफ माइक बताया था जय विक्रांता का, तो जय विक्रांता का तो गाना मेरे पास नहीं है, जय भारत का गाना मेरे पास है, ठीक है?
1: वहां पे कोई भी गाना सुना दे।
0: चलिए, आपको अच्छा लगेगा, बाकियों को भी अच्छा लगेगा। जी, कुछ
1: बात और कहना है।
0: बताइए।
1: हम सभी ऐसा सुनने वालों से कहना चाहते हैं कि हर कोई पंछी के लिए पानी जरूरत
0: है। हाँ, देखिए, ये तो बराबर हम लोग बता रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में भी, क्योंकि उनकी जुबान नहीं होती है, वो पानी मांगे तो मांगे कैसे, है कि नहीं?
1: जी सर।
0: तो हमारे घर में जो है सिपाही बुलबुल ने अभी घोंसला भी बनाया था, इतना मुझको अच्छा लग रहा था, एक महीने तक वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रही, अब तो वो बच्चों को लेके उड़ चुकी हैं।
1: है ना? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं सर, नदी के किनारे पे घर है
0: जी,
1: फिर भी पानी रखते हैं।
0: जी जी, पहले देखिए घरों में गौरैया कितना घोंसला बनाती थी, अब गौरैया तो कहीं दिखती तक नहीं है।
1: जी

0: है ना।
1: तो हमारे घर में लगा रहे हैं, घोंसला बनाए हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जानवरों को पाना सॉरी पानी देना, दाना देना, उनको भोजन कराना भी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है,
1: ठीक है।
0: चलिए तो फिर सोनिया, आपका गाना मैंने यहाँ से चला दिया, शुक्रिया आपका।

0: संदीप भारती की कॉल मनकापुर गोंडा से लगी थी, बंजरिया से उनकी कॉल किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है, तो उनसे हम कहेंगे कि लगातार वो कॉल यहाँ पर करते जाएं। अभी प्रोग्राम में वक्त बाकी है, 10-12 मिनट का, तो उनकी कॉल दोबारा लग जाएगी। लेकिन अब उनकी जगह पर आ कौन गया है? जी बताइए अपना नाम। जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में, नाम बताइए। देखिए ये भी कॉल यहाँ पर ड्रॉप हो गई, ऐसा होता है अक्सर। अब फिर किसी की कॉल आ रही है। जी हाँ, 7376-80-40-90 नंबर पर। जी आप आ जाइए प्रोग्राम में, नाम बताइए।
1: सर आंशी पांडे।
0: आंशी पांडे, कहाँ से कॉल लग गई?
1: सर अयोध्या से ही है।
0: दो विकेट आपने गिरा दिए, दो कॉल आपने ड्रॉप कर दी। हाँ एक का तो नाम पता था संदीप भारती, लेकिन दूसरा पता नहीं कौन था, तो वो एयर में ही रह गए। तो बताइए अंशी क्या करती हैं आप वहाँ पर अयोध्या में?
1: सर अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 11th में है।
0: हाँ पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए अंशी कि कुछ लोग होते हैं कि इंटर पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, तो क्या बंद करनी चाहिए पढ़ाई?
1: नहीं सर पढ़ाई नहीं बंद करनी चाहिए, लड़कियों के लिए तो पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहते हैं ना घर की नारी अगर पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है ना?
1: Yes,
0: पढ़ी लिखी नारी घर की खुशहाली, ये मैंने स्लोगन एक बार बनाया था। क्यों अच्छा लगा?
1: Yes, sir.
0: तो अंशी को गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: याराना मूवी का सॉन्ग, तेरे जैसा यार कहां।
0: तो याराना मूवी का गाना है, तो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म है ये?
1: Yes, sir.
0: तो अमिताभ बच्चन की फिल्में आपको पसंद आती हैं?
1: Yes, sir. अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की मूवी बहुत अच्छी।
0: एक, एक, एक दोस्ती पे गाना साथी फिल्म में भी बहुत अच्छा है, कभी आप उसको भी सुनिएगा, ठीक है?
1: आपकी मर्जी हो तो सुना दीजिए।
0: अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा साथी
1: जी, सर।
0: फिल्म

0: निकालने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कभी कभी देखिए भी, अगर कंप्यूटर ने गाना निकाल दिया लेकिन साथ ही पर वो निकल नहीं पा रहा गाना।
1: एक चीज बताएं सर।
0: हाँ जी बोलिए, आप बोलते रहिए।
1: वैसे तो दो चार लाइनें हम भी लिखते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत।
0: तो बोल दीजिए ना, आप छुपा क्यों रही हैं? बताइए क्या लाइन लिखी है।
1: अभी तो नहीं है, अभी हम जिसमें लिखते थे वो डायरी खो गई है हमारी।
0: डायरी खो गई है तो आप मोबाइल में उसको सेव करके रखिए गूगल क्रोम बाबा के पास। है ना, क्योंकि जो नेट पे चीजें होती है ना कभी घूमती नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे।
1: मम्मी के पास तो ऐसे छोटा वाला फोन नहीं है, अभी यही चलता है।
0: हाँ, चलिए देखिए, वो साथी फिल्म का गाना मुझको मिल गया, याराना यार का। ये गाना आप सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अंशी
1: जी सर,
0: चलिए फिर,
1: थैंक यू सर,
0: अगली बार आएंगे तो फिर आपसे और बातें होंगी, गाना आपको सुनवाया जाएगा आपकी पसंद का भी। ये भी गाना आपको पसंद आएगा ना, आज की नहीं
1: पसंद क्यों नहीं आएगा सर।
0: चलिए सुनिए फिर।

0: मेरे पास किसी और की भी कॉल आ गई है, क्योंकि टाइम अब बहुत तेजी से भाग रहा है। जब हम लोग जो है 1/3 को पार करते हैं तो फिर लगता है कि टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। जी मेरे पास कौन है, किसकी कॉल लगी? जी नाम बताइए अपना।
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए सबको अपना।
1: सर प्राति सिंह बात कर रहे हैं, अम्बेडपुर मनकापुर जिला गोंडा से।
0: मनकापुर से। देखिए अभी संदीप भारती की कॉल आई थी, दो बार उनकी कॉल जो है कट गई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है।
1: डिस्कनेक्ट हो गई थी उनकी कॉल,
0: अभी फिर दोबारा उनकी कॉल लगी थी। मैं यहाँ से पूछ रहा था, वहाँ से उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। बताइए हम क्या करें।
1: सर उनके फोन लाइन में कमी होगी नेटवर्क में सर।
0: चलिए वो कोशिश करेंगे, अभी भी उनके पास 9 मिनट है। तो ये बताइए आपको गाना गंगा की लहरें से कौन सा सुनवाया जाए? आपके पास गाड़ी कौन सी गुजर रही है, ट्रेन जा रही है क्या? आप बताइए, आप रेलवे पटरी के पास रहती हैं क्या? देखिए आपकी डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा आ रही है फोन में, तो हम उसको ऑन एयर कर नहीं पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोई ट्रेन गुजर रही है आपके घर के आसपास से, तो उसकी आवाज आ रही है। चलिए गंगा की लहरों से हम आपको गाना सुनवाते हैं। और कॉल के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा है, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे।

0: और यहाँ पर संदीप भारती की हैट्रिक लग गई है, तीसरी बार उनकी कॉल यहाँ पर पहुंची है। बड़े ही किस्मत वाले हैं, लकी हैं, और इनसे बात करते हैं। जी बताइए संदीप जी, क्या हाल चाल है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आप कैसे हैं?
0: हम बढ़िया हैं। देखिए आपकी दो बार कॉल लगी, दो बार आप ऑन एयर नहीं हो पाए, अब तीसरी बार तो आप कामयाब हो गए।
1: जब से शुरू हुआ प्रोग्राम तब से कॉल कर रहे हैं सर।
0: हाँ,
1: बेल बजी और आखिरी बेल पे कॉल उठी और कट भी गई।
0: आप दिल से मुझको याद कर रहे थे, तो फिर ईश्वर तो आपको हमसे मिलाएगा ना कि नहीं मिलाएगा?
1: बिल्कुल। उसी दिन बात हुई कि तब से थी ना आप आए प्रोग्राम में, मैंने सोचा फिर नाच लगाते हैं।
0: जी जी जी जी, आप जैसे श्रोता जब इस प्रोग्राम में आ जाते हैं ना, तो चार चांद लग जाते हैं, बाहर से आ जाती है प्रोग्राम में है?
1: और सर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सर आप इतनी पुरानी पुरानी बात याद रखते हैं, ये सर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: तो हम लोग के पास भी एक कंप्यूटर है, दिमाग भी तो एक कंप्यूटर है कि नहीं है?
1: यस सर।
0: तो वहाँ पर भी सारी बातें जो है वो स्टोर होती हैं, है ना?
1: यस।
0: तो आज
1: आकाशवाणी प्रोग्राम में सब ठीक है सर?
0: जी सब बढ़िया है। और संदीप भारती को बंजरिया मनकापुर गोंडा में कौन सा गाना पहुँचाया जाए? आपने बताया था मेरे ख्याल से हीरो का गाना।
1: यस सर, यस सर, वही गाना सुना दी,
0: प्यार करने वाले।
1: और कोई
0: हाँ, तो संदीप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो कह डालिए, आज मौका है आपके पास।
1: यस सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रोग्राम में आकर, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से नमस्कार सर।
0: तो कभी आकाशवाणी अयोध्या आके हम लोग से मिल भी लीजिए ना, कि हम लोग आ जाएं आपके पास, आवाज से तो पहुँची गए आपके पास।
1: यस सर, ऐसा कुछ प्रोग्राम मेरे यहाँ पड़ेगा तो सर आप लोगों को जरूर से जरूर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, हम भी आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, आप भी यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है?
1: कराएंगे बहुत।
0: चलिए, तो कौन कौन सुन रहा है ये प्रोग्राम घर में?
1: मम्मी सुन रही है, चाची सुन रही है, चाचा, मेरे दादाजी हैं।
0: तो नाम ले लीजिए एक आध जिसका लेना हो।
1: सर मम्मी जमुना देवी, चाची आरती देवी, चाचा अजय, दादा नीलकर प्रसाद सर।
0: चलिए सब मिलकर सुनिए संदीप भारती की पसंद का ये गाना। शुक्रिया।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: अब जाते जाते इसी गाने पे एक कॉलर से हम और बात करते हैं, उनकी भी कॉल बड़ी मुश्किल से लगी होगी। जी बताइए अपना नाम।
1: जी सर, अनु रावत।
0: अनु रावत, कहाँ से आवाज आ रही है आपकी?
1: सर हम यहाँ ग्राम बदन के क्रॉस से बोल रहे हैं सर।
0: कौन सा बदन कपूरवा?
1: जी सर।
0: ये किस साइड पर है? ये मिल्कीपुर साइड पे है, सुहावल पे है, कहाँ पर है ये?
1: सुहावल के पास।
0: अच्छा, ये लखनऊ रोड पर है, ठीक है। तो आप कितने दिनों से आकाशवाणी अयोध्या को सुन रही हैं?
1: सर आज हमें हो गया है शायद 21-21 साल हो गए सर सुन रहे हैं। जब से जानते हैं
0: जी,
1: तब
0: जी
1: से सुन रहे हैं अपने नानी के यहाँ से।
0: तो बचपन से आप सुनती चली आ रही हैं आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को?
1: जी सर, हमारी नानी थी तो वो बाजा लगाती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। इस समय हमारे पास बाजा नहीं है, फिलहाल हम मोबाइल से सुनते हैं।
0: तो आज भी आप हमें लग रहा है कि बड़ा प्रयास कर रही होंगी तभी आपकी कॉल अब जाके लगी।
1: जी सर, हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे।
0: अच्छा,
1: आप एजी अमित सर बोल रहे हैं?
0: क्या कह रही हैं
1: आप? एजी अमित जी संग बोल रहे हैं सर?
0: जी बिल्कुल सही पहचाना, और मैं वही बोल रहा हूँ। और
1: जी सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपसे हमारी बात हो रही है, बहुत खुश है आज।
0: तो हमको ये बताइए, जब आप इतने दिनों से सुन रही थी आकाशवाणी फैजाबाद, तो कभी हेलो फैजाबाद या हेलो अयोध्या में मुझसे आपकी कभी बात नहीं हुई?

0: नहीं सर, अच्छा, पहली बार आपसे बात कर रहे हैं।
1: शुक्रिया,
0: काफी लोगों से बात
1: अच्छा
0: हो चुकी है, जानम सुनते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन आज आपसे पहली बार बात हो रही, बहुत खुश हैं।
1: चलिए, ये केंद्र जो है आप ही का है, फैजाबाद भी था और अयोध्या भी आप ही का है, तो इसी तरह से बराबर इस प्रोग्राम में आती रहे ना।
0: जी सर, बस हम आज चाहे गाना सुनाए चाहे सर नहीं, लेकिन आपसे बात हो गई, आज हम बहुत खुश हैं।
1: ठीक है, शुक्रिया जी। गाना आपका सुहावल में बदन का पूर्व में पहुंच रहा है। शुक्रिया,
0: थैंक यू सर।
1: तो ये था आज का हेलो अयोध्या प्रोग्राम। कंट्रोल रूम से हमारे साथ इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। आपके मीत अमरजीत को अब हेलो अयोध्या प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप सब अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

आकाशवाणी अयोध्या एफएम से अभी लाइव फोन इन प्रोग्राम ये फरमाइशी फिल्मी गानों का आप सुन रहे थे। ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। 101.9 और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आप हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ इस समय, और ये समय है रात 11 बजे तक आपको विविध भारती के राष्ट्रीय कार्यक्रम सुनवाने का, जहां से इस वक्त ढलती जाए रात प्रोग्राम में सदाबहार पुराने गाने आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: ढलती जाए रात प्रोग्राम में ये पुराने सदाबहार गाने आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। विविध भारती के कार्यक्रम अब आप हमारे केंद्र से सुबह 6:05 से सुनेंगे। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा

कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।